0: भक्तों पाई बड़े बरहे दस मूर्ति धरी भक्त तुम्हर की करीब भक्त बोलारे थाओ भक्त पेशिला हस्तिना को दूत पणरे जाओ आपण होचंती सही प्रभु जे भक्तंकर अधीन आपण होचंती सही प्रभु जे भक्तंकर ताई निजे हस्तिनापुर को दूत हो जाइथिलो सेई कालिया शांत मस्तक रे दुर्पा को धारण करी तृणा दपी सुनी चेन तरो रोपी सही सुना अमानियो मान देय कीर्तनीय सदाहरी समग्र विश्व को आज यह कहते जे समस्ते आज्ञा आज्ञा
1: आमर कवि दीनकृष्ण दास गोटे सुंदर कविता रचना करते कविता गोटे धाड़ी पढ़ीदा कि से कवित गोटे धाड़ी
0: आज्ञा आज्ञा आज्ञा
1: से गोटे धाड़ी हूँ

0: ये प्रसिद्ध कवि द्वितीयुगीय कवि दिनकृष्ण दास रचना यार उपरे मध्ये आपण टिके कहिबे जदी आउरी बढ़िया हबो
1: दिनकृष्ण दास जी जगन्नाथ निकट निजक समर्पित करदे जो रस कल्लल से प्रभु से लीला को नहीं वर्णना करते से दिनकृष्ण दास जी रीतिजुगर कवि जहाँ रीतिजुगर जो आद्य कवि भाव में ग्रहण करवा ओडिया साहित्य दिनकृष्ण दास होती से आदिकवि ऋतुजुगर प्रभु से भाव चौदह भुवन रे बार्ता जाणी आज समग्र विश्व को से मधुरता प्रदान करी जे रससिंधु जेपरि आज से तट प्रदेश को ग्रास करुची ठीक से हीपरि प्रभुंकर जो मस्तक जो टाहिया आज दोड़ामान होउचंती से टाहिया आज समग्र
0: कहि पारु नाही बोध हुए सेहिति पई ए रथ यात्रा रे महाप्रभु को दर्शन करबा पई गहलीटा एते बढ़ी जाउची कारण रथ उपरे बड़ दांड रे महाप्रभु को जेमिते मन पुरे के दर्शन करि हबो सेमिते दर्शन आज मंदिर भितर कर तेणु जो कथा एवलिया कथा जो वर्तमान रथ बड़दाण्ड में रथजात्रा समय गहली बढ़ी जाऊँगी एवं गहली को परिचालना करने गोटे प्रकार अनायत्त हो जाऊँगी तेणु आज से भाया भाव आज जोबले रथ तीनो बड़दाण्डे उपस्थित अच्छा कि समय पर गजपति महाराजा आसीजे कारण मदन मोहन और रामकृष्ण विजयी होगा रथरे परवर्त कार्य रीतिनीति हूँ गजपति महाराजा छेरा पहरा सेवा कि समय पूर्वर आम शुणुलु जड़े बंगीय भक्त से नदिया नवद्वीप आसी फिजिओथेरापी सेवा देवाई से श्रीक्षेत्र को आपण मानक आम गुंडीचा जतार धारा बरणी देखु जे 380 स्वेच्छासेवी संगठन विभिन्न सेवा कार्य बर्तमान ये रथजात्र नियोजित अच्छा ता भर अनेक किए रंधा खाद्य दौची किए पा छिंचुची किए शुखिला खाद्य दौर किए आंबुलांस सेवा करुच्ची तेणु एभली भाव में विभिन्न सेवा जो अच्छी सेवा समस्ते करने को आसजात्रा हूँ गोटे एभली अवसर जोटी लोक मान स्वच्छ हृदय पवित्र हृदय सेवा करार सुजोग मिले एवं सेवा द्वारा कौन लाभ हुए जानते श्रोता बंधु सेवा करवा द्वारा सेवा हूँ मनरे कौनसी प्रत्याशा न रखी शुद्ध विचार रे अन्य मानकर उपकार करिबा अन्य मानको आनंद दबा एही कार्यटी करिबा द्वारा कौन हुए ना तार सबुठ बड़ उपलब्धि होची चित्त शुद्धि आमर चित्तटा शुद्ध हम आम मन भितर जिते कालीमा कलुष पाप ताप गुड़ाक सब अच्छी से गुड़ाक अपसरी जाकर आमर चित्तटा शुद्ध हो।

नमस्कार श्रोता बंधु, शुभ सकाळ। आपण माने सुनुछन्ते 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। आज हेउछि रविवार 1948 शकाब्द मास श्रावण 4 दिन एवं ता सहित सहित इंग्रजी तारीख 26 तारीख जुलाई मास 2026 मसिया। एथिसहित आज हेउछि कारगिल विजय दिवस। आमर समस्त श्रोता बंधु मानंकु स्वागत जणै आमे आरंभ करूछु आज सकाळर अधिवेशन कार्यक्रम। आम केन्द्र रु सुनुछन्ते 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। वर्तमान स्टूडियो घड़ी समय 5:58:17।

0: ଆଜିର ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଚିନ୍ତା, ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଜିତିବା ଦରକାର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାରରୁ କିଛି ଶିଖିବା ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ସମାଚାର ହିନ୍ଦୀରେ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମେ ବୈଷ୍ଣବୀ। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजीपी प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर पांचवा जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: गुड मॉर्निंग, अपना मन ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक, दिल से दिल तक, कंदिल से दिल तक रे मॉर्निंग अपडेट को नहीं की दबो मित्र हाजिर अछि आपण मानंग पाखरे। यस, आज कटक रे तो सकाळ सकाळ मेघ परिवेश रहिछि, मध्य मध्य हालुका वर्षा रहिछि, झिपझिप वर्षार संभावना मध्य रहिछि एवं झिपझिप वर्षा लागि रहिछि मध्य। सकाळर तापमात्रा प्रायत 26 डिग्री सेल्सियस अछि एवं दिनरे प्राय 29-30 डिग्री सेल्सियस पर्यंत रही पारे, किंतु झिपे झिपे वर्षा हेतु आपने निज सहित छता एवं रेनी कोट निज संगे क्यारी करंतु। एंड हाँ, ट्राफिक अपडेट जदि देखिबा, आज रथयात्रा परवर्ती भिड़ जोगु भुवनेश्वर पुरी रूट रे किछि स्थान रे यातायात चाप रही पारे। कटक रु भुवनेश्वर अभिमुखे यात्रा करथले अल्प समय

0: ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦେବମିତ୍ର କହନିର ପଏଣ୍ଟ ଫୋର ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ସେ ଦିଲ ତକ୍ରେ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः स्वपदात् त्यागपत्रं दत्त्वा तत् प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने समर्पितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे श्री प्रधानः अवदत् यत् गत दश दिनेषु छात्राणां विरोध प्रदर्शनानन्तरम् उत्पन्नया परिस्थित्या सः अत्यन्तं व्यथितः अभवत्। एतद् स्वस्य प्रतिष्ठायाः विषयः नास्तीति इत्यपि तेन उक्तम्। असौ नवदिल्ल्यां जन्तरमन्तरस्थले विद्यमानां स्थितिं समग्रदेशस्य परिस्थितिं चावलोक्य निर्णयम् अकरोत्। श्री प्रधानः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः मार्गदर्शनाय विश्वासाय निरन्तर सहयोगाय च कृतज्ञतामपि प्रकटितवान्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् राष्ट्रसेवा तस्य जीवनस्य सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति, सहैव जीवनपर्यन्तं तस्यै समर्पितः भविष्यतीति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू केन्द्रीय मंत्री परिषद धर्मेन्द्र प्रधान त्यागपत्र तत्क्षण प्रभावेण स्वीकृतवती। धर्मेन्द्र प्रधान त्यागपत्रानंतर केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नूतन शिक्षा मंत्री भविष्यति। वर्तमान दायित्वेन सह शिक्षा मंत्रालयस्य दायित्वमपि तस्मै समर्पितम्।
2: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड आई विल विथ फुल स्ट्रेंथ आई विल ट्राई टू वर्क विथ ऑल ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी।
1: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया रोमानिया देश

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछन्ति मलय रंजन मिश्र। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पूर्वाह्न 11:00 आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम देशवासी भाव विनिमय करिबे। एहा हेबो मन की बात 136वां संस्करण। आकाशवाणी और दूरदर्शन समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज एंड एआईआर मोबाइल आप्रे कार्यक्रम उपलब्ध हेबो। आकाशवाणी डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना और प्रसारण मंत्रालय यूट्यूब चैनल सीधा प्रसारण करा। हिंदी भाषा प्रसारण पर आकाशवाणी कार्यक्रम आंचलिक भाषातरण प्रसारण राति 8:00 आंचलिक भाषातरण पुनः प्रसारण। लोकसभा आसंताकाली सरकार सार्वजनीन परीक्षा अन्याय उपाय निवारण संशोधन बिल 2026 आगत करिबे। आसंताकाली गृह कार्यसूची रे एहाकु तालिकाभुक्त करा जायछि। एही नूतन बिल रे 2026 आईन रे संशोधन प्रस्ताव रहिछि। केन्द्रमंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह गृह रे बिल को आगत करिबे। प्रश्नपत्र प्रघट एवं परीक्षा परिचालन रे अनियमितता मामला रे कठोर दंडविधान को सुनिश्चित करिबा एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापन संक्रांत चिट्ठा प्रस्ताव को गत शुक्रवार दिन केन्द्र कैबिनेट मंजूरी प्रदान करिथिला। केन्द्रमंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा विभाग अतिरिक्त दायित्व अर्पण करा जायछि। श्री जोशी एवं उपभोक्ता व्यापार, खाद्य प्रक्रियाकरण, साधारण बंटन और नूतन नवीकरणीय शक्ति विभाग मंत्री भाव दायित्व निर्वाह करुछन्ति। केन्द्र मंत्री परिषद शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान इस्तफा पर श्री जोशी को यह अतिरिक्त दायित्व प्रदान करा जायछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सुपारिश क्रमे श्री प्रधान इस्तफा पत्र ग्रहण करिछन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अपराह्नरे आभासी जरिया विकसित भाइब्रेंट भिलेज कार्यक्रम प्रतियोगी वार्तालाप करिबे। अपराह्न 4:30 अनुष्ठित होगा।

0: Glasgow.
1: The Commonwealth Games. जब भी कोई भारतीय एथलीट बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के लिए मेडल जीत कर लाता है तो उसकी गूंज सिर्फ स्टेडियम तक सीमित नहीं रहती, वह भारत के करोड़ों दिलों को एक नई उम्मीद और प्रेरणा से भर देती है। राष्ट्रमंडल खेलों के दूसरे दिन मिली झंडू कुमार की ये ऐतिहासिक कामयाबी भी कुछ ऐसी ही है। पैरा पावर लिफ्टिंग में उनके इस कांस्य पदक ने न केवल भारत का पदकों का खाता खोला बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जब इरादे बुलंद हो तो हर बाधा छोटी पड़ जाती है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व की बात है जो हम ग्लासगो में आके अपना झंडा लहराए हैं, इंडिया के मेडल अपना नाम किए हैं।
3: तकलीफ समस्या को हमने एक दोस्त की तरह बना के रखे थे, उसी दोस्त के बदौलत, जुनून के बदौलत ग्लासगो में मेडल जीते हैं सर।
4: स्कॉटलैंड की ठंडी हवाओं में आज भी गर्मी है, लेकिन आज की गर्मी शायद जीत के जश्न की नहीं, उस जिद की है जो हार के बाद भी बुझती नहीं है। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की ढेर सारे पदक जीतने की जद्दोजहद अभी भी जारी है। कल का दिन भारत के लिए पदकों के लिहाज से भले ही वैसा नहीं रहा जैसा हम चाहते थे, लेकिन खेल हो या जिंदगी, कभी कभी एक दिन का नतीजा पूरी कहानी नहीं बयां करता। कभी एक छोटी सी आवाज बड़ी लहर बन जाती है और कभी एक छोटी सी जिद बड़े बदलाव की वजह। इसी भरोसे के साथ भारतीय खिलाड़ी भी आज फिर उतरेंगे मैदान में, क्योंकि बड़े मुकाबले हमेशा ताकत से नहीं जीते जाते। कभी कभी लगातार खड़े रहने का हौसला ही इतना होता है कि हालात को भी अपना रुख बदलना पड़ता है। आइए जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के तीसरे दिन क्या कुछ घटा।
5: इन बॉक्सिंग हरियाणा सचिन सिवाच, अ फॉर्मर यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप्स मेडलिस्ट, स्टॉर्म्ड इनटू द राउंड ऑफ 16 इन द मेन 60 केजी वेट कैटेगरी। सिवाच कंफर्टेबली डिस्पैच्ड कनाडा के कियोमा अली अहमदी, अ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट फ्रॉम बर्मिंगहम, 4-1, यूजिंग हिज हाइट एंड टेक्निक to great advantage. The win moves Sivach into the pre-quarterfinals, where he will face the tough challenge of England's Will Hewitt.
4: लॉन बॉल्स खेल शायद भारत में बहुत जाना पहचाना नहीं है, लेकिन इस बार दुनिया इस खेल में भारत का नाम जरूर सुन रही है। गेंद धीरे चलती है, मुकाबला धैर्य से जीता जाता है और भारत लगातार अपने निशाने पर पहुंच रहा है। शुरुआत करते हैं वुमेन पेयर्स से, जहां पिंकी और रूपा रानी चिरकी की

0: जोड़ी ने लगातार 3 मुकाबलों में जीत हासिल कर अपनी नॉकआउट राउंड तक पहुंचने की उम्मीदों को बुलंद कर दिया है। कल खेले गए मुकाबले में टोंगा से आने वाली मिलिका नेथन और पेरिस बेकर की जोड़ी को इन्होंने हराया। पिंकी और रूपा दोनों ही 2022 की उस टीम का हिस्सा थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वो मुकाबले आउटडोर यानी नेचुरल ग्रास पर खेले गए थे। इस बार के मुकाबले इंडोर्स यानी कारपेट वाली घास पर खेले जा रहे हैं, जिसके लिए पिंकी बताती हैं उन्होंने लंदन जाकर खास तैयारी की।
1: जितने भी हमने तैयारी पहले करी है या 22 में भी जो हमने हिस्ट्री क्रिएट की थी वो ग्रास पे थी और हमेशा ग्रास पे हुआ है। इट्स अ फर्स्ट टाइम ये इंडोर हो रहा है। इसके लिए जो हमें चाहिए थी फैसिलिटीज, जो टाइम चाहिए था जितना, और जो टेक्निकल चाहिए थे, हमारे मैनेजर का सपोर्ट चाहिए था, वो सब हमें मिला है। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, होपफुल कि हम हिस्ट्री दोबारा क्रिएट करें। तो बस हम मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी ब्लेसिंग दीजिए।
0: दूसरी तरफ अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहे 43 साल के पुतुल सोनोवाल मेंस सिंगल्स में सुर्खियां बटोर रहे हैं। अपने पहले ही मुकाबले में उन्होंने कनाडा के रायन बेस्टर, जो कि आउटडोर वर्ल्ड चैंपियन है, उन्हें हराया। दूसरे मुकाबले में पिछड़ने के बाद उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को मात दी। हालांकि कल पुतुल को एक कड़े मुकाबले में मलेशिया के इज्जत जुल्केप्ले के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद पुतुल नॉकआउट राउंड में पहुंचने की दौड़ में बने हुए हैं। पुतुल देश के लिए मेडल लेकर आना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर करना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ पुतुल के साथ खुद भी हुआ।
2: बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम है। कोशिश करूंगा कि इंडिया को मेडल देने के लिए। पहले लॉन बॉल असम में ऐसा कोई जानकारी नहीं था, लेकिन 2022 में जब इंडिया ने पहली बार वुमेन फोर्स में गोल्ड मेडल जीता तो वहाँ पे असम का भी एक मेंबर था जो लॉन बॉल इवेंट का फर्स्ट कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट अर्जुन नयनमणि सही किया। उसके बाद असम में अभी लॉन बॉल का ऐसे माहौल हो गया है कि सबका टारगेट है सभी प्लेयर को कॉमनवेल्थ गेम खेलना।
3: अब बात करते हैं 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल की। शनिवार को भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था जब महिला 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम ने वेल्स के खिलाफ अपना कॉमनवेल्थ गेम्स डेब्यू किया। हालांकि मैच के नतीजे ने ये साफ कर दिया कि इस स्तर पर चुनौती कितनी बड़ी है। वेल्स ने पूरे मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा और पूल बी के इस मैच में 16-1 से एक तरफा जीत दर्ज की। भारतीय टीम वेल्स की आक्रामकता और स्कोरिंग की रफ्तार का सामना करने में संघर्ष करती नजर आई। टीम शुरुआत में ही पिछड़ गई और फिर इस अंतर को कवर नहीं कर पाई। वेल्स ने शुरुआत से अंत तक मैच पर पकड़ बनाए रखी। वही भारतीय टीम अपने 12 प्रयासों में से सिर्फ एक को ही पॉइंट में बदल सकी, जहां रीना गुप्ता ने भारत के लिए एकमात्र अंक बनाया।
0: महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम की ये राष्ट्रमंडल खेलों में पहली उपस्थिति थी। पहली बार इस बड़े मंच तक पहुंचना ही अपने आप में एक जीत है। और बताते हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन।
4: It's very important for us to embrace all sport that has got medals at the international level and to see wheelchair basketball not only flourish but to be able to field a team in the Commonwealth Games is heartening indeed. They are inspirations and they are pioneers as well. This team will inspire a lot of others.
3: Team अब इस शुरुआती मैच से तेजी से सीख लेकर प्रतियोगिता में तालमेल बिठाने की कोशिश करेगी ताकि जब वो नाइजीरिया के विरुद्ध 27 जुलाई को कोर्ट पर लौटे तो एक मजबूत प्रदर्शन कर सके।
0: इन विमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स द क्वार्टेट ऑफ निष्का अग्रवाल, प्रणति नायक, इशिता रिवाले एंड प्रतिष्ठा समांता रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द टीम फाइनल्स। अलास, दे कुड नॉट सिक्योर अ मेडल। हाउएवर, बाय द वर्चू ऑफ देयर परफॉर्मेंसेज, इशिता रिवाले एंड प्रतिष्ठा समांता वर एबल टू रजिस्टर देमसेल्व्स एज द रिजर्व्स फॉर द इंडिविजुअल फाइनल्स व्हिच विल टेक प्लेस ऑन संडे।
3: स्विमिंग की बात करें तो शनिवार को पुरुषों की 400 मीटर फ्री स्टाइल हीट्स में भारत के दो तैराकों दक्षिण शशि कुमार और आर्यन नेहरा ने हिस्सा लिया। टोल क्रॉस स्विमिंग सेंटर में दक्षिण ने अपनी रेस 3:58.09 में पूरी की, जबकि आर्यन ने 4:02.6 का समय क्लॉक किया। कुल 27 तैराकों के बीच दक्षिण 15वें स्थान पर रहे, जबकि आर्यन उनसे एक पायदान पीछे 16वें स्थान पर रहे। हीट से सिर्फ शीर्ष 8 सबसे तेज तैराक को ही फाइनल में जगह मिलती है, इसलिए दोनों में से कोई भी भारतीय फाइनल में जगह नहीं बना सका। दोनों आज 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले में एक बार फिर से एक्शन में दिखेंगे।

0: आइए अब बात करते हैं कि रविवार यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के चौथे दिन कौन कौन से खेलों पर भारतीय प्रशंसकों की नजरें होंगी। सबसे पहले वेट लिफ्टिंग, जिसमें मीराबाई चानू मंच पर उतरेंगी, बारबेल सामने होगा और करोड़ों निगाहें उन पर।
1: इंडिया विल बी फील्डिंग अ वेरिटेबल लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट इन वेट लिफ्टिंग टूडे एट द एसईसी आर्मेडिलो एज मीराबाई चानू कम्स आउट टू डिफेंड हर क्राउन। द टू टाइम चैंपियन इन द 48 केजी इवेंट इज द अनडिस्प्यूटेड हेडलाइनर ऑफ द कॉम्पिटिशन एंड व्हेन फिट चानूज एबिलिटी पुट्स हर हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट इन द फील्ड। द टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट विल फेस अ स्टर्न चैलेंज फ्रॉम लिफ्टर्स belonging to Canada and Papua New Guinea, but her personal best is above the field and she is the favorite to finish on top of the CWG podium once again.
2: हमारी टीम पूरा तैयारी अच्छे चल रही है, हम पूरा कोशिश करूंगी कि इंडिया के लिए हम मेडल दें। ये परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं एशियन गेम्स में क्या क्या होगा, क्या और चेंज कर सकते हैं, वो सब देखने का अभी टाइम मौका मिलेगा, तो ज्यादा फोकस मैं एशियन गेम्स में ही रखूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम है कि 2 महीने ही बचा है, तो मैं उसी को ही ज्यादा फोकस रखूंगी।
1: Chanu comes into the Commonwealth Games after agonizing fourth place finishes in the Hangzhou Asian Games and the Paris Olympics. G. Rajaraman on Chanu's preparation.
3: She should start as the favorite in the 48 kilo class. There is no doubt about that. She's the Commonwealth champion from last year. People will definitely expect her to do well in the Commonwealth Games. She's been very keen on doing well in the Commonwealth and in the Asian Games. So she has been very conservative in her preparation. She's not competed in too many big events. So she's been smart. So I expect her to be on the podium for sure. I think she's most likely to win the podium. In fact, her coach has said that they're not even looking to do 90 kilos in snatch. That perhaps will come in the Asian Games. Right. And they know that they can win gold even without being at your 100%.
1: In the men's 60 kg category, fellow Manipuri Rishi Kanta Singh, the 2025 Commonwealth Championships gold medalist, comes into the Glasgow Games with realistic podium ambitions. He is not new to the CWG, having participated in 2022 in Birmingham in the 55 kg weight division. Meanwhile, Muthu Pandi Raja, hailing from Tamil Nadu, has come back to the sport after several years in the wilderness through injuries. He won silver in the 2025 Commonwealth Championships and is the current national champion, where he lifted a massive 302 kgs to win gold. This makes him a strong medal contender in the 65 kg weight category.
0: फिर नजरें होंगी बॉक्सिंग रिंग पर। बॉक्सिंग में एक पंच मुकाबला बदल सकता है, लेकिन रिंग में टिके रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं कलेजा चाहिए, जिसका परिचय दिया जादूमणि सिंह ने परसों हुए मुकाबले में। पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग में जादूमणि सिंह ने परसों राउंड ऑफ 32 में मेजबान टीम के एरन कलन को सर्वसम्मति से यानी 5-0 से हराया था। वही जज्बा लेकर रविवार को एसईसी सेंटर में जादूमणि एक बार फिर बॉक्सिंग रिंग में उतरेंगे, क्योंकि राउंड ऑफ 16 में उनका सामना आर्च राइवल पाकिस्तान से है। सामने होंगे पाकिस्तान के सुमैमा रहमान और हर एक पंच के साथ कहानी बदलेगी। क्या अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहे जादूमणि सिंह एक बार फिर इस चुनौती के सामने खरे उतरेंगे? ऐसा ही जज्बा लेकर राष्ट्रमंडल खेलों में अपना डेब्यू करने पहुंचे हैं आदित्य प्रताप यादव। पहले राउंड में इनको बाय मिला, जिसके चलते पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में ये सीधा राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुके हैं। लेकिन राउंड ऑफ 16 में चुनौती कड़ी है, क्योंकि सामने हैं युगांडा के नूहू बाटे। इन द वुमेन्स डिवीजन ऑन संडे ऑल आईज विल बी ऑन प्रीति, हु हैज हैड अ फैंटास्टिक ईयर इन द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026। शी डिफीटेड अ 3-टाइम वर्ल्ड चैंपियन टू सिक्योर द गोल्ड मेडल। शी विल बी गनिंग टू रिपीट दोज हीरोइक्स at the Commonwealth Games too. In the 54 kilogram weight category, she will be up against Deborah Mtenje of Malawi.
4: Moving on to lawn bowls, India have a busy day at the Scottish Events campus, as in the afternoon today, Ruparani Tirki and Pinky Singh take on Namibia's Diana Willian and Amanda Steenkamp in a women's pairs Section B contest. Having defeated the world champion in his campaign opener, Putul Sonewal faces Malta's Sean Parnas in a must-win Section D contest in the men's singles.
0: फिर चलेंगे जिम्नास्टिक्स की ओर, जहां हर छलांग, हवा में उड़ता शरीर, जमीन पर टिकता संतुलन और इन चंद पलों में ताकत और लचक का ऐसा मुजाहिरा किया जाता है जिसे देखकर आंखें ठहर जाती हैं।

0: यहाँ शरीर की हर हरकत कला बन जाती है और एक छोटी सी चूक बरसों की मेहनत पर भारी पड़ सकती है। भारत की पुरुष टीम भले ही मेडल ना जीत पाई हो, लेकिन इंडिविजुअल प्रतियोगिता में तपन मोहंती और योगेश्वर सिंह फाइनल राउंड तक पहुंच गए हैं। यहां अच्छा प्रदर्शन उनको पोडियम पर ला खड़ा कर सकता है और करोड़ों भारतीयों की यही उम्मीदें होंगी कि तपन और योगेश्वर दोनों ही कमाल का प्रदर्शन करते हुए जिम्नास्टिक्स में भारत को मेडल दिलाएंगे।
1: Let's now turn our attention to swimming, as India's leading male swimmers will combine forces in the men's 4x200 meters freestyle relay at Taltra Swimming Center. Srihari Natraj, Anish Gowda, Aryan Nehra and Dakshin Shashikumar are scheduled to compete in the heats in the evening today. Srihari brings considerable international experience to the quartet. In a relay, individual speed must come together with well-timed changeovers, and India will first look to secure a place in the final scheduled for later tonight from a very tough field.
2: Australia topped the current medals tally with a grand total of 23, including 12 gold. England are second with 15 medals, while Nigeria are third with 6. India, meanwhile, with one bronze, are right now in joint 10th. Today, Indian athletes will set the Glasgow chill ablaze once again with every lift, every stroke and every uppercut as the quest to bring glory to the nation continues at the 22nd Commonwealth Games.
1: फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल हम आपके साथ वापस राष्ट्रमंडल खेलों की खबरों के साथ इसी वक्त पर जुड़ेंगे। हमारी टीम को दीजिए इजाजत। प्रस्तुतकर्ता शौर्य चौधरी और संपादक वंदना के साथ मैं मेघा सिन्हा और दर्पण टिकिया आपसे लेते हैं इजाजत।
3: The Commonwealth Games.

हाँ तांकर सही प्रसिद्ध कथा कि ये दिल मांगे मोर आज भी सही वाक्य प्रत्येक भारतीयों को हृदय रे रही छि लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे आओ ग्रेनेडियर जोगेंद्र सिंह जाधव एवं राइफल मैन संजय कुमार एमाने परमवीर चक्र रे आज सम्मानित हाँ समस्ते आज आम हृदय अच्छा समस्ते मातृभूमि कल एवं कोटि कोटि भारतीय हृदय आमे प्रतिदिन निश्चिंत शोचे कारण कही जड़े सीमार राति सारा आम पाई जाग्रत रहुचंते से मानंको परिवार से मानंको मां से मानंको संतान सब बेले अपेक्षा करिचंते एटा ही तो गोटे सोल्जर लाइफ।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार का लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
5: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है

0: प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
0: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
3: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3,00,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
2: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार

0: पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने सीजेपी के सभी तीन मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी सीजेपी ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जांच 2 महीने में होगी पूरी। वही नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। 4th साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है, शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। The headlines. CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce public examinations, Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program at 11 this morning. Kargil Vijay Divas being observed today to honour bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during 1999 Kargil War. Anahat Singh creates history by becoming first Indian to win girls singles final of World Junior Squash Championships. An Indian sub-junior men's team beat Pakistan 3-1 to clinch gold at FIH Youth Hockey 5S Asian Championship. Women's team bagged silver medal. The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh held a third round of discussion with the CJP delegation yesterday, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Addressing a joint press conference with CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said that during the meeting, the government agreed to the demands of CJP that no action should be taken against the protesters and no FIR should be filed against them.
3: जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। कंसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम।
2: On the 5-point charter given by the CJP for reforms in examinations, Mr. Nadda said that the government will deeply think about the charter and will do whatever is possible after holding deliberations with the CJP. CJP's chief spokesperson, Saurav Das, announced to withdraw the agitation in good faith expressing hope that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines.
4: The Congress Janata Party

0: अरे रीमा सोलार पैनल लगे दे, सोलार पैनल लगे दे। केबे ठु मोर सबु सांग माने कहुतिले किंतु मु मानिली जेबे प्रधानमंत्री कहिले।
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मु प्रधानमंत्री कहिबा परे सोलार पैनल लगेली आउ मोर बिजुली बिल जीरो आसुची। आपण भी लगांतु
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना सह जोड़ी हेबा पई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov।

है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

सुनिश्चित आपने मानी थी वो मित्रा को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दल से दिलता उखरे एंड दल से दिलता उखरे मॉर्निंग मेलोडी शो शाही तो मो आपन को वेलकम करो जी। हाँ आज जुलाई 26 बॉलीवुड रो से अभिनेता का जन्मदिन जहां कर नील आखि सरल हस और भद्र व्यक्तित्व लक्ष लक्ष हृदय को छुई भावुंत ना एमती ब्लू आईज पर्सनालिटी किए सी हो जुगल हंसराज यस जहां आज बर्थडे यस 1972 मसीह मुंबई में जन्मी जुगल प्रथम जड़े शिशु कलाकार भाव में चलचित्र मासूम जदि आपण मन थे से दर्शकों हृदय जीति कर्मा परे परे सुल्तानत परी फिल्म रे सी अभिनय करथिले बयस बढ़िबा परे आ गले लग जा पापा कहते हैं एमती अनेक चलचित्र रे से नजर आसथिले एवं सबुठु गुटे पिक्चर तंगो माइलेज देथिला आ तंगो नुआ परिचय देथिला से पिक्चर हिउची महाबते। यस महाबते रे से बहुत सुंदर एक्टिंग करथिले एवं समस्तंको नजर को मध्य आसथिले एवं अनेक तंगो महाबते रो समीर भावरे भी माने रखि छथि से नीरव प्रेम सरल अभिनय आ मीठा मीठा हस आज भी दर्शकंको हृदय रे से भले भावरे रहि छे। महाबते रो बहुत सारा गीत रे आमे तंगो माने पकाऊ

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

0: শুনেছেন 100.4 আকাশবাণী এফএম রেইনবো কাটক দিল সে দিল তক এবং দিল সে দিল তকরে বর্তমান সময় 9:18 আসন্ত শুনিবা প্রায়োজিত কার্যক্রম ডেটক জাস্টিস।
1: Talk on environmental justice, public participation and legal remedies by Shubhrajit Goswami, Program Officer, Center for Science and Environment, and Smita Harshal Salve, Senior Legal Consultant, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: A community jab koi problem se joojhte hain, ye ho sake ki ek kharab air quality ho ya to unka pani ka samasya ho, वो पहले ही तो कोर्ट नहीं जा पाता है। कोर्ट फाइनल स्टेज पे आता है एंड कोर्ट इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि कोर्ट पे एक चीज मिलता है जो बहुत बड़े शब्द है हमारा देश में, दैट इज जस्टिस। अब एनवायरमेंट दिन पे दिन जिस तरीके से हमें अदर जस्टिस के साथ साथ, कोई क्रिमिनल जस्टिस हो गया, कोई दूसरा जस्टिस भी हो गया, दिन पे दिन हमारा पर्यावरण पे जो प्रेशर है, हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा हो गया, क्लाइमेट चेंज के द्वारा हो गया, जो पर्यावरण पर प्रेशर आते जा रहे हैं, उसपे जो कम्युनिटी पर्यावरण के ज्यादा नजदीक रहते हैं वो लोग सबसे ज्यादा इम्पेक्टेड होते हैं। अब एक कोई गांव के एक कम्युनिटी, उसका पानी का तालाब पे जितना डिपेंडेंस है, एक शहर का आदमी का उतना डिपेंडेंस है नहीं। एक जंगल पे एक आदिवासी कम्युनिटी का कोई इंसान पे, इसका फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे जितना डिपेंडेंस है हमारा उतना नहीं है, वी गेट इट इन सुपर मार्केट। तो ये जो ग्रास रूट कम्युनिटी है, लीगल रेमेडीज की जरूरत उनसे सबसे ज्यादा है। हमारा बात करने के लिए शहर पे सारे इश्यूज के लिए जर्नलिस्ट है, मीडिया है, इस पे बात उठाते हैं, उनका बात पहुंचना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना सारे नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हमारे देश पे है, वेटलैंड से लेके, जंगल से लेके, कोस्टल एरिया से लेके, सारे कुछ चीजों पे एक रेमेडीज मिलने का ऑप्शन, एक अवेन्यू हमारे देश पे लीगल पॉलिसी के द्वारा खुला गया है। पर जो सबसे इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है वो लीगल पॉलिसीज को कैसे कम्युनिटी क्रिएटिव तरीके से यूज कर सकते। हर प्रॉब्लम के लिए उनका ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कोर्ट पे जा पाए, वह उनका ये आधार ना हो, पर जिन जिन के लिए किस किस इश्यूज पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके चलते मैं तीन चीजों का बात करूंगा। एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, उसके साथ हम एक सीआरजेड नोटिफिकेशन का भी एक बात करेंगे। ईस्टर्न इंडिया पे, बंगाल के सुंदरबन के एरिया पे सीआरजेड एक केस कैसे एनजीटी का कोई जजमेंट कुछ परिवर्तन ग्राउंड पे ला सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड तीसरा हम ये भी बात करेंगे कि ये कम्युनिटी कैसे ये एयर क्वालिटी जैसे बड़े इश्यूज पे पार्टिसिपेट कर सकता है विद द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लॉ भी है। तो पहले हम शुरू करते हैं ईआई नोटिफिकेशन के बारे में। ईआई नोटिफिकेशन पे जो है, इट्स बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल एंड एज वेल एज widely discussed in our court, जो हमारा court पे भी discuss किया गया है, that is a precautionary principle. So there is a proverb called precaution is like, you know, it's better than cure. Prevention is better than cure. So that's the idea that we should take some precaution.

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है.
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: Now, as a group of a community, how they can participate in that area? So there are multiple instances in different countries, in our countries, in different states. For different projects, there are public consultation held with the help of State Pollution Control Board and the local official DM. And there is our law gives that and gives the provision that this consultation, when this is happening, it should be widely circulated. ये हमारा जो local news media हो, उससे ज़्यादा जो हमारा अलग जो national media हो, सारे उसका जो local language है, उसपे वो project के बारे में बात करके ये एक announcement होना है. और उसके बेसिस पे एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा ग्रास रूट का जो कम्युनिटी, जो इम्पैक्टेड कम्युनिटी है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड कम्युनिटी है, उनका प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा एक अच्छे से डिस्कशन के तौर पे हमारे एक सॉल्यूशन या कोई एग्जिस्टिंग मिटिगेशन मेजर्स एक्स्ट्रा जो लेना चाहिए उनका बातें एक डॉक्यूमेंट करके लीगल तरीके से एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए और इसका क्लियरेंस तभी मिले जब ये सब चीज लीगली किया गया. उसके बाद ये चीज जो ये जो प्रोविजन है ये हमें बहुत एक कम्युनिटी कोई भी एरिया पे बहुत एम्पावर करते हैं उनके उनका प्रोजेक्ट का उस पर इम्पैक्ट जो है उस पर बात करने के लिए, उनका जो इश्यूज है उन पे बात करने के लिए, उनका जॉब के रिक्वायरमेंट के से लेके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तक का बात करने के लिए सबसे ज्यादा एक स्कोप हमें देता है. एक केस एक दिन हमारे उधर आए हैं जिसपे एक जो फिशर कम्युनिटी सुंदरबन पे है वो लोग आके बोले कि उनका मैनग्रोव एक जंगल का मैनग्रोव फॉरेस्ट है वहां पे कोई एक कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े एक होटल बन गए तो उनको बाकी जगह पे उनने गया है उनको उतना रेमेडीज नहीं मिले तो उनको कोर्ट के पास जाना है. तो हम लोग उनको मैं एज अ डॉक्यूमेंट के तौर के उस वहां पे जाके देखा कि एक बहुत कंस्ट्रक्शन 23 एकड़ ऑफ एरिया पे बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन वहां पे हो रहा है, वहां पे मैनग्रोव काटा जा रहा है एंड वहाँ पे जो स्कोप है उसपे वहाँ पे एक बड़ा होटल बन रहा है. तो हम लोग उसका लोकेशन लिए हैं, उसको एक जो टूल है GIS बोल के एक टूल होता है उससे हम लोग देखे कि उसके क्या परिवर्तन, पहले क्या वहाँ पे मैनग्रोव हुआ करता था. उसके बाद ये CRZ नोटिफिकेशन के तहत एक CZMP मैप बोल के एक मैप बनता है जो मैप को हमने वो लोकेशन पे सुपर इम्पोज करके देखा कि वो मैप पे वो एरिया मैनग्रोव एरिया बोल के डिमार्केटेड है एंड CRZ नोटिफिकेशन पे ये क्लियरली बोला जाता है कि मैनग्रोव एरिया जो है उसको आप काट नहीं सकते हो, वहां पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते हो. तो हम ये वाला एक बहुत सिंपल चीजों को लेके एक तरीके से थोड़ा सा मैपिंग एंड साइंटिफिक इनपुट्स डाल के एक लीगल एक लिटिगेशन बनाए. उस पर कोर्ट ने सीधा सीधा ये दिया है कि ये होटल जो है ये मतलब ये CRZ का वायोलेशन है, इसको डेमोलिश करके वहां पे वापस मैनग्रोव लगाना चाहिए. एंड ये जो प्रोटेक्शन है ये दीज आर प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट्स बाय कोर्ट जिसपे बस एक 23 एकड़ का जंगल नहीं बच रहा है, यहाँ पे पूरा सुंदरबन का एरिया का जो एक आइडिया है जहाँ पे यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है इसका एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है. ये जस्टिस हमें कोर्ट से मिलता है जिसका इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है एंड इनका इम्पैक्ट काफी लॉन्ग टर्म होता है. एनवायरमेंटल

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: So, initiatives government ने क्या लिए? 2018 में परिवेश पोर्टल Ministry of Environment ने इंट्रोड्यूस किया है NIC के साथ, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल विंडो सिंगल विंडो दिया गया है फॉर एड्रेसिंग द एप्लीकेशंस कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग, जो कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी मॉनिटर होता है। इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस, सारे कुछ इसी पे मॉनिटर होते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन इंट्रोड्यूस किया गया 2006 की EIA नोटिफिकेशन में। कोई भी इंडस्ट्री अगर एस्टेब्लिश करनी है तो वहां का जो पर्टिकुलर एरिया है वो कहीं पे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या, वो चेक करने के लिए वहां के जो लोकल लोग हैं उनसे कंसल्ट करना जरूरी है। पब्लिक हियरिंग पहले हुआ करता था, 1997 में अमेंडमेंट आया था जो कि रिटेन किया गया, लेकिन पब्लिक हियरिंग की जगह पे पब्लिक कंसल्टेशन 2006 नोटिफिकेशन में आया। नेशनल एनसीएप जो एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर नॉन अटेनमेंट सिटीज है, जहां पे पोल्यूशन का इंडेक्स सबसे ज्यादा है, ऐसी चीजों के लिए, ऐसी सिटीज के लिए एनकैप का प्रोविजन बनाया गया है। एंड फिर मिशन लाइफ है, जो कि आप सारे जानते हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मूवमेंट है। एंड कैंपा कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, जो कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं उनसे जो ट्रीज कटिंग के लिए बाद में जो फंड्स में रेज होते हैं वो मैनेज करना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना इस अथॉरिटी का काम है। अब एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज हैं, उनका काम सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है कि उन्होंने पॉलिसीज बना दी और क्लियरेंसेस दे दी। उसके बाद मेन काम उनका होता है कि एनवायरमेंट वो प्रॉपरली जो कंडीशंस इम्पोज की थी उसका कंप्लायंस ठीक से हो रहा है या नहीं है, इसका मॉनिटरिंग करना। उसके लिए रीजनल ऑफिसेस होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के, वो उनका इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो ग्रांट के बाद जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होते हैं एवरी 6 मंथ्स उनको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, कंप्लायंस रिपोर्ट। उस कंप्लायंस रिपोर्ट का इंस्पेक्शन रीजनल ऑफिसेस के हमारे ऑफिसर्स करते हैं, स्टेट लेवल पे सीआ करती है एंड सीपीसीबी भी, एसपीसीबी भी करते हैं। अगर उसका मॉनिटरिंग होने के बाद कुछ वॉयलेशन पाया जाता है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शोकॉज, गिविंग शोकॉज नोटिस, फिर उनका क्लोजर करना या फिर कॉम्पनसेशन लगाना या फिर रेस्टोरेशन के ऑर्डर्स देना। एंड इसके बाद अगर ये सारा होने के बाद ये प्रॉपरली सेटल नहीं हुआ तो वो फिर मामला एनजीटी में जा सकता है। अगर कोई एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायरेक्टली एनजीटी में अप्रोच कर सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर किया है, एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे नाम का एक केस हुआ था जिसके तहत सुमोटो कॉग्निजेंस लेने का, मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अपने आप से किसी न्यूज़पेपर पे पढ़ा हुआ आर्टिकल वगैरह पे खुद केस इनिशिएट करते हैं। इसके अलावा जो कोई प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जिनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिजेक्ट हुआ है या फिर रिवोक हुआ है किसी कारणों की

वजह से कंप्लायंस ठीक से नहीं हुआ, वो लोग भी अपील फाइल कर सकते हैं एनजीटी में अंडर सेक्शन 60। सिटीजन्स जिनको डायरेक्ट एनजीटी में एक्सेस नहीं है, वो नहीं जा पाए, तो वो डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी पहले लिख सकते हैं, जैसे कि सीपीसी भी है, एसपीसी भी है, सीआर को, या फिर डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को भी लिख सकते हैं।

0: ट्यून कर चुनते अपन मने 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो का एक दिल से दिल तक रितवो मित्र अच्छा अपन का सहित एवं शो आरंभ हो जाए अपन समस्त अंकर फेवरेट डायलिन लाइव रो यस अतवे आज हम एक कोविड से कथा आवा समय गड़ी चली बस सहित ना आमे हम पास्ट लाइफ को बहुत मिस करे था आमको बेले बेले एमती लागे का से पिला दिन फेरी आसंता कास सही पिला दिना जो पिला दिन रे आम बहुत खुशी थिले किछि टेंशन आम मुंड रे नथिला जते बले पारो थिले बुली चाउ थिले जते बले पारो थिले बढ़िया बढ़िया खाइबा मां तैयारी कर दो थिले खाई दो थिले जते बले पारो थिले आखि को निद आसी जाउ थिला सेते बले तो घरे सो सो कहिले भी आमे सो नथिले खरा तमाम आमे ढिया मारु थिले एवं समय पाइले अनेक जगह को बुली जाउथिले आ ए बुला बेले कथा रे मोर मन पड़ी जाउ छी मामू घर बुला कथा हां बेले बेले समय मिलले एमिते लागे कि का समय पूर्ण सही पछा लाइफ को फेरी जबा का से पिला दिन पूर्ण थरे फेरी आसी बस सही मामू घर को बुली जबा से खरा दिन काटीबा माई का हातरो सुंदर सुंदर खाइबा खाइबा ई सब किछि कथा मन पड़ी जाए हां मामू घर कथा अनेकंकर मन पड़े कहीं मामू घर सब प्रिय होता है कहीं मामू घर को आम जिते दिन जाऊ से दिन पर्यटन आम को स्नेह आदर भल पाइबा बढ़िया बढ़िया खाइबा ये सब किसी मिले था तेज आज आम कथा मामू को घर किसी चाइल्डहुड मेमोरी विषय जहाँ आज भी आपण मन पड़े आपण मामू घर को नहीं किसी कथा आज मो सहित बांटतु बांटापी कल करतु अंदर नंबर 0671-230-3153 yes, call को देवो मित्र शोर अपेक्षा करिवो एवं आपणको ठु सुनिबा को चाहिबो आपणको मामू घरर मेमोरी नमस्कार गुड मॉर्निंग के कहउछन्ते कोठु कहउछन्ते
1: हृदय भांगी हृदय भांगी जाए तो बिना बेदना रे मन जोड़ी प्रेम वर्षा रे तो सब भेजा को तो

सुनिश्चित है अपना मन्नत वो मित्र को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रेन शो चली ची डालिन लाइव रो शालन तो देखिबा नेक्स्ट कॉलर हमर के आछंती एवं से कोन कहछंती आज रे टॉपिक को नेकी हेलो किछ कथा नै कॉल टी कटि जाय छी किंतु आपन माने मते कॉल कर परबे ऑन द नंबर 0671230315।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हे प्रभु, ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी?
2: अरे राजू भाई, पीएम सूर्य घर योजना रो यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोर एते चिंता काहे कि जे? मु तो मो घरे सोलर लगाई देलिनी, बिजली बिल टेंशन रो मु पूरा मुक्ति।
1: ए सतरे भाई?
2: हां भाई, मात्र 1875 टंका रे, पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो, ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नहीं।
3: आज्ञा हां, आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800345718 रे जोगाजोग करंतु।
4: ओडिशा सरकारक समवाय विभाग तरफरु राज्यर समस्त कृषक भाई भौनी मानकु सूचित करा जाउछि जे चलित 2026 मसिया खरीफ ऋतु पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे निज फसल धान मक्का कपा अदा मांडिया चीना बादाम हळदी ओ हरड चासर बीमा पंजीकरण कराइ नियंतु। भाग चासी ऋणी ओ अणऋणी चासी समस्ते निज फसल बीमा पंजीकरण निर्धारित तारीख 31 जुलाई सुद्धा निकटस्थ कृषि समवाय समिति जथा पैक्स लैम्स बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराई परिबे। चासी पिछा 5 एकर जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देय मुक्त अटे, प्लॉट पिछा केवल 1 टंका दबाकू पड़िबो। अधिक विवरणी पई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जे कोनो

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना चैनल।

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
4: चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
6: खाता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों,

मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से घाट निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहां के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियाड्स

दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छंटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राप की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भली भांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस

चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। ये पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी।
मैंने आग्रह किया था।

कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है, लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटोक्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी।

हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है, जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने

0: हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई

प्रिय टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानंती कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतारु मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छात ऊपर सोलर पैनल बसंतु एवं वर्षक 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 1800345671819 किमा 1912 रे जोगाजोग करंतु।

नमस्कार, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ट्यून करिछन्ति आपणकर फेवरेट म्यूजिकल एफएम स्टेशन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। स्टूडियो घड़ी बाजी सारी दिन 12टा एवं रेनबो घड़ी स्टार्ट हो सारी कार्यक्रम किसी कथा किसी गीत आपत जोड़ी जाइए मुंबर म्यूजिकल होस्ट एंड दोस्त सुवी। बर्षा हेउ खरा हेउ कि शीत प्रत्येक ऋतु को आमे बेस मन भरी एंजॉय करी थाउ एंड प्रत्येक ऋतु निज सहित किछि ब्यूटीफुल मेमोरी नै कि आमो पाख को आसी थांदे, किंतु ई ऋतु सहित किछि रोगर संभावना भी बढ़ी जाय थाए। थंडा ज्वर डेंगू किछि वायरल इन्फेक्शन पेटर समस्या ई सबो आमर एंजॉयमेंट रे पानी फिर दे थाए। सो इम्ती किछी समस्या को नेकी आमे अनेक समय चिंता रे भी रही थाउ, किंतु गोटे भल कथा हला छोट छोट सतर्कता अनेक गुड़े समस्या को रोकी दे पारे। सो आपणक सत कथा हे इम्ती किछी समस्या विषय रे, बट ता पूर्व पहुंचे दो छी आउ किछी खास गीत आपणक पाखरे। सो स्टे ट्यून्ड टू 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।

कुछ ऐसा तुम रखते हो जिगर तो इश्क करो खुद को मिट।

एक टंका दबाकु पड़िबो। अधिक विवरणी पाई निकटस्थ कृषि समवाय समिति, जेकोनोसी बैंक शाखा किंबा कृषि और समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।

वेलकम बैक फ्रेंड्स ट्यून करी छंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सुबह छि आपन के सहित इनसो चली छि किछि कथा किछि गीत फ्रेंड्स उत्तम स्वास्थ्य पाए केवल खाद्य पर्याप्त नुहे भल नीद मध्य आवश्यक आजिकाली प्रायतः समस्त को सुनिले लेट नाइट जांके जागिबा गोटे समस्त रीतिमत अभ्यास किंतु वर्तमान वैज्ञानिक माने कहुछंती जे अनिद्रा आमको जेतिकी आम शरीर प्रति स्मोकिंग क्षतिकारक ठीक सेतिकी अनिद्रा रहिबा माने निदरे न सोइबा मध्य सेतिकी क्षतिकारक आजिकाल आम यूज करुथिबा स्मार्टफोन रो बहुल व्यवहार जोगु मध्य निद्रा को प्रभावित करुछि तेणु राती समय रे जेतेबेले आपनकर सोइबा समय से समय रे आपनकर स्क्रीन टाइम को कम करि दियंतु एटलीस्ट आपनकर बेड टाइम पूर्वरु 2 घंटा पूर्वरु स्मार्टफोन को विराम दे दियंतु एवं किछि पॉजिटिव कोनसी बुक पढ़ंतु कोनसी किछि जिंस सुनंतु जोटा कि आपनकर ब्रेन को धीरे धीरे सुदिंग करि देथाय जा द्वारा आपन प्रॉपर स्लीप रे सोई पारे थांदी कारण दैनिक 7-8 घंटार साउंड स्लीप आम बॉडी को सुस्थ रखिबारे साहाज्य करिथाय एवं जहाँ भी ऋतुकालीन रोग रहिछि थंडा ज्वर जहाँ कि आम रोग प्रतिरोधक शक्ति को प्रभावित करिथाय से सब रोग आपणंकु निहाति भावरे बंचाइ पारिबो आउ फ्रेंड्स ए समय रे खास करी जेतेबेले वर्षा दिन आसुची आपनकु जदि सामान्य ज्वर किंबा कासो होयुची ताले एहाकु केबे भी अवहेला करंतु नहीं कारण जदि दीर्घ समय पई एहा रहे एवं एहार लक्षण बढी जाए ताले एहा अति क्षतिकारक होइथाय पारे तेनो निजे औषध खाइबा परिवर्ते डाक्तरक परामर्श नियंतु कहीं इंटरनेट रो प्रत्येक सूचना ठीक ही न थाए तेणु स्वास्थ्य संपर्कीय कोनोसी भी सूचना निहाती भावरे डाक्तरंक परामर्श नियंतु सबुले सुस्थ रुहंतु खुशी रुहंतु एवं निजको एनर्जेटिक रखंतु एवं ता सहित आपणंक दिन को एंटरटेनिंग बनेबा पई आपण माने जोडी हिचंदे आम सहित माने आपणंकर फेवरेट म्यूजिकल एफएम स्टेशन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक सहित सो एमति ही ट्यून करिथांतु आमको एंजॉय करथांतु एवं कहथांतु दिल से दिल तक

0: प्रिय टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानते कि एबे 25 वर्ष पाई बिजुली बिल चिंतारु मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छात ऊपर सोलर पैनल बसंतु एवं वर्ष को 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 1800345678 किबा 1912 रे जोगाजोग करंतु।
1: ओडिशा सरकारक समयबाय विभाग तरफरु राज्यर समस्त कृषक भाई भौनी मानको सूचित करा जाउछि जे चलित 2026 मसीहा खरीफ ऋतु पाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे निज फसल धान मका कपा अदा मांडिया चीनाबादाम हलदी और हरड़ चाषर बीमा पंजीकरण कराई नियंतु। भाग चाषी ऋणी और अणऋणी चाषी समस्ते निज फसल बीमा पंजीकरण निर्धारित तारीख 31 जुलाई सुधा निकटस्थ कृषि समवाय समिति जथा पैक्स लैंप्स बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराई परिबे। चासी पिछा 5 एकर जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देयमुक्त अटे। प्लॉट पिछा केवल 1 टंका दबाकु पड़िबो। अधिक विवरणी पई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जे कोनोसी बैंक शाखा किंबा कृषि और समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।

0: କିଛି କଥା କିଛି ଗୀତକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ବଜେ ଦଶ ମିନିଟ୍ରେ ୱିଥ୍ ଦ ଶୋ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରିନ୍ବୋ କଥକ ଦିଲ୍ ସି ଦିଲ୍ ତକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमताएं लगातार बढ़ा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
2: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
2: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
1: देशभर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
2: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की।
2: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को सुझाव दिया है कि वे काला सागर से गुजरने वाले जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन कर लें। परामर्श में कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के

0: समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is आकाशवाणी, the news read by नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today.

वेलकम बैक फ्रेंड्स, आफ्टर दिस न्यूज ब्रेक ट्यून करी छंदे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। स्टूडियो घड़ी रे समय वर्तमान दिन गोटी बाजी 11:48 हो सारी रेनबो घड़ी रे स्टार्ट हो सारी सो आज चर्चा एंड आज चर्चा मुझे सहित म्यूजिकल होस्ट एंड दोस्त सुवी फ्रेंड्स लाइफ टा पूरा बिजी हो गलानी एबेर ए कर्ममय जंजाल भितर। हो फ्रेंड्स अनेक समय रे आम माइंड रे बहुत किछे टेंशन चली थाए। सो फ्रेंड्स जेते बेले टेंशन थाए माइंड रे तो केतेबेले मन कहे टिके एकोटिया खोला जगह रे बसी निजे निजकु संभाली नबा पाए। आउ केतेबेले कथाटा निज हातरे रहे नहीं एवं निजर के प्रियजन कि नियरर डियरर निजर सांग दोस्त एमानंका सहित शेयर करदेले टेंशन टिके हल्का हो जाए। सो फ्रेंड्स आज मो सहित शेयर करंतु ना आपण को जेतेबेले टेंशन लगे सेतेबेले आपण एकुटिया रहबा पसंद करंती ना कहा सहित शेयर करी निज मन को हल्का करी नियंती। सो फ्रेंड्स ए विषय रे एसएमएस किंबा व्हाट्सएप जरिया रे आपण को थॉट शेयर कर दियंतु। एसएमएस करबा पई निज फोन रो एसएमएस बॉक्स को जानतो टाइप कर दियंतु एफएमआरसी स्पेस दे लिखि दियंतु आपण को मन रो कथा एवं आपण को नाव ठिकाना लिखि पठि दियंतु नंबर 09495963210। जदि आपण चाहुचंती हम सहित व्हाट्सएप जरिया रे जोडीबा पई ताहले हमर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर टी होची 8895254200। सो फटाफट एसएमएस किंबा व्हाट्सएप कर दियंतु कि टेंशन समय रे आपन को एकोटिया रहबा भल लगे ना कहा सहित टेंशन शेयर कर देई सेमानंग ठु मतामत नेबा को भल लगे से विषय रे फटाफट लिखी हम को एसएमएस कर दियंतु ना हले व्हाट्सएप कर दियंतु सेते बेले जाय आपन को पाखरे पहुंची दोची किछि ब्यूटीफुल म्यूजिकल ट्रैक। सो स्टे ट्यून्ड टू 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।

0: घर खर्च पाई पैसा दियो हस्बैंड जी
1: ये सौदार 15,000 परिवार 2,000
0: आउ लाइट बिल
1: एबे जीरो पैसा केमिति देबी
0: ओहो भूली जायथिली एबे तो सोलर पैनल लागी जायछि ना ताहेले जो 4,000 बंचिला सेथिरे शॉपिंग करा जाउ
1: निश्चय पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पाई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in
2: हर घर सूर्य घर।
0: अरे रीमा सोलार पैनल लगे दे सोलार पैनल लगे दे केबे ठु मोर सब संग माने कहुतिले किंतु मु मानिली जेबे प्रधानमंत्री कहिले
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मु प्रधानमंत्री कहिबा परे सोलार पैनल लगेली आउ मोर बिजुली बिल जीरो आसुची आपण भी लगांतु
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना सह जोड़ी हेबा पई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in।

0: They were stating that India is continuously scaling new heights, be it in defense production, defense exports, or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Divas is being celebrated today.
1: आज कारगिल विजय दिवस है. ये दिन हमें गर्व से भर देता है. ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है. कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था. उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया. आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ.
0: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy. The Prime Minister said, every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said, a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है. जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए. इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही. मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है.
0: In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago.
1: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की. पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं. उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है. यह एक ऐतिहासिक जीत है. हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता. लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है. लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था. अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है.
0: The Prime Minister also spoke about science Olympiads, noting that a large number of students participate in these events.
1: इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए. इन कॉम्पिटिशन में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा. फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की. पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है. केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता. यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है. बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स मेडल जीते. इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है. वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए. मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है. यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है.
0: In this edition of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi mentioned Kashmir's traditional Vagu mat, which is crafted out of reeds and paddy straw. Mr. Modi said that the country is moving forward with the mantra of vocal for local and urged people to make Kashmir's Vagu a part of their homes. The Prime Minister expressed satisfaction that people across the country are fulfilling their responsibility towards nature through the Ek Ped Ma Ke Naam campaign. On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. Mr. Modi reiterated his call for everyone to worship Lord Ganesh idols made from country's own clay during Ganesh Utsav instead of idols made of POP.
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें. आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा.
0: The nation will celebrate National Handloom Day on the 7th of August. He urged people to honor weavers by encouraging handloom craft and further strengthen the spirit of being local for vocal.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में

0: लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
0: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी, वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
1: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली

0: उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। जो उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652773414 है और यूक्रेन में +38093355958 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे। इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है।

0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयी दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डोरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 133वें डोरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया।

0: ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: वर्तमान श्रंतो आंचलिक संवाद। नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद आषाढ़ शुक्ल द्वादशी तिथि पुरी रे अनुष्ठित होउछि श्रीजीवों अधरपणा नीति।

वेलकम बैक फ्रेंड्स आफ्टर दिस न्यूज ब्रेक ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टूडियो हडीरे टाइम बाजी सारी दिन 2:45 आपण सहित मुझे आपण म्यूजिकल होस्ट एंड दोस्त सुवी सो फ्रेंड्स आज मौसम रही पूरा रेनी रेनी माने पूरा वर्षा भिजा मौसम रे आपण पहुंची दूसरी से वर्षा को नहीं कतोटी पुराणा ओडिया कथाचित्र गीत जहां आपण को जिमिति वर्षा भिजौची ठीक सेमती मेलोडी माने म्यूजिक रो वर्षा रे भिजे दबो बोली आशा करूछी सो एमती ही बढ़िया बढ़िया गीत सुनिबा पाई एवं निज को मजेदार बनेबा पाई निजर डे को पूरा सुपर फन बनेबा पाई जोड़ी ही था तो आम सहित माने आपणकर फेवरेट म्यूजिकल एफएम स्टेशन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक सहित

दूरदर्शन दे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टूडियो घड़ी रे समय वर्तमान अपराह्न 3:00 बाजी 2 मिनट हेबा को जाउ छी एवं आरंभ हि सारी छी रेनबो घड़ी रे सो मो देश फ्रेंड्स किछि तारीख केवल कैलेंडर रे लेखा रहिनी सेगुडी को जातिर इतिहास रे सुवर्ण अक्षर रे खोदित हि रहि जाय बस सही भली एक दिन आजर कारगिल विजय दिवस साहसर उत्सव त्यागर सम्मान एवं अदम्य देश प्रेमर अमर कहानी

सो चली मो देश सुभी अच्छे आप सहित शुणुंट शहे दशमिक चार आकाशवाणी एफ एम रेनबो कटक दिल से दिल तक कारगिल विजय यह आमको शिखाए साहस केवे परिस्थिति को देखी जन्म निए बर निज कर्तव्य प्रति अतुट विश्वास जन्म नहीं था जो मैंने निज जीवन देश को बड़ बोली भावी सेमानं कहानी प्रत्येक पीढ़ी को साहस श्रृंखला दायित्व पाठ पढ़ाई से शिक्षा आज भी सामान भाव प्रासंगिक कारण देश प्रेमर कौन समय सीमा नहीं।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार

सुनछंती साहित्यस में चारिया आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सोचाली छी मो देश सुभय छी आपणक सहित फ्रेंड्स यौ बिरमानंक पई आज त्रिरंगा आहुरी गर्वर सहित उड़ुछी सेमानंक मन पकेबा खाली आज दिनर काम नुहे प्रत्येक दिन प्रत्येक सफलता एवं प्रत्येक स्वाधीन निश्वास सहित सेमानंक कृतज्ञता जणाइबा उचित सेमानंक बलिदान जोगु आज आमर भविष्यत सुरक्षित ई ऋण केबे सुझेबो नाही तेबे साथी ई मो देश कार्यक्रमरु एवं आपणमानंक गहनरु विदाय नेबा पूर्वरु पुणि थरे भारत मार से अमर वीर सन्तान मानंकु विनम्र प्रणाम सेमानंक साहस त्याग देशप्रेम आम पथकु सबुबेले आलोकित करु आसंतना ए भावना को हृदय नै सुनिबा अगटिए सुंदर देशभक्ति रो गीत आपनक पाखरे पहुंचुछि एवं विदाय नेउछि सुभिए आपनक पाखरो सो स्टे ट्यून टू 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक

Hey friends, tune ko chunti 100.4 Akashvani FM Rainbow Katak Dil Se Dil Tak. Swagat apan manangku. Apan manangku sahita bortman apan ko Rainbow Sathi Narayan jodi hi jaichi. Asa karuchi apan mane samasta bahut bharal thibe, bahut khushre thibe. Nagan. Sathi bahare barsha hochi au barsha ra kichi niyara moja mathe roichi kahi kina emiti gote summer barsha hochi jota ki mane lagatar bhabare jari roichi. कोटि कोटि हल्का भी रहुची कोटि अधिक परिमाण रे वर्षा रहुची तो ए समय रे आपन को निश्चित भाबरे आपन को मूड कहुतबो जे आपन घर भीतर रहिबे चुपचाप रहिबे काहे कि एमितरी बे आज संडे अछि तो संडे रो तो किछि फंडा अलगा थिबो आपन मनकर आ ए फंडा जदि एफएम रेनबो सहित जुड़ी जाय माने आपन को फंडा जदि एफएम रेनबो सहित मिसि जाय तो गोटे सुंदर समय सुंदर इवनिंग आपन मन पय आरंभ होई परिबो आशा करूछु आपन को रेनबो साथी नारायण सहित ए सफर राति 11:10 पर्यंत जो सफर रही ए सफर रे बहुत किसी एंटरटेन आपण माने करि परिबे एंटरटेन हे परिबे किसी गीत किसी कथा आ किसी इनफॉरमेशन आपण मान पाखरे आपण को रेनबो साथी नारायण निश्चित भाबरे पहुचिबो तबे बहुत बहुत स्वागत वर्तमान आपण को सुरीला आफ्टरनून रो ए मीठा कार्यक्रम को मीठा मुहूर्त को साथी हृदय गीत हाँ जीवन रे अनेक गीत आम शुणुंटी किंतु किसी गीत एमती थाए जहाँ कानरी नुहे सीधा हृदय रे बाजी उठे से गीतर थाए आम स्मृति आम भावना आम हस आम लुह जितेबले मन खुशी थाए गीत साथी जाए और जितेबले मन दुखी थाए से गीत ही आमको सांत्वना दे थाए हृदयर गीत कौनसी संगीत जंत्र नुहे अनुभव सृष्टि होता है जीवन प्रत्येक मुहूर्त जमी एक नुआ स्वर आई स्वर गुड़िक मिसी आम जीवन सबुठ सुंदर गीत या चलतु मीठा मीठा गीतर यह मुहूर्त को सुरीला आफ्टरनून रूहूर्त को आम मन भरी अनुभव करवा आम हृदय तुले धरवा

सदैव सुरिला आफ्टरनून रे सुरिला सफर को आपण मानको पुन थरे स्वागत आपण मानक सहित रहिछि आपणक रेनबो साथी नारायण प्रत्येक मनुष्यर हृदय रे एक अलग गीत लुचि रहिथाय केही ताको शब्द रे प्रकाश करंती केही निरवता रे प्रकाश करंती निरवता तो प्रकाश करि हुएनी निरवता ही सेथिरे अनुभव करि हुए अनेक किछि कथा लुचि रहिछि केबे मांक डाकरे से गीत सुना जाए केबे बापंकर स्नेहरे केबे बंधुर हसरे तो केबे प्रिय मनुष्यर स्मृति रे आमे सबुबेले कहि पारुनी आम मनरे जो जो सब कथा अछि से सबको आमे अनेक समय प्रकाश करि पारंतनी कहि पारंतनी किंतु हृदय ताकु गीत ही साहित्य रखे सेथिपई अनेक समय रे गोटे साधारण गीत शुणी आखिर लोहा आसि जाए कारण से गीतरे आम जीवन रो कोनोसी अध्याय लुचि रहिथाय हृदयर गीत केवल सुर नुहे एहा होछि अनुभूतिर भाषा

हाँ स्मृति, हाँ साथी स्मृति, एमती किसी स्मृति अच्छी जहाँ केवे पुराणा हुए नहीं, वर्ष बीती जाए समय बदली जाए किंतु से स्मृति गुड़िक हृदय नुआ ही रही जाए। पिलादिन से निर्मल दिन स्कूल प्रथम बंधु माँ कोल सोईकी शुणीवा किसी गप कि जीवन प्रथम सफलता ये सब आम हृदय गीतर अंश हो जाए। जितेबले आम एकाही बसु एका एका अनुभव करू जीवन रे एकलापण छाई जाए किंवा चुपचाप काम नथला बेले भी बसु ए स्मृति गुड़िक धीरे धीरे मन रे गुंजरित होती लगे जमी अतीत आज भी आम सहित कथा जीवन सबुठू मधुर गीत सेगुड़िक जहाँ स्मृतिर मंच में सबुबले बाजु रहुथाय गुंजरित होता है सबुबले बाजी चली थाए।

एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सोचाली वर्तमान सुरिला आफ्टरनून सुरिला आफ्टरनून सुरिला मुहूर्त आज आम कथा हृदय गीत संपर्क में।

सरिटून करछन्ती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक प्रचार करुछु प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हाय दोस्तों, लम्हे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आरजे चेतन। पर्यावरण के गुण और विशेषता, ये तो सामान्यकृत या स्थानीय, क्योंकि वे मनुष्य और अन्य जीवों पर प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण की गुणवत्ता एक सामान्य शब्द है जो इसका उल्लेख कर सकता है। हवा और पानी की शुद्धता या प्रदूषण, शोर, खुली जगह तक पहुंच और इमारतों के दृश्य प्रभाव जैसी विभिन्न विशेषताएं और संभावित प्रभाव जो ऐसी विशेषताओं का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। पर्यावरण की स्थिति मानव स्वास्थ्य, कल्याण और जीवन के अन्य पहलुओं का प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए प्रदूषण के माध्यम से, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, उदाहरण के लिए संपत्ति की कीमतों पर प्रभाव पड़ने से, जो बदले में किसी व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि को प्रभावित कर सकती है। पर्यावरणीय गुणवत्ता को एक सार्वजनिक वस्तु माना जाता है जिसका सभी को समान मात्रा में सेवन करना चाहिए। यह दृष्टिकोण इस आधार से शुरू होता है कि निजी संपत्ति के अधिकारों को पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए परिभाषित नहीं किया जा सकता है, या यदि तकनीकी रूप से व्यवहार्य और या निजी संपत्ति के अधिकारों को परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। कई संशोधित पर्यावरणीय कारक जैसे कि बाहरी वायु प्रदूषण, घरेलू वायु प्रदूषण, पीने के पानी का संदूषण, खतरनाक सामग्रियों के व्यावसायिक जोखिम, सीसा जोखिम और निर्मित वातावरण जो शारीरिक गतिविधि को हतोत्साहित करते हैं, पुरानी बीमारी के जोखिम और अनुभव को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रदूषित पर्यावरण न सिर्फ गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहा है बल्कि जान भी ले रहा है। साथ ही जाने कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए लोग क्या कर सकते हैं। कुछ वक्त पहले आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि घर के अंदर और बाहर होने वाले वायु प्रदूषण के कारण हर साल करीब 70 लाख लोगों की मौत समय से पहले हो जाती है, जिसमें 6 लाख बच्चे शामिल हैं। इस जानकारी के आधार पर ही हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए एक जहर बनता जा रहा है। आज हवा से लेकर पानी, फल, सब्जियां, यहाँ तक कि रोजमर्रा की सभी चीजें प्रदूषित हो गई है और कई तरह की बीमारियों का घर बन गया है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से न सिर्फ सांस संबंधी बीमारी होती है बल्कि ये मृत्यु को भी बुलावा देती है। दोस्तों, आपके

सुझाव सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। जब वायु में प्रदूषित तत्वों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है तो सांस लेने में परेशानी के अलावा आंखों में जलन और खुजली होने लगती है। आस्थमा के अलावा सांस संबंधी कई बीमारियां पैदा हो जाती है। आज लोग टेंशन, डिप्रेशन, डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के चपेट में आ गए हैं, जिसका जन्मदाता वायु प्रदूषण है। हाल ही में आई एक स्टडी के अनुसार यातायात संबंधी प्रदूषण की वजह से बच्चों के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यह कई तरह के मानसिक विकारों को जन्म देता है। वायु के प्रदूषित होने के कई कारण हैं, जिनमें मुख्य है फैक्ट्री और कारखानों से निकलने वाला हवा, SPM यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सीसा और नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि। पर्यावरण को प्रदूषित करने में कूड़ा कचरा भी अहम भूमिका निभाती है। जगह जगह कूड़ा जलाया जाना और फेंकने से कई हानिकारक गैस उत्पन्न होते हैं और स्वच्छ हवा के साथ मिलकर उसे जहरीला बना देता है। जिस तरह स्वस्थ जीवन जीने के लिए साफ हवा की जरूरत होती है, उसी तरह साफ पानी की भी जरूरत होती है। कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन आज यही जल कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहा है। इसकी वजह है पानी का प्रदूषित होना। फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलने वाला कचरा नदियों में बहा दिया जाता है। गंदे नालों से निकलने वाला पानी नदियों में मिलकर उसे प्रदूषित बना देता है। यही प्रदूषित पानी डायरिया, टाइफाइड और अन्य बीमारियों का कारण बनता है। पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार तो कुछ नियम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन इसके अलावा अपने स्तर पर भी हम कुछ कदम उठाना चाहिए, जैसे कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग डस्टबिन में डालें। फल, सब्जियां, ऐसी चीजें जो रिसाइकिल हो सके उन्हें हरे कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच, पॉलिथीन जैसी चीजें नीले रंग के कूड़ेदान में डालें। घर के अंदर का प्रदूषण कम करने के लिए बहुत काम आएंगे ये टिप्स। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। अपने वाहनों के समय समय पर प्रदूषण संबंधी जांच करवाएं और सर्विसिंग भी टाइम पर करवाएं। ऐसे सामानों का इस्तेमाल करें जो रीयूजेबल हो, यानी जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। जब भी कमरे या घर से बाहर निकलते सभी लाइट और पंखे बंद कर दे। अगर आसपास ही किसी मार्केट या अन्य जगह पर जाना हो तो कार या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय साइकिल का इस्तेमाल करें या फिर वॉक करके जाएं। गाड़ी, घर या अन्य चीजों की साफ सफाई के लिए खतरनाक केमिकल आधारित उत्पादों की जगह इको फ्रेंडली उत्पाद इस्तेमाल करें। छोटी छोटी ऐसी चीजें कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बचाव, जितना हो उतना ही करंट का इस्तेमाल करना, यूज करने के तुरंत बाद बिजली को बंद करना। परिवार के सभी सदस्य एक बार ही मिलकर खाने से कई लाभ है, जैसे जितना कंजम्पशन है उतना ही खाना बनता है, बार बार गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। परिवार के सभी सदस्य मिलकर खाएंगे तो डाइनिंग टेबल पर फैमिली बॉन्डिंग भी हो जाता है। अन्य कमरों में लाइट और फैन बंद करें। पानी की बचत करें। वॉश बेसिन में ज्यादा पानी वेस्ट न करिएगा। किचन से सब्जी फल धोने के बाद जो पानी वेस्ट रहता है उसे अपने पौधों में डालें। किचन वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करें। थोड़ा ही सही घर पर कुछ न कुछ जरूर उगाएं। हो सका तो कुछ ज्यादा भी उगा सकते हैं। आपके पास अगर जगह और टाइम हो तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो आसानी से उगे उसे भी लगाएं, और इससे आप बार बार आपको दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हरा धनिया उगा सकते हैं, मेथी उगा सकते हैं और पालक भी घर पर ही उगा सकते हैं। टमाटर, बैंगन, टिंडा, ये सब आप घर पर आसानी से उगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स एनवायरमेंटल क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले लम्हे प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515

7039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: नमस्कार, वर्तमान मुख्य संवाद सह मु लहरिका पटनायक। आषाढ़ शुक्ल द्वादशी तिथि आज पुरी में अनुष्ठित होउछि श्रीजीवंक अधरपणा नीति। रथर पार्श्व देवादेवी और चंडी चामुंडा पाई समर्पण करा अधरपणा आसंताकाली नीलाद्री विजय करिवे श्रीजीव। केन्द्रापड़ा तुलसी क्षेत्र में ब्रह्म तालध्वज रथ में रघुनाथ बेशरे श्रद्धालुंक दर्शन देले श्री बलदेवजी। आज विलंबित रात्रि अनुष्ठित हेब नीलाद्री विजय। समग्र देश में आज पालन कर 27वां कारगिल विजय दिवस। वीर शहीद मानक श्रद्धांजलि जनाउछि कृतज्ञ राष्ट्र। चलित वर्ष मुख्य कार्यक्रम लद्दाखर द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारकी आयोजित हो। मातृभूमि सुरक्षा पर कारगिल वीर शहीद सर्वोच्च बलिदान स्मरणीय हो रही मन की बात कहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। क्याच द रेन अभियान में जल उत्सर संरक्षण में भुवनेश्वर सफलता को कले प्रशंसा। केन्द्र शिक्षामंत्री भाव अतिरिक्त दायित्व ग्रहण कले प्रहलाद जोशी कहले नम्रता और गभीर कर्तव्यबोध सहित यह दायित्व को निर्वाह करी। लोकसभा आसंता आगत हो साधारण परीक्षा संशोधन विधेयक। जम्मू मूल शिविर अमरनाथ अभिमुखे यात्रा आरंभ कले 19वां तीर्थयात्री दल। ग्लास्को राज्यगोष्ठी क्रीडा भारत पर रौप्य पदक आणले भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह। 60 केजी वर्गर यह सफलता हासिल कर ऋषिकांत। बंगोपसागर में सृष्ट लघुचाप अवपात परिणत। आसंता 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा होगा नहीं 10 जिला को पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर् सतर्क सूचना जारी। जगत सिंहपुर जिले में आसंता प्रबल वर्षा संभावना थिबारु समस्त स्कूल छुट्टी नहीं जिलापा घोषणा। आसंता 3 दिन पर्यंत समुद्र अशांत रहुथिबारु मत्स्यजीवी को समुद्र मध्य जी बारण। मुख्य संवाद वर्तमान परवर्ती मुख्य संवाद शुणिपारे संध्या 6।

0: ओके धन्यवाद धन्यवाद मुना भाई ओके ओके ओके ओके ओके बहुत बढ़िया कथा कहले मुना भाई जे कि तंकर अभिज्ञता थिलानी देखिथले घरे एवं से देखिबार जो तंकर जो एवं रोसे करिबार जो इच्छा केवल देखि देखि कि गोटे अटेम्प्ट नेले आ बहुत भल भी कले तेणु आपण कौन अनुभूति रही छोट छोट तो भूल हम प्रथम रोसे अनुभूति तो अनेक लोकर अनेक थी कौटी गाली खाई कौटी दुनिया कथ भी शुणी कि कौटी बाह बाह भी पाई कि आपण कौन से अनुभूति अच्छी प्रथम रोसे को लेकिन बर्तमान आज जन कलर अच्छा हेलो
1: जय जगन्नाथ नमस्कार
0: जय जगन्नाथ नमस्कार किए कौन
1: नारायण
0: प्रधान नारायण भाई कार्यक्रम को स्वागत जनाउछु कौन कहिबे आज टॉपिक संपर्क करे
1: मुझे प्रथम रोसे कर भात डाली आउ भजा मत तरकारी आसुला भात को प्रेसर कुकर रोसे कर ठीक जान नी के पानी कौन दिया जाए अधिक पानी दे दी आउ भात पूरा छिरी भरिया
0: कौटी घरे थिले ना बाहर कौटी थिले
1: घरे करथिल सर
0: समस्ते समस्त सामने माने घर लोक मन निज सदस्य मन
1: नाई मोर पुओ थी मुझे रोसे कर ठीक जना ना मतलब चाउल पानी दिया प्रेसर कुकर आउ थे रोसे कर पोड़ी दे प्रेसर कुकर जानी किले चाउल पानी दिया किले चाउल पानी गरम जानी आस्ते आस्ते
0: अच्छा प्रथम रोसे कर प्रेसर कुकर न कर हांडी कर
1: खराब
0: कर केमती कौन खाइले पुनी रोहिले केमती
1: जतरे पोर दिसले तर फटार दिले खाइम दउ
0: आपण कोन कले उपास रहले
1: होटल रे लेकिन खाइलु
0: अच्छा
1: आ जतरे मो पूरा माने पाया करेली जतरे मो चन्नी पकेत दिले हातरे ताको पूरा मुठे मुठे लागला ताको हम खाइ देले
0: अच्छा पिला माने कोन कहले
1: पिला न कहले आ आज कोन खिरी करतो मो कहले हम डाल पालनी आ केमती के चावल अधिक पानी पकेरी दिली
0: अच्छा सही गोटे कम हो पारिता सही गोटे कम हो पारिता से जो जाऊ भात आपड़ कि चीनी पकई पारे हाल्का टे लुण पकई दे पारे सीटा बढ़िया खाद्य जमीती खीरी हो जाता से भी पारिता नष्ट कर ना बहुत बढ़िया कथ बहुत आटेम्प्ट अच्छा बर्तमान बढ़िया रोसे कर प्रेसर कुकर मानते उतरुनी पेज उतरुनी Stay tuned.

0: सतीटून करछन्दी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सोचालछि वर्तमान डालिन लाइफ चिटचाट कार्यक्रम जोठी आपण मनक पई प्रश्न रहिछि आपण केबे रोसे करछन्ती कि जदि ह तबे प्रथम थरो रोसे करिवार अनुभूति केमिति आपण करथिला आम नंबर होछि 0671203315 आउ थरे आमे कहि रखिबु जे जो माने भी एफएम रेनबो सहित जोड़ी हेबाकु चाहूछन्ती तो चेष्टा करंतु संक्षिप्त भावरे समानकर कथा रखिबाकु मनर कथा रखिबाकु विषयवस्तुर कथा रखिबाकु आउ अन्य माने भी अन्य फ्रेंड्स माने भी अपेक्षा करछन्ती एफएम रेनबो सहित जोड़ी हेबा पई तबे देखिबा परवर्ती एसएमएस क्षमा करबे आम सहित आमको के कॉल करछन्ती हेलो
1: हेलो सर नमस्कार
0: नमस्कार के कहछन्ती
1: राजेन्द्र
0: नना कहते कौटू कौन मंदिर रोसे मंदिर रोसे करते मंदिर रोसे करते डालमा
1: खिचुड़ी
0: अच्छा प्रथम प्रथम राजेन्द्र नना प्रथम रोसे आप मन अच्छे
1: मंदिर
0: मंदिर मैं रोसे कर बयस पाखापाखी सब
1: ठाकुर खाइब दस जन पंद्रह जन कोड़ी जन पंद्रह जन आस तुल गैस मुझे रोसे कर प्रथम बोधे सतुरी मसीहा पूर्व
0: क्या बयस होता
1: बार चौदह वर्ष पंद्रह वर्ष सतुरी मसीहा पूर्व क्या
0: अरे बापरे 14 वर्ष बयस रोसे कर अनुभूति कौन थी करके समस्त को समस्त बाबा कहले
1: लोग
0: नहीं रोसे कर मंदिर रोसे करेंगे सेठ तो आपको बहुत लोग साय करेंगे रोसे भाव
1: कटा मैं रोसे सर आज बड़ कथा नुह
0: बहुत बढ़िया
1: डाली की मसला अदा

0: नमस्कार, वर्तमान मुख्य संवाद सह मु लहरिका पटनायक। आषाढ़ शुक्ल द्वादशी तिथि पुरी में अनुष्ठित होउछि श्रीजीवंक अधरपणा नीति। रथर पार्श्व देवादेवी और चंडी चामुंडामानक पई समर्पण करा जायथाय अधरपणा। केन्द्रापड़ा तुलसी क्षेत्र में ब्रह्म तालध्वज रथरे रघुनाथ बेशरे श्रद्धालुंकु दर्शन देले श्री बलदेवजी। आज विलंबित रात्रि अनुष्ठित हेब नीलाद्रि विजय। समग्र देश में आज पालन कर 27वां कारगिल विजय दिवस। वीर शहीद मान श्रद्धांजलि जनाउछि कृतज्ञ राष्ट्र। 1999 मसीह 84 दिन युद्ध में सारा विश्व देखिथिला भारतीय सेनार शौर्य एवं पराक्रम। आकाशवाणी आज 136वां मन की बात रे देशवासी भाव विनिमय कले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। 27वां कारगिल विजय दिवस श्रद्धांजलि अर्पण कर कहिले मातृभूमि सुरक्षा पाई कारगिल वीर शहीद सर्वोच्च बलिदान स्मरणीय हो रहा। हर घर त्रिरंगा अभियान देश को एकत्रित अगस्त 15 तारीख पूर्व माई गव पोर्टाल निजस्व चिंताधारा एवं परामर्श पठाइबाकु देशवासी अनुरोध कले प्रधानमंत्री। जम्मू मूल शिविर अमरनाथ अभिमुखे यात्रा आरंभ कले 19वां तीर्थयात्री दल। संबलपुरी भाषा साहित्य और संस्कृति को विश्व दरबार में पहुंचाई अगस्त 1 को संबलपुरी दिन भाव पालन करने लगे आयोजन करुछि संबलपुरी एकता मंच। ग्लास्को राज्यगोष्ठी क्रीडारे भारत पाई रौप्य पदक आणिले भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह 60 केजी वर्ग रे एही सफलता हासिल कले। बंगोपसागर रे सृष्ट लघुचाप अवपात रे परिणत। आसंता 24 घंटा मध्य रे प्रबल वर्षा हेबा नै 10टी जिल्ला को पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सतर्क सूचना जारी। जगतसिंहपुर जिल्ला रे आसंता काली प्रबल वर्षा संभावना थिबारु समस्त स्कूल छुट्टी नै जिल्लापालक घोषणा। आसंता 3 दिन पर्यंत समुद्र अशांत रहुथिबारु मत्स्यजीवी को समुद्र मध्यक जिबाकु करा जायछि बारण। मुख्य संवाद वर्तमान पई इतिकि परवर्ती मुख्य संवाद सुनि परिबे राति 7 रे।
1: यहां खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहां होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूं कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा
1: है, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर पूरी खबर।

सदीटून कुछंती 101.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सुनतु कार्यक्रम सूचना प्रथमे चलित अधिवेशन गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानसर 90वां भाग सुनिबे संध्या 6टा बजे 10 मिनिट रे भक्ति गीतर कार्यक्रम आराधना सुनि परिबे संध्या 6टा बजे 30 मिनिट रे प्रायोजित कार्यक्रम कथार कथार गीतरे गीतरे सुनि परिबे संध्या 7टा रे संध्या आसर सुनिबे राति 7:25 मिनिट रे राति 8टा रे सुनिबे मन की बात शीर्षक रे भारतर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देशवासी उद्देश्य देथिबा उद्बोधन ओडिया भाषांतर राति 8:30 मिनिट रे सुनिबे गीतरे मितरे राति 9टा रे सुनिबे द आकाशवाणी पॉडकास्ट रिले करि प्रचार करिबु आकाशवाणी दिल्ली रु अबुला स्मृति राति 9:30 मिनिट रे सुनिले चलित अधिवेशन कार्यक्रम सूचना

राजा जनक की यज्ञशाला जानकी के स्वयंवर के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञस्थल पर बुला भेजा।

0: ଶୁଣିଲି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସର ନବେତମ ଭାଗ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:20 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इत्याख्ये कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणः उद्बोधनम्। प्रख्यापितं तेन सामूहिक सहभागितायाः वैशिष्ट्यम्। कारगिल विजय दिवसावसरे प्रधानमंत्री प्रभृतयः हुतात्म वीरेभ्यः श्रद्धांजलिं समार्पयन्। प्रधानमंत्रिणा अद्य कारगिल विजय दिवसे राष्ट्रस्य अतुल्य हुतात्म पुरुषाः ससंभ्रमं संस्मृताः। प्रोक्तं च यत् देशाय तेषां महाबलिदानं सर्वान् गौरवपूर्णान् करोति। मातृभूमेः रक्षणाय हुतात्म वीरेभ्यः राष्ट्रपत्यादिभिः भावाञ्जलिः समर्पितः। कृष्णसागर मार्गेषु पोत सेवायाः पूर्वं सुरक्षा संकटं परीक्षणाय विदेश मन्त्रालयस्य भारतीयानां कृते तीव्रा संचेतना। ग्लास्गो नगरे समायोजितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु ऋषिकांत सिंह चनम्बम 60 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धायां अनुपमं कौशलं प्रदर्श्य रजत पदकं समुपार्जितवान्। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायां भारत जिम्बाब्वे देशयोर्मध्ये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः तृतीया स्पर्धा अद्य हरारे नगरे प्रचलति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् भारतस्य सांस्कृतिक मूल्येषु सामूहिक सहभागित्वं सर्वदा बलस्य स्त्रोत्रो वर्तते। श्रीमोदी अद्य दृश्य श्रव्य माध्यमेन 26,000+ विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इत्यस्य प्रतिभागिभिः सह वार्तालापावधौ एतद् उक्तवान्। अद्य कारगिल विजय दिवसावसरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रस्य अतुल्य पराक्रमिणः शौर्य पुरुषान् ससंभ्रमं सस्मार। तेन उद्घोषितं यत् भारतं अद्य निरन्तरं नूतनान् उच्च शिखरान् आरोहति। तद्यथा सैन्य उत्पादने सैन्य निर्याते अथवा मित्र राष्ट्रैः सह राजनैतिक सहयोगे भवतु। आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे देशवासिनः सम्बोधयन् श्रीमोदी आह यत् अद्य जुलाई मासस्य 26 दिनांको वर्तते। यो हि सा तिथिः यस्याः संस्मरणाय कस्यापि पञ्चाङ्गस्य आवश्यकता नैव वर्तते, यतो हि अद्य सम्पूर्णे राष्ट्रे कारगिल विजय दिवसः परिपाल्यते।
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: श्री मोदी न्यगादीत यत् भारतम् अश्रान्तं स्वकीयस्य प्राविधिक सामर्थ्यस्य सुदृढीकरणं विदधाति। तेन भारतीय नौसेनायां

0: INS महेन्द्रगिरी इति पोतस्य नूतन प्रवेशः विशेषतः श्लाघितः। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् गत रविवासरे विक्रम 1 इति उपग्रह प्रक्षेपकस्य सफल प्रक्षेपणानन्तरं प्रत्येकं भारतीयः गौरव गौरवेण परिपूर्णो वर्तते। कैच द रेन इति वर्षा जल संग्रह अभियानमधिकृत्य भाषमाणः श्रीमोदी सहर्षम् अब्रवीत् यत् जुलाई मासस्य चतुर्थ दिनांकात् आरभ्य अशेषे हि देशे विशिष्टमेकं राष्ट्रव्यापी अभियानम् अविरतं प्रचलति।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: अद्य मन की बात इति मनोगतम कार्यक्रमे प्रधानमंत्री अवोचत् यत् कतिपय दिवसेभ्यः पूर्वं ग्लास्को नगरे प्रारब्धासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु सहभागिनं प्रति एकं क्रीडकं प्रति एकः भारतीयः जयघोषं करोति। अनेनैव सह तेन विज्ञान ओलंपियाड स्पर्धानां उल्लेखो विहितः, यत्र विपुला संख्यानां छात्राणां सहभागिता भवति। अस्मिन् संस्करणे प्रधानमन्त्रिणा कश्मीरस्य पारम्परिक वागु कटस्य चर्चा अपि कृता। श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् देशः सम्प्रति लोकल फॉर वोकल, स्थानीय वस्तूनां प्रोत्साहनम् इति मन्त्रेण सह अग्रेसरति। गणेशोत्सवावसरे पीओपी निर्मित प्रतिमानां स्थाने स्वदेशी मृत्तिका निर्मितानां गणेश प्रतिमानामेव अर्चनं विधातुं तेन पुनरपि आह्वानं कृतम्। अवधेयं च यत् श्वः जुलाई मासस्य 27 दिनांके भारत रत्न विभूषितस्य डॉ एपीजे अब्दुल कलामस्य पुण्यतिथिः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा अभिहितं यत् डॉ कलामस्य व्यक्तित्वे बहवः प्रेरणादायिनः पक्षाः समाहिताः आसन्, तथापि शिक्षकस्य भूमिका तस्य हृदयस्य निभृत समीपे आसीत्। सम्बोधनस्य समापने अगस्त मासस्य 15 दिनांके आचरणीयस्य स्वातन्त्र्य दिवसस्य चर्चां कुर्वन् तेन सर्वेभ्यः स्वकीयाः नूतनाः विचाराः परामर्शाश्च माई गव मञ्चे प्रेषयितुं साग्रहं प्रार्थितम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नवनवत्युत्तर नवदशतमे वर्षे संवृते कारगिल समरे मातृभूमेः संरक्षणाय वीरगतिं गतानां भारतीय सैनिकानां अतुल्य वीरतायाः सम्माननाय अद्य अशेषे हि देशे कारगिल विजय दिवसः परिपाल्यते। अयं दिवसः अस्मिन् संग्रामे पाकिस्तानस्य उपरि भारतस्य ऐतिहासिक विजयस्य तथा ऑपरेशन विजय इति सैन्याभियानस्य सफल समाप्तेः 27वं वार्षिकोत्सवं व्यंजयति। अभियानावधौ भारतीय सैन्यबलैः जम्मू कश्मीरस्य कारगिल जनपदे पाकिस्तानीय सैनिकैः आतंकवादिभिश्च अनुप्रविष्टान् भूभागान् पुनरपि स्ववशं समानीतम्। अत्रावसरे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाहः, लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़ला च मातृभूमेः रक्षणाय समरांगणे प्राणाहुतिं कृतवद्भ्यः हुतात्म वीर सैनिकेभ्यः भावपूर्णं श्रद्धांजलिं समर्पितवन्तः। सामाजिकान्तर्जालीय पटले स्वकीय संदेशे राष्ट्रपति पदासीना उक्तवती यत् सैनिकानाम् अतुल्यं शौर्यम् अविचलः संकल्पः परम देशभक्तिश्च भारतीय सशस्त्र सेनानां पारम्परिक गरिमाणं निदर्शयन्ति। विदेश कार्य मंत्रालयेन अद्य एका सुरक्षा परामर्श विज्ञप्तिः प्रसारिता यस्यां कृष्ण सागर क्षेत्रे संचरत्सु अथवा तद्द्वारा प्रवहत्सु वाणिज्यिक पोतेषु सेवा नियोजनम् इच्छन्तः भारतीय

0: ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଲିଛି ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅଧରପଣା ନୀତି। ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରିବେ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି। ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ନୂତନ ଶିଖର ଛୁଇଁଛି, ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିକଶିତ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ ବୀର ସେନାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଶବାସୀ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଅବପାତର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସତର୍କ ସୂଚନା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ओडीएफ से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं है। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटी और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल।

0: प्रियो टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानंती कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतारु मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छात ऊपर सोलर पैनल बसंतु एवं वर्षक 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 18003456718 किंबा 1912 रे जोगाजोग करंतु।
1: जानवर चलचित्र गीत गाई अलका याग्निक सुनील चौहान एवं साथी।

सधैं आपणमानंकु स्वागत आजर संध्या असर कार्यक्रमको संडे र मजा आउ एमितरी बाहरे टुपटाप वर्षा र मजा माने बाहरे वर्षा होची घर भितरे आपणमान निश्चित भाबरे मजा करथबे फॅमिली मेंबर्स मानक सहित निहाती माने कोंतिनी वर्षा बाहरे थिबो आउ आपण माने घरे थिबे तो एई समय रे किछ ना किछ गोटे चटपटा जिनस खाइबाकु सबळे मन होए पागो नेकी मनरे मध्य परिवर्तन आसे पागर जेमिति परिवर्तन आसे मौसम रे जेमिति परिवर्तन आसे सेमिति मनरे मध्य परिवर्तन आसे कुआ जे वर्षा आसले केवल प्रकृति नुहे आमर खाद्य अभ्यास मध्य बदलि जाए ठीक ना हाँ बदलवा भी निहाती दरकार जेहेतु आज पूरा सारा दिन छुट्टी आई छुट्टी समय भितर जेतेबेले आपणक पाखरे एफएम रेनबो थिबो रेनबोर किछि मीठा मीठा गीत आपणमानक पाखरे थिबो आउ किछि मजेदार कथा भी थिबो किछि इन्फॉर्मेशन्स थिबो आउ ता सहित आपण घरे थिबे बाहरे टुपटाप वर्षा होथबो तो से समय करिबे भी कोन त बाध्य है कि चूला पाखकु जिबे घरे काहाकु कहिबे जे किछि गरमा गरम पकुड़ी हो किछि छणा छणी जिनस हले बहुत भल हबो तो ये सब तो निश्चित भाबरे चलिबो निहाती दरकार टेस्ट को टिके माने कोनती शांत करबाकु जदि आपण चाहौचेंती ए समय ए सब जिंस को करबाकु पड़िबो तो बेस्ट हव सबटो बाहरे बरम जाय के ए सब जिंस खाइबा अपेक्षा घरे आपण ए सब जिंस को प्रस्तुत करके कम कम खाई परिबे आ सबटो बड़ कथा होची ई पागो जेहेतु ठंडा रहिची बाहर मौसम जेहेतु टिके खराब रहिची तो आपण आपण को टिके लागथबो ठंडा ठंडा लागथबो तो ए समय आपण सबटो बेस्ट जिंस हबो परिवार लोक मानक सहित मजा करिबा पई मस्ती करिबा पई आउ संपर्क को मजबूत करिबा पई गोटे गरम चा मध्य पी पारिबे गरम चा मु एम

चांद की चाहत नहीं मुझे, सितारों की ख्वाहिश भी नहीं, बस एक तुम मिल जाओ, फिर किसी और चीज की जरूरत भी नहीं। ट्यून कर छंती 100.4 आगस बनी FM रेनबो कटक, दिल से दिल तक।

तुम्हारा नाम लूं तो होंठ मुस्कुरा उठते हैं, तुम्हें सोचूं तो दिल महक उठता है। मोहब्बत शायद इसी एहसास का नाम है, जहां हर पल बस तुम्हारे ही खेल रहता है।

0: ସେତି ସମୟ ହେଉଛି ଆଜିର ଗୀତରେ ମିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲି କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल

0: संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
2: आज सुबह 4 बजे हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात

0: कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
1: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सब

0: कई सुविधाएं बाद में ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
2: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वैश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से ओडिशा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-powered task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on Kargil Vijay Divas. Prime Minister Modi urges citizens to honour Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure

0: capable and self-reliant India. Defence Minister Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in the women's 48-kilogram event and Rishikant Singh Chanambang back...
1: Well, तस्वीर हो गया हूँ तस्वीर देखकर हैरान है दिल यार की तकदीर देखकर Well, तकदीर बनाने के लिए आप भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर पिक अपलोड करते होंगे और लाइक्स कमेंट्स ये किसे पसंद नहीं है लेकिन फिर भी कहते हैं कि व्यक्ति को टैलेंटेड होना चाहिए स्मार्ट तो आपका फोन भी है लेकिन वो स्मार्टफोन कहीं किसी और को ओवर स्मार्ट तो नहीं बना रहा क्या कोई और तो नहीं है जो आपके लाइफ में दखल दे रहा है वेल नमस्कार सत श्री अकाल आदाब एंड कॉपी टू ऑल दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आरजे गौतम आपकी खिदमत में हाजिर है द आकाशवाणी पॉडकास्ट और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं इनके बारे में कहूंगा कि बहुत वक्त लगा है मुझे अपना किरदार बनाने में जमाने को जमाना लगेगा मुझे हराने में प्रेजिडेंट ऑफ साइबर लॉज नेट एंड एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया Specialized in field of cyber law, cyber crime law, cyber security law and artificial intelligence. Dr. Pavan Duggal ji, bahut bahut swagat hai aapka.
2: धन्यवाद बहुत अच्छा लग रहा है आज आकाशवाणी के पॉडकास्ट प्रोग्राम पर आकर
1: देखिए शुरुआत जो है लाइटर नोट पर ही हम करेंगे अभी कहते हैं कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों और शो शुरू होने से पहले ना हम खाने पीने की बात कर रहे थे लेकिन आजकल आपको व्हाट्सएप पे भी कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जो कहीं ना कहीं इन्विटेशन होते हैं इन्विटेशन कार्ड की तरह आते हैं और आप उसके थ्रू भी डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं आपको समझ में नहीं आता है कि ये चार डिजिट का जो ओटीपी है वो किस तरीके से आपके अकाउंट नंबर्स को फेरबदल कर सकता है ऐसे बहुत सारे सवाल हैं हमारे आपसे कैसे होता है डिजिटल अरेस्ट
2: देखिए आज साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा शातिर हो गए हैं और वो कोशिश करते हैं कि रोज नए पैंतरे नए तरीके नए मेथोडोलॉजीज अडॉप्ट करें ताकि लोगों को टारगेट कर सकें शिकार बना सकें और अब उनके लिए तो और खुशखबरी हो गई है क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये लोग नए नए प्रकार के प्रकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों को टारगेट कर रहे हैं और लोग चाहे कुछ भी हो जाए कहीं ना कहीं बुनियादी तौर पर डरे होते हैं इनफैक्ट कोविड-19 ने सदैव के लिए हमारे जीवन में दो चीजों का छाप छोड़ दिया एक है डर और दूसरा है पैनिक कोविड के बाद हम जल्दी डर जाते हैं जल्दी पैनिकी हो जाते हैं और इसी डर इसी पैनिक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं साइबर क्रिमिनल्स पहले डराते हैं हमारा विश्वास लेते हैं और फिर हमें विवश करते हैं कि हम पैसे दें तो डिजिटल अरेस्ट उसी का एक नया स्वरूप है साइबर क्राइम का एक नया अवतार है देखिए साइबर क्राइम का एक अगर आप यात्रा देखें तो हर बदलते दौर के साथ साइबर क्राइम ने अपनी शक्ल को अपनी मैनिफेस्टेशन को बदला है आज का जो फ्लेवर ऑफ द सीजन है वो साइबर अरेस्ट है या डिजिटल अरेस्ट है उसका कारण बहुत क्लियर है आज लोगों को अगर आप विश्वास में ले लेते हैं तो भारत में एक प्रॉब्लम है हम लोग विश्वासी हैं जल्दी विश्वास कर लेते हैं जो देखते हैं सुनते हैं पढ़ते हैं बिना सोचे समझे कि भाई आज तो हैलुसिनेशन का जमाना है आज चारों ओर डीप फेक है गलत इन्फॉर्मेशन है फॉल्स रूमर्स हैं और अगर हम अपनी ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे तो संभावित तौर पर हम फंसेंगे साइबर क्रिमिनल्स इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और हमें डिजिटल अरेस्ट करते हैं देखिए मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज कोई है ही नहीं
1: अच्छा
2: कानून कहता है कि साहब अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट करना है गिरफ्तार करना है तो आपके घर आएगी आपके दफ्तर आएगी आपको अरेस्ट करेगी सर्च वारंट देगी अरेस्ट वारंट देगी अरेस्ट करेगी लेकिन हुआ क्या कि 2023 में भारत ने अपने तीन क्रिमिनल लॉज को बदला जिनमें भारतीय न्याय संहिता आ गई और BNSS आ गए तो उसके तहत साइबर क्रिमिनल्स ने एक नया नैरेटिव प्रारंभ किया 2024 में कि साहब इंडिया ने तो अब नए साइबर क्राइम्स और साइबर रिलेटेड लॉज बनाए हैं तो अब ये लॉ कहते हैं कि साहब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं और लोग इस पर विश्वास करने लग गए और यही रीजन है कि लोग कहीं ना कहीं साइबर अरेस्ट की या डिजिटल अरेस्ट के शिकार होते जाएं अभी 3 महीने पहले मेरे पास केस आया है दिल्ली के एक बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस में एक 76 साल की महिला रहती है और अकेली रहती हैं 5 उनके नौकर हैं दोनों बच्चे बाहर हैं और उन्हें फोन आता है कि साहब आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं वो कहती है भाई मैंने तो इतना सब सुन लिया है और दिल्ली पुलिस कितने संदेश सुन

0: डिक्शनरीज कुछ नहीं होता, मैं आपको नहीं मानती. वो कहते हैं अच्छी बात. फिर कहते हैं कि साहब आप इस फार्म हाउस में रहते हैं? वो कहती है हाँ. कहते हैं हमने आपके चारों फार्म हाउस की ओर अपने शार्प शूटर्स लगा रखे हैं, अगर आपने कुछ गड़बड़ी करी तो हम आपको भून डालेंगे. जब उन्हें
1: लोकेशन बताते हैं,
0: लोकेशन बताते हैं ये आपका फार्म हाउस है, और बताते हैं कि साहब हमने फार्म हाउस के आसपास अपने शार्प शूटर्स रखे हुए हैं, अगर आपने कुछ भी गड़बड़ करी तो हमारे शार्प शूटर्स आपको भून देंगे. जब उन्हें लगता है कि मेरी जान ही जाने वाली है, तब वो कहते हैं भैया जो पैसे लेना लो. पहले शुरुआत में 15,000 यूपीआई के थ्रू पेमेंट होती है, फिर वो कहते हैं बैंक से पेमेंट करो, फिर उन्हें पता है कि आपके इतनी एफडी है. तो करीबन 3 दिन में वो 3,74,00,000 रुपए दे चुकी होती हैं. जब उन्हें लगता है कि मेरे पास अब पैसे रहे नहीं, तब वो कहती है हमने मुझे मारना मार दो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पुलिस के पास चली. तब वो आके रिपोर्ट करती है. तो आज जब इतने बड़े लेवल पर इतने एजुकेटेड लोग भी आज डिजिटल रिस्क का शिकार हो जाते हैं, तो हम सबको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि हम कल शिकार हो सकते हैं.
1: देखिए आपने डर की बात कही थी
0: जी,
1: लेकिन डर आना स्वाभाविक भी है, बिकॉज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कहते हैं ना कि ये मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, वो आवाज बदल के भी आपके सगे संबंधी की आवाज में आपसे बात कर सकते हैं. और वो पैनिक होना किसी का भी स्वाभाविक है, बिकॉज आपका घर में आपका कोई बेटा हो, कोई पिता हो, और जब उसकी आवाज में कॉल आएगी तो लोग कैसे नहीं डरेंगे.
0: यही तो प्रॉब्लम है कि हमको लगता है कि हमारे परिवारजन सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है. अगली बार कोई कॉल आए, हम सबको अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना है,
1: ठीक
0: और
1: है.
0: वो ब्रह्मास्त्र है राइट टू डिस्कनेक्ट. मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर देना है, कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रलोभन हो, कोई भी डर हो, कोई भी शक शुबा हो, मुझे कॉल डिस्कनेक्ट करना है. क्यों? क्योंकि डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं पहले अपने परिवारजन को कॉल करूंगा या करूंगी कि भाई तुम ठीक तो हो, मुझे मैसेज आया है. अगर उनसे बात हो गई और वो खतरे में है, तब मैं आगे बढ़ूंगी. लेकिन अधिकांश लोग जो अपने ब्रह्मास्त्र की जो पावर है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और वो क्योंकि डिस्कनेक्ट नहीं करते तो उस भंवर में फंसते चले जाते हैं. तो बॉटम लाइन ये है, एक बार आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, एक आपका डर चला गया, दूसरा अब आपको ये चिंता नहीं रही कि साहब ये मुझे तंग करेंगे या मुझे टारगेट करेंगे, तीसरा मुझे मौका मिलेगा कि मैं अपने परिवारजनों को कॉल करूंगी, मैं संतुष्ट हूं, सब बढ़िया ठीक ठाक है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, और उस नंबर को ब्लॉक करूंगी. और साथ ही साथ अब अगली बार ये भी एक प्रण लूंगी कि भाई अब ऐसा कोई कॉल होगा तो मैंने पहले 2 सेकंड के बाद कॉल को रखना ही नहीं है. कॉल को डिस्कनेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई लोग बुरे मानते हैं, मानने दें. मेरा बुनियादी जो मेरी जिम्मेवारी है वो मेरे प्रति है, मेरे परिवार के प्रति है, मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को, अपने परिवारजन को प्रोटेक्ट करना है.
1: देखिए आजकल क्या हो रहा है ना कि फॉर एग्जांपल सर हम बात कर रहे हैं अभी बैठकर, कोई किसी भी प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, चाहे आपको कुछ भी खरीदना है, फोन लेना हो, टी शर्ट लेनी हो, अगर आपका फोन दूर भी रखा हुआ है थोड़ी देर के बाद आपको वो सारी चीजें दिखाने लगेगा, मतलब आपका डेटा इस तरीके से भी सेफ नहीं है. और बहुत बड़े बड़े को फाउंडर्स जो हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो जब बैठते हैं काम करने के लिए, चाहे वीडियो कैमरा ऑन हो ना हो, वो टेपिंग करके चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, पहले के जमाने में आप ताला लगाकर रखते थे अपने घरों में, लेकिन आज चाबी सामने वाले को खुद आप दे रहे हैं, अलाउ अलाउ एंड अलाउ.
0: समस्या ये है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा फोन हमारा जीवन संगनी है, कि इसके बगैर तो जीवन चल ही नहीं सकता. कभी उम्मीद करिए 15-20-30 साल पहले जब ये फोन नहीं हुआ करते थे, क्या जीवन नहीं चला करता था? जीवन जब भी अच्छा चला करता था और संतुष्ट रूप से चला करता था. प्रॉब्लम क्या है ना, हमें लगता है कि फोन सिक्योर है, फोन बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है. मुझे लगता है कि फोन से ज्यादा अनसिक्योर डिवाइस आज की तारीख में नहीं है. दूसरा, हम फोन को साधु संत क्यों मानते हैं? ये फोन जो है केवल फोन नहीं है, खासतौर पर स्मार्टफोन, ये एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है, ये कॉन्स्टेंटली आपकी बातों को सुनता है, आपकी इजाजत के बगैर ये आपकी बातें आपके डेटा को बाहर भेजता है, उस डेटा का विश्लेषण कर कंपनियां या एडवर्टाइजर्स आपको टारगेट करते हैं. उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बात करता हूं कि मुझे कल सुबह बॉम्बे जाना है, बस ये बात करूंगा, अगले 5 मिनट बाद मेरे फोन पर ये मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, साहब बॉम्बे की चीप टिकट यहां है, बॉम्बे के अच्छे होटल यहां पर है. ये तब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली सुन रहा है. तो अगर आप अपनी निजता का संरक्षण करना चाहते हैं तो मेरा सबने निवेदन है कि 2 फोन रखने का प्रयास करें, एक नॉर्मल फोन और एक फीचर फोन. जो बिल्कुल 1500-2000 वाला फोन होता है वो सिर्फ फोन का काम करता है, वो लिसनिंग डिवाइस नहीं होती, वो फोन जो है आपकी प्राइवेसी को काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है.
1: देखिए डिजिटल हो चुके हैं हम, और

0: ये होता है कि आप लॉ लेकर आए इंडिया में या फिर जितनी भी अदर कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अंडर 15 हैं तो आप अलाउ नहीं है सोशल मीडिया पर आने के लिए. लेकिन इंडिया में ये डेटा आपको बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा कि यंगस्टर्स बहुत बड़े पैमाने पर वो दिखाना चाहते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है जानबूझकर और लोगों को. तो इसके लिए कोई लॉ है
1: आज की तारीख में? भारत के पास ऐसा कोई कानून नहीं है. ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून पारित करके इम्प्लीमेंट किया है कि साहब बच्चों को सोशल मीडिया पर एक्सेस नहीं मिलेगा, खासतौर पर जब वो 15 साल के ना हो. हमारे यहाँ कानून कहता है कि साहब जब तक आप 18 के नहीं हुए तब आपको बच्चा माना जाएगा. लेकिन ऐसा कोई कानून भारतवर्ष में नहीं है जो बच्चों को बार करता है, बैन करता है कि वो सोशल मीडिया पर एक्सेस ना करें. इनफैक्ट ये बैन तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आज तो हमने बच्चों को बहुत छोटी उम्रों में डिवाइसेस देने शुरू हो गई. कुछ साल पहले हमारे एक परिचित के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई और वो बच्ची जब 2 महीने की थी तो उसके माँ बाप ने उसको एक गिफ्ट दिया. गिफ्ट क्या दिया? एक आईपैड मिनी कनेक्टेड टू द इंटरनेट.
0: ओके.
1: अब जिस बच्चे ने कभी जिंदगी में पहला शब्द नहीं बोला उसने आपने उसको आईपैड दे दिया. जब वो बच्ची 6 महीने की हुई वो आईपैड को प्ले करने के लिए के संदर्भ में अपने पेरेंट्स से ज्यादा आगे निकल चुकी थी. और जब इस तरह की हम चीजें कर रहे हैं वो दूसरी बात है कि बच्ची का नेगेटिव इतना इम्पैक्ट हुआ उसके माइंड पर कि उसने पहला शब्द जो उसे 6-7-8 महीने में बोलना था वो उसने 19वें महीने में बोला.
0: स्पीच डिले
1: हो गई. बट द फैक्ट इज कि हम तो आज बिजी है ना. हम कहते हैं भाई बच्चों को चुप कराने के लिए फोन दे दो, फोन देखता रहेगा, गेम्स खेलेगा, ठीक है. मुझे लगता है इससे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल कोई काम हम कर ही नहीं सकते. अगर आपने अपने भविष्य में अपने फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करना है तो उसे अनावश्यक तरीके से इंटरनेट के एक्सपोजर से बचाना है. ठीक है, इंटरनेट जरूरी है लेकिन बच्चों को बताना भी तो जरूरी है कि सोशल मीडिया केवल एक बहुत ही अट्रैक्टिव सेक्सी पिक्चर नहीं है. सोशल मीडिया पर हर प्रकार के पीडोफील्स मौजूद हैं, साइबर क्रिमिनल्स मौजूद हैं जो बच्चों को टारगेट कर सकते हैं, उनको आजीवन के लिए उनको आघात करा सकते हैं. तो मुझे लगता है बच्चों को एम्पावर करना जरूरी है लेकिन कानून के माध्यम से नहीं, क्योंकि कानून का तो उल्लंघन रोज होगा. बेटर यह है कि माँ बाप की जिम्मेवारी है बच्चों को दोस्त होने के तौर पे बताएं कि साहब ये खतरे हैं, आप बच के रहिए. क्यों? क्योंकि अगर आप फंस गए तो हो सकता है आपका आने वाला जीवन एक सदैव प्रेजुडिशियल इम्पैक्ट हो जाएगा.
0: देखिए कहा जाता है कि देखिए गलतियों की माफी हो सकती है गलत फहमियों की नहीं. अगर आप गलत फहमी का शिकार हो गए, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर्स को देखते हैं, डॉक्टर्स को देखते हैं, बहुत बड़े बड़े जो फील्ड में धुरंधर हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलतियां उनसे हो जाती है, डिजिटल अरेस्ट वो हो जाते हैं, उनके अकाउंट से पैसा चला जाता है, अब उनका पहला रिएक्शन क्या रहना चाहिए? चलो रिएक्शन तो हमें पता है क्या होना चाहिए, लेकिन पहला मूव क्या होना चाहिए?
1: पहला मूव आपका होना चाहिए कि साहब हो गई गलती, हो गई, जहां से जागूं वहीं से सवेरा समझूं. तो इसलिए तुरंत शोर मचाना है, चुप नहीं बैठना है. कहां शोर मचाना है? आपने इसको इन्फॉर्म करना है पुलिस को. आपके पास तुरंत सरकार ने 2 विशिष्ट विकल्प दे रखे हैं. आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं, 1930 जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, और तुरंत कॉल कर लीजिए, क्योंकि तुरंत कॉल करने पर अगर आपका कॉल लग गया और वो तुरंत आपके बैंक के अकाउंट में देखेंगे अगर पैसा है जहां पर भी बैंकिंग चैनल में, उसे फ्रीज कर देंगे. फ्रीज कर देंगे तो हो सकता है 1-1.5 महीने में पैसा वापस आ जाएगा. तो तुरंत आपने कॉल करना है. सेकंड, आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर भी रिपोर्ट कर सकते हैं, cybercrime.gov.in पर जाकर. यहां पर जाकर रिपोर्ट करिए और बताइए गलती हो गई, नो प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट बता लीजिए जितनी जल्दी. पहले हम कहा करते थे कि साहब गोल्डन आवर 1 घंटे का होता है, आज के तारीख में हम कहते हैं कि साहब आपका गोल्डन आवर पहले 7 मिनट है. अगर आपने पहले 7 मिनट में इन्फॉर्म कर दिया और उन्होंने आपका पैसा ब्लॉक कर दिया तब आपका पैसा बच जाएगा.
0: ये अगर आप मिनट आपसे कोई छीन नहीं सकता,
1: कोई नहीं छीन सकता. और अगर आपने 7 मिनट वेस्ट कर दिए तो पैसा सदैव चले जाने वाला है, और एक बार पैसा बैंक अकाउंट से चला गया तो वापस लगभग कभी भी आने वाला नहीं है.
0: बिल्कुल, पैसा तो ऐसी चीज है जो चला गया तो चला गया. अब देखिए 90% क्या कहूंगा कि 99% केसेस में ऐसा होता है, बहुत सारी मूवीज भी इस पे बनी है, जामतारा कह लीजिए या अदर वेब सीरीज, कि जो आपके साथ फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है ना, अगर दिल्ली में आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो किसी और स्टेट में बैठा हुआ है, कहीं गांव देहात में बैठकर पूरी प्लानिंग के तहत आपके साथ ये सारी चीजें जो है इसे अंजाम दिया जा रहा है. तो ऐसे में कैसे पकड़ा जाएगा, किस तरीके से रिकवर किया जाएगा?
1: देखिए चुनौती ये है कि इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है. और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बंदा कहीं पर भी बैठा हुआ किसी और कंप्यूटर सिस्टम में किसी और

0: शहर में किसी और राष्ट्र में जाकर टारगेट कर सकता है और पैसे से आपको वंचित करा सकता है. तो अभी प्रॉब्लम यह है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी कोई इंटरनेशनल साइबर लॉ नहीं है, ना ही कोई साइबर लॉ ट्रीटी मौजूद है. लेकिन आप क्योंकि जिस राष्ट्र में रहते हैं राष्ट्र के कानून आप पर लागू है. भारत का अपना विशिष्ट साइबर लॉ है जिसे हम बोलते हैं भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000. इस कानून का संशोधन हमने 2008 में भी कर रखा है और अब तो भारतीय सरकार 3 नए क्रिमिनल लॉज आ चुके हैं जिसमें भारतीय न्याय संहिता के तहत बहुत सारे नए साइबर क्राइम्स के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है. तो ठीक है, प्रॉब्लम ज्यूरिसडिक्शन की है बट हम अकेले नहीं है, सारी दुनिया की भी यही प्रॉब्लम है. लेकिन उसके बाद भी हमें तो काम करना है, हमें साइबर क्रिमिनल्स को टारगेट करना है. वो टारगेट तब करेंगे जब हम उन्हें पहचान पाएंगे, तुरंत आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उन पर कार्रवाई कर पाएंगे. आज की प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ कोई डेडिकेटेड साइबर क्राइम कानून नहीं है.
1: Right.
0: दूसरा, डेडिकेटेड साइबर कोर्ट्स नहीं है. आपका नॉर्मल साइबर क्राइम वाला मैटर भी नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट में जाता है. तो अगर आपके साइबर क्राइम वाले मैटर को फैसला आने में 7-8 साल लग जाएंगे तो लोगों का जो विश्वास होता है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है. तो डेडिकेटेड साइबर क्राइम कोर्ट्स की आवश्यकता है, डेडिकेटेड साइबर मैजिस्ट्रेट्स की आवश्यकता है हर इलाके में, ताकि हर प्रकार का साइबर मैटर केवल उनके पास जाए, उन्हें तुरंत पावर्स दी जाए कि तुरंत पैसा आप ब्लॉक कर सके. देखिए, आज जब मेरे यहां से पैसा जाता है तो मेरा पहली प्रायोरिटी होती है कि साहब मुझे मेरा पैसा दे दीजिए. बंदा पकड़ा जाए ना पकड़ा जाए मुझे उससे लेना देना नहीं. आप उसे जेल भेजे ना आप जेल भेजे मुझे उससे भी लेना देना नहीं, मेरा पैसा मुझे दे दे. तो मुझे लगता है आज के सिस्टम में एक खामी है. अगर हम ऐसे प्रावधान ला सके जहां पर लोगों के पैसे को वापस दिलवा सके जल्दी तौर पर, वो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा एक इम्पोर्टेंट विकल्प होगा. दूसरा है कि आप ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कंपनियां हैं, उनकी जिम्मेवारियों को और परिभाषित करें. वो ये ना कहें साहब मुझे तो कुछ नहीं पता. भाई आपके प्लेटफॉर्म पर हुआ है, आप बैंक हैं, आपके प्लेटफॉर्म पर हुआ, आप कैसे कह सकते हैं मुझे नहीं पता. और आप कस्टमर को कैसे विवश कर सकते हैं, भाई आप साबित दिखाओ, करके दिखाओ भाई मेरे यहां मिसयूज हुआ है, मैं विक्टिम बन गया हूं, अब तो तुरंत आप मेरी बात मानिए और पैसा जो ब्लॉक करिए. लेकिन आजकल बैंक्स भी जो है आपकी बात नहीं सुनते.
1: कई केसेस में ऐसा हुआ है कि आप एक व्यक्ति थे, उनके अकाउंट में कहीं से 5-10 हजार रुपए आए. अब वो इसकी कंप्लेंट करने के लिए जागरूक नागरिक की तरह बैंक में गए और बताने के लिए कि देखिए मेरे अकाउंट में ये पैसे आ गए. जब वो बैंक में खड़े हुए थे तभी उनके अकाउंट से और भी पैसे उड़ने शुरू हो गए और फिर वो इंस्टेंट एक्शन आप ले नहीं पाते. आपको पता ही नहीं होता आपके साथ हो क्या रहा है.
0: मुझे लगता है अब हमें समझना होगा कि साइबर क्राइम जिंदगी का डेली का एक इंटेग्रल पार्ट बन चुका है
1: जी.
0: तो इसलिए घबराना नहीं है. मैं मानता हूं आज केवल दो प्रकार के लोग हैं, एक वो जिन्हें पता है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं. तो इस संदर्भ में पैनिक नहीं करना, जब पता लग जाए शोर मचाना है, रिपोर्ट करना है और जितनी जल्दी रिपोर्ट करना है. लोग क्या कहेंगे इस थॉट प्रोसेस को भूल जाइए. आज अधिकांश लोग हैं साइबर क्राइम के शिकार बनते जा रहे हैं. तो जितनी आप जल्दी एक्शन लेंगे, प्रेफरेबली पहले 7 मिनटों में एक्शन लेंगे, तो संभावित तौर पर आपका पैसा बचने की पूरी उम्मीद है. जितना आपने डिले कर दिया उतना समय आपने साइबर क्रिमिनल को दे दिया. मुझे लगता है मैसेज जो है ना देना बहुत जरूरी है. तो लोगों की जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है इस दिशा में.
1: देखिए मास्टरमाइंड हो गए हैं आजकल हर कोई मास्टरमाइंड वाली जो अप्रोच करता है. फॉर एग्जांपल कल ही ना मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया और मेरे जो फोन में था वो कॉन्टेक्ट एड ऑन था भी नहीं. मतलब उसके बाद मुझे आता है मैसेज कि ये रहा चालान और हम दोनों का चालान हो गया. वो एपीके फाइल थी. आपके सामने कोई ऐसा केस आया?
0: आजकल बहुत सारे ऐसे केस हमारे सामने
1: जानना चाहेंगे. बिल्कुल.
0: और बहुत सारे केसेस मैंने डील किया है. ऑफ लेट एक ट्रेंड आया है जिसे बोलते हैं व्हाट्सएप वेडिंग कार्ड फ्रॉड. आजकल लोग शादियों के कार्ड तो भेजते नहीं है, व्हाट्सएप पर भेजते हैं. अब आप अंधाधुंध होकर उस फाइल को खोल देते हैं. द मोमेंट आप खोलेंगे उसके अंदर एपीआई फाइल होती है. ऑटोमेटिकली वो एक मलिशियस कोड आपके सिस्टम में आपके मोबाइल फोन पर रिलीज कर देती है. और वो इस तरीके से होता है कि आपका सारा डेटा उठा लेते हैं, उठा के बाहर भेज देते हैं और आपके पूरे फोन को ब्लॉक कर देते हैं. तो पता लगा आपका कॉन्टैक्ट्स भी गए,
1: आपका आप फोन कुछ भी नहीं कर पाए.
0: तो आज इस जल्दी में मत रहिए कि साहब ये इसके वेडिंग कार्ड आया. किसी भी वेडिंग कार्ड को ऑनलाइन व्हाट्सएप पर ना खोलिए, हो सकता है उसके अंदर मलिशियस कोड हो सकता है. दूसरी बात, आजकल तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आ गए हैं कि आपने सिर्फ एक लिंक को क्लिक किया, लेजिटिमेट लिंक है, क्लिक करते ही आपका पूरा फोन कॉम्प्रोमाइज हो गया. यहां तक कि फोन का जो कैमरा है और फोन का जो माइक है वो उन्होंने हाईजैक कर लिया और पता लगा आपको कुछ भी नहीं लगा.

0: और जो बातें हो रही हैं वो भी उन्हें सुनाई दे रही
1: हैं, कॉन्स्टेंटली चारों ओर सुनाई दे रही हैं। मेरे पास एक बहुत अजीब केस आया, ये एक दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल का केस है, 11वीं क्लास का बच्चा है,
0: ठीक है।
1: उसको टीचर ने एक दिन झाड़ दिया कि उसका होमवर्क सही नहीं था, तो उसने कहा चलो मैं सबक सिखाता हूँ। वो जाता है नेहरू प्लेस, वहां से कोई डिवाइस कोई प्रोग्राम लेकर आता है। अगली बार जब टीचर आती है, और टीचर की एक खास बात थी कि आके अपना पर्स जो है टेबल पे रखती है और फिर सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पे चीजें लिखने शुरू करती है, तो टीचर ब्लैक बोर्ड पे चीजें लिख रही है, ये लड़का जाता है और टीचर के फोन पर एक छोटी सी कुछ चीज डाल के आ जाता है।
0: ओके
1: और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल रहता है। 15 दिन बाद एक 2 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग रिलीज होती है। उसने क्या किया, एक छोटी सी डिवाइस उस टीचर के पर्स में डाल दी, जो 2400 घंटे सुर सिर्फ जो चीज बोली जा रही थी उसको सुन रहा था, और वो डिवाइस ये इन्फॉर्मेशन वापस बाहर भेज रहा था। तो इमेजिन करिए, आप अपना पर्स अपने ड्राइंग रूम में भी ले जाते हैं, बेडरूम में भी ले जाते हैं, तो जितनी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन टीचर ने किसी की जिसके साथ
0: कर, चाहे आप यूज कर रहे हो ना कर रहे हैं,
1: आपको पता ही नहीं है, पता लगा आपके फोन आपके जो पर्स के अंदर ये डिवाइस बैठा हुआ है, आपको पता नहीं, 24 घंटे रिकॉर्ड कर रहा है, आपके इन्फॉर्मेशन को बाहर भेज रहा है, और फिर उसका दुरुपयोग करके उसे इंटरनेट पर डाला जा रहा है, और उसके आधार पर उसको कट पेस्ट किया गया और उसको जानबूझ के डीप फेक बनाया गया, और फिर ये मैसेज फैलाया गया पूरे पूरे कंप्यूटर इस स्कूल में कि साहब इस टीचर का फला व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है।
0: ओहो, तो देखिए मतलब आपकी पर्सनल लाइफ एकदम डिस्ट्रॉय हो गई।
1: मुझे लगता है कि आज जो है ना आपको गुस्सा कम खाना चाहिए, दूसरा बच्चों को डांटना कम चाहिए,
0: खाने की बहुत सारी चीजें,
1: गुस्सा ना खाएं, क्योंकि कुछ नहीं पता, किसी ने आपसे पंगा ले लिया, आपके यहाँ कुछ डिवाइस डाल दी। और एक और आजकल जो नया केस आ गया है वो ये है कि साहब आप कहीं खड़े हैं, कोई बंदा आता है, बंदी आती है, साहब मेरा ना फोन गुम हो गया, मुझे दीजिए, मुझे
0: कॉल करने दीजिए। बस तो अमूमन होता है, हर किसी के साथ होता है,
1: और हम लोग दे देते हैं, पता लगता है वो कुछ नहीं, कॉल नहीं करती, वो ये कोड डाल देती है, विद द रिजल्ट आपके सारे कॉल्स किसी दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, और सारे आपके मैसेज दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, और उसके माध्यम से वो आपके सारे अकाउंट्स को पूरी तरीके से हैक करके मिस यूज कर लेते हैं।
0: ये भी होता है, फलाना कंपनी से है सर, सर्वे कर रहे हैं, 4 डिजिट, ये 4 डिजिट जो है ये बहुत सारे बड़ी डिजिट को आपके अकाउंट से गायब कर देता है, तो इस चक्कर में ना रहिए। वेल, ये सारे केसेस की तो हम बात कर ही रहे हैं, थोड़ा सा बात करते हैं प्रिकॉशन, सबसे ज्यादा प्रिकॉशन आप क्या ले सकते हैं, बिकॉज आज की डेट में बात करें तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज्यादा हो गया है। अब आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या कोई ऑफिस का काम भी कर रहे हैं तो आपको अलाउ तो करना ही पड़ेगा, डिसअलाउ आप कर नहीं सकते। इवन बहुत सारी ऐसी एप्स हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो जरूरत भी हो गई है, देखिए उससे कैसे बचेंगे।
1: मैं आपको ये तो कह नहीं रहा हूं कि आप हिमालय चले जाइए और संन्यास ले लीजिए, आपको इसी दुनिया में रहना है और इसी इंटरनेट का साथ काम करना है, लेकिन सतर्कता सावधानी के साथ आप अपने आप को बचा सकते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात कि आप जो चीज सुन देख या पढ़ रहे हैं उस पर तुरंत विश्वास ना करिए जब तक कि आप उसकी स्वयं पुष्टि ना कर गए हों। दूसरी, आप किसी भी कॉल को आप फॉर ग्रांटेड फॉर फेस वैल्यू पर ना ले लीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट बात करनी है, कॉन्फिडेंशियल बात करनी है, अपने फोन को कमरे से बाहर रखिए। कमरे से बाहर नहीं रख सकते तो अपने जहां आपकी लोकेशन है वहां से 12 फीट की दूरी पर रखिए, ताकि आपकी आवाज आपकी इन्फॉर्मेशन जो है फोन ना उठा सके। चौथी महत्वपूर्ण बात,
0: 12 फीट सर, 1 फीट दूर नहीं रख पाते हैं हम,
1: तो 12 फीट की बात कर रहे हैं ताकि भाई वो आपका सिग्नल कनेक्ट ना कर सके। चौथी बात, हम लोग ना आज इंडिया में 2 रेवोल्यूशंस को देख रहे हैं, ये दोनों ही क्रांतियां चल रही हैं। पहली है भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वोमिटिंग रेवोल्यूशन। आज सारे भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, इंटरनेट पर हो, AI पर हो। कृपया इस भारत की उल्टी की क्रांति का हिस्सा ना बनिए, हर चीज हर आदमी के साथ शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी, एक और महत्वपूर्ण जो क्रांति चल रही है उसे बोलता हूं ग्रेट इंडियन रिकॉर्डिंग रेवोल्यूशन। आज भारत में हर आदमी रिकॉर्ड करने की फिराक में है, क्या रिकॉर्ड कर रहा है पता नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद भूल रहा है कि भाई रिकॉर्डिंग में रखा रहा हूं, मैं क्लाउड पर डाल रहा हूं। उस दिन मेरे पास एक केस आया बच्चे का, जिसने 15 अश्लील वीडियो अपने आसपास की परिचित महिलाओं की बनाई और गूगल ड्राइव पर डाल दी, और फिर गूगल ने जाकर पुलिस को बताया कि साहब देखिए अश्लील कंटेंट आया उस बच्चे को, फिर कार्रवाई की जा रही है। तो आप ये सोचें कि साहब आपका सर्विस प्रोवाइडर आपके बारे में शिकायत नहीं करेगा, सबसे बड़ी गलती है। इनफैक्ट अश्लील कंटेंट आप प्रकाशित क्यों करें, सारी दुनिया को बताने की क्या आवश्यकता है। आपको समझना होगा कि भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो कहता है कि अगर आप अश्लील इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट का प्रकाशन करते हैं, प्रसारण करते हैं, या प्रकाशन या प्रसारण में सहायता प्रदान करते हैं, तो वो दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल की सजा है, 5

0: लाख रुपए जुर्माना है, और अगर आप स्पेसिफिक एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट को पब्लिश या प्रमोट करते हैं,
1: अपलोड करते हैं,
0: खुद भी करते हैं, इनफैक्ट लोग समझते हैं भाई मैं तो अपने आप को बिना तस्वीर के बिना कपड़ों के
1: कूल
0: शूट कर रहा हूं, क्या
1: सोशल मीडिया।
0: भाई आप जब अपनी भी अश्लील तस्वीर खींचते हैं तब भी आप अपना जुर्म करते हैं, क्योंकि लॉ कहता है कि आप पब्लिश नहीं कर सकते, आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते या पब्लिशिंग या ट्रांसमिशन में सहायता प्रदान नहीं कर सकते। अगर आप एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट को पब्लिश या ट्रांसमिट करेंगे 5 साल की सजा है, 10 लाख रुपए जुर्माना है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी करेंगे यानी कि एक कोई व्यक्ति जो 18 साल से नीचे हो उसकी अश्लील कंटेंट को प्रकाशित करेंगे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आएगा, 5 साल की सजा है, 10 लाख रुपए जुर्माना है, नॉन बेलेबल है, बहुत सीरियस ऑफेंस है। तो प्लीज आप समझ लीजिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज इन द आईज ऑफ लॉ, क्योंकि आप कानून से अनभिज्ञ हैं। इसका यह मतलब नहीं कि कानून आप पर लागू नहीं होगा, कानून कहता है कि साहब आप कानून के दायरे में रहिए, कोशिश करिए अपने डिवाइसेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा तो बनाएं लेकिन अपनी जिंदगी का केंद्र बिंदु ना बनाएं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और जहां तक हो सके अपनी इंफॉर्मेशन को केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करें, सारी दुनिया के साथ सारी चीजें साझा करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और ये बुनियादी तौर पर अगर आप चीजें अडॉप्ट करें और अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें तो काफी हद तक आप इस तरह के साइबर क्राइम के फ्रॉड्स या उसके विक्टिम्स होने की दिशा में बच जाएंगे।
1: साइबर सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है हर इंडिविजुअल के लिए,
0: मुझे
1: कोई काम करता हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो या फिर अपने प्रोडक्ट को रिवील करना चाहता हो आगे आकर।
0: मुझे लगता है कि आज जिंदगी में अगर आपके पास सबसे महत्वपूर्ण कोई वेक्टर है तो वो साइबर सुरक्षा है। हम ये क्यों सोच लेते हैं कि साहब मैंने तो डिवाइस में मुझे जो करना कर दूं लेकिन कुछ गड़बड़ होगी सरकार देखेगी। भाई सरकार तो अपना काम कर ही रही है लेकिन साइबर सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी भी तो है। हमें समझना है कि हम एक बहुत बड़ी चेन की कड़ियां हैं और ये चेन उतनी ही ज्यादा सशक्त है जितनी की सबसे कमजोर कड़ी, और हमारा दायित्व बनता है कि हम उस चेन की सबसे कमजोर कड़ी ना बने। तो साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें, अनसिक्योर साइबर हाइजीन मेथोडोलॉजीज को हैबिट्स को बिल्कुल इग्नोर करिए, पासवर्ड शेयर करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, अपना फोन किसी को भी देना बिल्कुल बंद कर दीजिए, किसी और का यूजर नेम पासवर्ड इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप ये करते हैं तब आप कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस करते हैं जिसमें 3 साल की सजा है और 5 लाख रुपए जुर्माना है।
1: तो ऐसे में कई केसेस में हुई है लोगों को,
0: बहुत सारे केसेस में हमने प्रोसिक्यूशन करी है जहां पर मेरा पासवर्ड किसी और व्यक्ति ने इस्तेमाल किया और मैंने शिकायत करी और फिर केस दर्ज हुआ और फिर कार्रवाई शुरू हुई। भाई सवाल कानून कहता है ना कि पासवर्ड मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने अगर आपको दे भी दिया तो ये तो मेरे घर की चाबी है ना,
1: शेयरिंग इज केयरिंग नहीं है, मतलब
0: बिल्कुल नहीं। आपको मैंने कभी भी अलाउ नहीं किया कि साहब मेरे घर की चाबी मेरी इजाजत के बगैर इस्तेमाल करके घुस घर के अंदर घुस जाओ और जो लेना है लेके चले जाओ। तो इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी साइबर सिक्योरिटी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम सब भारतवासियों को निजता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है, धारा 21 भारतीय संविधान के तहत।
1: चलिए जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां कवि नहीं पहुंच पाता है वहां पर कहीं ना कहीं बास जैसी पैनी निगाह पहुंच जाती है काफी सारे लोगों की। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है पवन जी कि आप प्रॉब्लम में, आपको बताया कि आपके अकाउंट से पैसे चले गए, आप बैंक के पास जा रहे हैं और आप समझाने की कोशिश करते हैं कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे खुद नहीं आइडिया है, लेकिन मेरा पैसा लौटा दो। और ऐसे में बैंक मैनेजर के साथ आपकी काफी वार्तालाप होती है, काफी बहस होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कंक्लूड नहीं कर पाते हैं इन चीजों को आप।
0: उसका रीजन ये है कि बैंक मैनेजर के हाथ में कुछ भी नहीं है। द मोमेंट आपके यहाँ पैसा जाता है आपका पहला विकल्प है आपने 1930 कॉल करना है, ताकि आपकी जो बैंकिंग सिस्टम में कोई पैसा है तो पुलिस उसको तुरंत फ्रीज कर सके। दूसरा आपने रिपोर्ट करनी है cybercrime.gov.in, वो जैसे आप रिपोर्ट करोगे आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आप बैंक के साथ शेयर करिए ताकि बैंक उस पर आगे कार्रवाई हो सकता है। आप जाके वहां लड़ेंगे, उन पर विवाद करेंगे, साहब मुझे पैसे दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो कहते हैं ना लिखतम के आगे बख्तम की कीमत नहीं होती
1: जी।
0: तो आपकी लिखत में जब कंप्लेंट होगी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, वो अगर आप लिखत में बैंक को देंगे तो बैंक तुरंत एक्शन करेगा।
1: वो जवाबदेही वाला प्रोसेस होता है ये कितने टाइम का होता है?
0: देखिए
1: अगर नहीं आता है जवाब तो क्या कर सकते हैं आप?
0: आपको ना कॉन्स्टेंटली पैरवी करनी पड़ेगी। पहली बात आपने शिकायत करी, उसके हर 2 दिन बाद आपने उस शिकायत कही, आपने पूछना है कि भाई क्या हुआ,
1: अपडेट है।
0: जैसे आप अगर आप cybercrime.gov.in पर जाएंगे और आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, आपको एक SMS आ जाएगा कि फलां पुलिस ऑफिसर है, ये इसका नंबर है, ये आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है. अब आप हर रोज एक धर्म बना लीजिए कि आपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कॉल करना है, भाई मेरा क्या हुआ क्या हुआ. वो कहता है ना, पैरवी आपको वहां तक ले जाएगी जहां पर मुकदमा भी नहीं ले जा सकता.

0: जितनी जल्दी आप पैरवी करेंगे बैंक के साथ पैरवी करेंगे उतनी जल्दी आप सीरियसनेस अपनी शो कर पाएंगे और उतनी जल्दी हो सकता है आपको रिलीफ भी मिल जाए। आज आप जैसे हम जैसे लोग ही सबसे वल्नरेबल टारगेट्स हैं। एक बार अगर हम जाग जाएंगे इस चुनौती के प्रति तो फिर एटलीस्ट हम काम करना शुरू कर देंगे, दैट इज 50% ऑफ द बैटल वन। लेकिन अगर हम इसी मस्ती में होंगे साहब मेरा क्या जाएगा, मेरा कुछ हो नहीं सकता, मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
1: स्मार्ट और ओवर स्मार्ट होने में थोड़ा सा फर्क है, राइट?
0: ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपको मुंह की देगा और अक्सर आपको प्रॉब्लम में डाल देगा।
1: बिल्कुल, देखिए इलीगल तरीके से कोई व्यक्ति फंस चुका है, उसे पता है कि अब मेरे पास कोई विकल्प है नहीं, मैं सिर्फ कंप्लेंट कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए कोई लीगल रेमेडीज?
0: देखिए अगर आप तुरंत शिकायत करते हैं तो पहली रेमेडी वो है, क्योंकि वो शिकायत के एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिलता है
1: जी।
0: अगर आप तुरंत 1930 पर कॉल करते हैं तो वो तुरंत देख लेते हैं कि आपके बैंकिंग चैनल में कोई पैसा है तो नहीं है, अगर है तो ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक कराइए अपना पैसा ताकि अल्टीमेटली 5-6 हफ्ते में पैसा वापस आ जाए।
1: जो चला गया वो चला गया, लेकिन जो बचा हुआ है।
0: हाँ, और तीसरी बात, अगर आपको लगता है पुलिस एक्शन नहीं करती तो आप अपने लोकल थाने में अपने लोकल मैजिस्ट्रेट के यहाँ जाके एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि साहब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, इन्हें आप दिशा निर्देश दें कि साहब आप मेरा पैसा वापस दीजिए। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट देखेगी भैया उस अक्यूज के अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं। अगर आप जितनी जल्दी एप्लीकेशन मूव करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर अदालत डिसाइड करेगी, अगर आपकी एप्लीकेशन पहले चली गई तो जितना पैसा फ्रीज हो गया उसमें पहला अमाउंट आपका जाएगा, आपके अमाउंट खत्म होने के बाद किसी और को दिया जाएगा। तो जागरूकता इतना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, लीगल रेमेडीज आपके पास उपलब्ध हैं, ये तमाम सारी घटनाएं जो हैं ऑफेंसेस बन जाती हैं भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, भारतीय न्याय संहिता में। आवश्यकता है आपको सतर्क जागरूक और सावधान रहने की।
1: देखिए किसी व्यक्ति ने आपके साथ डिजिटल अरेस्ट किया और जब वो मुकदमा वहां तक पहुंचा और अगर उसने वो पैसे खर्च कर दिए या उसके अकाउंट में है नहीं, तो इस केस में क्या होता?
0: फिर देखिए उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है और अल्टीमेटली उसको सजा मिलती है, और तब तक कानून का वो ये भी अधिकार है कि अगर उसके पास कोई भी एसेट्स हैं तो उन एसेट्स को भी फ्रीज किया जा सकता है और उनको भी सेल करके वो पैसे रिकवर किए जा सकते हैं। तो कानून के पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन अक्सर लोगों तक पहुंचने का पहला चैलेंज होता है। हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि साइबर क्रिमिनल वो कौन सा था जिसने आपको डिजिटल अरेस्ट किया, क्योंकि देखने में कुछ और हो सकता है, वास्तविक तौर में कुछ और हो सकता है। और आज की तारीख में तो डिजिटल अरेस्ट में एआई का बहुत ज्यादा दखल अंदाज हो गया है
1: जी।
0: आप जो देख रहे हैं वो व्यक्ति वास्तविक तौर पर व्यक्ति नहीं है, वो एआई द्वारा जनरेटेड एक डीप फेक वीडियो है। अब डीप फेक वीडियो अगर है तो फिर आप उस साइबर क्रिमिनल तक कहां पहुंचेंगे कि किसने अपलोड किया, कौन था उसका मास्टरमाइंड उसके पीछे। तो चुनौतियां बहुत होती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि पहला कदम होता है उठ के जागना, और हमें जी लगता है कि अगर आप साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं, डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए हैं, तो एटलीस्ट उठ जाइए, रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट करेंगे तो कानूनी प्रकरण आगे बढ़ेगा, रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाली।
1: अब सरल भाषा में पूछना चाहूंगा, जितने भी स्कैमर्स हैं उनको पहचानने का, या स्कैम आपको ईमेल आ रही है, इन सबको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे सिंपल
0: तरीका, कुछ भी चीज आपको जो बताती है जो टू गुड टू बी ट्रू है तो एक्चुअली में टू गुड टू बी ट्रू होता है।
1: ओके,
0: लगता है सपनों जैसे, भाई मेरे को खबर आई कि आरबीआई मुझे 50 लाख रुपए दे रहा है लॉटरी के तौर पे, भाई मुझे 50 लाख क्यों देगा, लेकिन लोग जो है कह जाते हैं कि साहब मैं ही दुनिया का सबसे लकी आदमी हूं कि मुझे आरबीआई
1: लॉटरी
0: 50 लाख रुपए की लॉटरी दे रहा है। तो पहला इंडिकेशन है कि साहब ये साइबर फ्रॉड है, ये साइबर क्राइम का एक नया स्वरूप है, तुरंत उस कम्युनिकेशन को डिसरिगार्ड करिए, भूल जाइए कि आप किसी को बुरा भला कह रहे हैं, सॉरी, आज आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आज आप प्रोटेक्टेड होंगे तो कल नया दिन होगा, आप फिर कुछ काम कर पाएंगे। तो बॉटम लाइन ये है कि जहां पर आपका मन ठुके कि साहब ये ठीक नहीं है,
1: कुछ घपला है,
0: द मोमेंट ये मन है ना, इस मन का विश्वास जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमेशा हमारे को बचाएगा, हमारी गट फीलिंग हमेशा बचाएगी, हमारा दिमाग तो फिर भी बता देगा ओहो चल यार इतने पैसे मिल रहे हैं करके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है,
1: हाँ, क्या जाता है।
0: लेकिन अगर आपने अपने आप को बांध लिया कि साहब भैया मुझे मिलना तो उतना है जितना मेरे माथे पे लिखा हुआ है, तब मैं इन छोटे प्रलोभनों में नहीं पड़ूंगा। देखिए एक तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि भारतवर्ष में कोई डेडिकेटेड आज की तारीख में लॉ लागू नहीं हो रखा डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, तो हमारा डेटा बिकता है नेहरू प्लेस जैसे मार्केट्स में, ऑनलाइन मार्केट्स में। और हाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पूरी तरीके से लागू हो जाएगा 13 नवंबर 2026 को, लेकिन उससे पहले आपके डेटा की खरीद फरोख्त बहुत चल रही है। मेरे पास तो अब कुछ क्लाइंट आते हैं जो डेटा

0: मर्चेंट्स हैं. मतलब मैंने कहा भाई ये क्या चीज है.
1: वो कहते हैं, मैं भी नया सुन रहा हूँ वर्ड.
0: मैंने कहा क्या होता है डेटा मर्चेंट. वो कहते हैं सर एक नया बिजनेस मॉड्यूल है.
1: ठीक है.
0: हम क्या करते हैं, हम 20 या 25 लोगों को रिक्रूट करते हैं और कहते हैं कि साहब हमारे लिए काम करिए, हम आपको मंथली सैलरी देंगे, आप हमसे सैलरी लीजिए, लेकिन एक भी दिन हमारे दफ्तर मत बताइए. आप जाके दूसरी कंपनियों में जाइए और जाके अपना जॉब लीजिए, आप वहां नौकरियां करिए, वहां से भी पैसे लीजिए, उनका डेटा लीजिए, वो डेटा चुरा के हमें दीजिए, हम वो डेटा की क्लीनिंग करेंगे, उसको सैनिटाइज

0: वहां नौकरियां करिए, वहां से भी पैसे लीजिए, उनका डेटा लीजिए, वो डेटा चुरा के हमें दीजिए, हम वो डेटा की क्लीनिंग करेंगे, उसको सैनिटाइज करके और करके पूरे मार्केट में बेचेंगे। तो ये एक नया प्रकार का मॉडल इंडिया में आ गया है। दूसरा एक नया मॉडल आ गया है, वो है साइबर क्राइम एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। साइबर क्राइम आज इतना ज्यादा पनप चुका है कि वो कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में बन चुका है। यहां तक पहले हम बात करते थे जामतारा की, फिर बात करने लगे हम नू की, भरैच की और अदर इंस्टीट्यूशन की। आज तो हर गांव में, हर छोटे शहर में आपको साइबर क्राइम के अड्डे मिलते हैं। लोगों को पता है कि भैया पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका जो है साइबर क्राइम है। और दूसरी बात भाई, भारत क्राइम में, भारत में साइबर क्राइम कन्विक्शन तो होती नहीं है। 2003 में मैंने भारत की पहली साइबर क्राइम कन्विक्शन कराई थी, जिसमें मैं वकील था।
1: 2003 में
0: कंप्लेनेंट की तरफ से, आज 23 साल हो चुके हैं। और उस जमाने में भी हमने जज को बोला कि साहब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, आप सजा दें। लेकिन जज ने कहा साहब फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, चलो उन्हें प्रोबेशन पे एक साल पे छोड़ देते हैं। वो कन्विक्शन थी। उसके बाद कुछ कन्विक्शन हुई 2008 तक, लेकिन 2008 में हम लोगों ने एक बुनियादी गलती कर ली। हम लोगों ने आईटी एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया और इन संशोधनों ने 2-3 साइबर क्राइम्स को छोड़ के बाकी तमाम सारे साइबर क्राइम्स को जमानती अपराध बना दिया। यानी कि
1: आज 2-3 वो कौन से?
0: 2-3 जैसे साइबर टेररिज्म हो गया, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, जैसे एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट पब्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन। इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे साइबर क्राइम आज बेलेबल हैं। मतलब कि अगर मैं साइबर क्राइम करता हूं तो मुझे बेल अधिकार के तौर पर उपलब्ध है। तो होता होने क्या लगा कि लोग साइबर क्राइम करते, बाहर बेल पर आते, डर कुछ था नहीं, बेल से बाहर आते, अपने बरकरार इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को डिलीट करते और फिर मस्ती से तमाशा देखते। क्योंकि अगर एविडेंस ही आपका डिस्ट्रॉय हो गया तो सजा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर ही सजा हो सकती है। तो तभी हम देख रहे हैं कि 2008 के बाद से भारतवर्ष में आज तक साइबर क्राइम का एक अकाल आ चुका है कन्विक्शंस को लेकर। तो इसलिए लोगों को लगता है भाई क्या फर्क पड़ता है, मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो लोग अंधाधुंध होके हुए साइबर क्राइम को अडॉप्ट कर रहे हैं, भूल रहे हैं कि साहब इस भंवर में जो फंस गया वो फंस गया। लेकिन 99.9% लोगों को लगता है भाई हम तो भारी निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत का जो साइबर क्राइम कन्विक्शन रेशियो है वो 0.1% से भी नीचे है। तो जब अगर आप देख लीजिए कि 100 मुकदमे होते हैं और उन 100 मुकदमों में 0.1% केसेस में ही सजाएं होती हैं, वजह सजा होती ही नहीं है, क्योंकि एविडेंस ही नहीं होगा तो सजा नहीं होगी।
1: तो ऐसे लोगों को काउंटर कैसे किया जाए?
0: तो मुझे लगता है काउंटर करने के लिए आपको एक लोगों में जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, ताकि लोग अवेयर हो जाए नए उभरते साइबर क्राइम के को लेकर। और आज तो नया प्रॉब्लम है, आज एक नए प्रकार का साइबर क्राइम उत्पन्न हुआ है जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम, AI क्राइम।
1: उससे तो सब डरे हुए आने वाले समय में, I guess.
0: AI तो इतना खतरनाक हो गया है कि आपको कुछ नहीं करना, मुझे आपको तंग करना है, मुझे सिर्फ आपकी आवाज की 3 सेकंड का सैंपल चाहिए, आपके वीडियो का 5 सेकंड का सैंपल चाहिए बस,
1: और कुछ नहीं चाहिए। हाफ एन आवर का और पूरे घंटे का
0: मैं आपके आपके बरखिलाफ एविडेंस बना सकता हूँ। मेरे पास उस दिन एक क्लाइंट आया, उन्हें कहा साहब मेरी शादी हो रखी है, 10 साल हो चुके, मेरी वाइफ से मैं बहुत परेशान हूं, मुझे तलाक लेना है। तो हमने कहा भाई क्या क्या प्रॉब्लम है बताइए तो सही।
1: मैंने
0: कहा सर मैं आपको एविडेंस दिखाता हूं। उसने मुझे एविडेंस दिखाया और वो वाइफ इतनी बदतमीजी तरीके से हस्बैंड को बात कर रही थी, मुझे लगा कि साहब इन दोनों का रहना बिल्कुल संभव नहीं है, तो चलो हम डिवोर्स फाइल करते हैं। मैंने डिवोर्स पिटीशन बना दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ना वाइफ की, वो जरूर लगाइएगा अदालत में। तो हमने लगाना शुरू किया और साथ साथ सर्टिफिकेशन डालनी शुरू करी। तो जब सर्टिफिकेशन में उससे सवाल पूछे कि भाई क्या कहाँ हुआ, क्या पता लगा, किस डिवाइस से हुआ, अल्टीमेटली उसके मुंह से निकल गया सर मैंने इसे AI से बनाया था। तो आज ये
1: मतलब AI के थ्रू आपने किसी को पूरे तरीके से मतलब बहुत गलत ठहरा दिया।
0: एक पति ने अपनी पत्नी के बरखिलाफ AI के माध्यम से झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए और उसको आधार बनाते हुए मुकदमा दाखिल करने की प्रयास किया। वो तो जब मुझे रियलिटी पता लगी हमने कहा साहब हमें माफ करिए, हम
1: ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता।
0: हो सकता है अगर शिकायत हो, लेकिन हमारे यहाँ तो अक्सर शिकायत होती नहीं, और शिकायत हो भी जाए तो अक्सर FIR नहीं होती। प्रॉब्लम क्या ना कि अधिकांश तौर पर पुलिस आपके केसेस दर्ज नहीं करती, अगर दर्ज करती भी है तो उन केसेस में अक्सर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हम सही तरीके से एकत्रित नहीं कर पाते। एकत्रित भी कर पाए तो उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सही तरीके से हम अदालत में प्रस्तुत साबित नहीं कर पाते भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत। तो बुनियादी तौर पर कितना ही बेहतरीन आपका केस क्यों ना हो, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप साबित ना कर पाए तो सजाएं नहीं होंगी।
1: ये दोनों तरफ से देखिए, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो भी कह सकता है कि मैं AI ये तो AI है सर।

0: की तारीख में तो स्टैंडर्ड डिफेंस आ गया ना कि अगर आपने मेरे पर खिलाफ एलिगेशन लगाई आई विल से कि सॉरी ये तो डीप फेक है, मैंने तो बनाया नहीं,
1: मेरा है ही नहीं, अब मेरी आवाज ही नहीं है,
0: मेरी आवाज ही नहीं, आप साबित करते दिखाइए। तो आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि प्रदूषित हो रहा है पूरा वातावरण
1: जी,
0: हमारे आसपास जो इन्फॉर्मेशन है वो झुठलाई जा रही है, झूठी इन्फॉर्मेशन भी है, फेक इन्फॉर्मेशन भी है, रूमर्स भी है और डीप फेक इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए इस पूरे अंदाज में अदालतों के सामने भी चुनौती है भाई किस प्रकार की एविडेंस या किस प्रकार की जानकारी पर वो विश्वास करेंगे और किस तरह पर विश्वास नहीं करेंगे। हम लोगों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लेकर कुछ नए कानून बनाए हैं, नए प्रावधान है, लेकिन वो 2023 का लॉ है। आज 2026 ने एआई ने आके उलट पुलट कर दिया है। आज एआई के द्वारा जन्मित या जेनरेटेड जो एविडेंस है उसको साबित करना बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, उसके लिए नए कानूनी प्रावधान आने की आवश्यकता है। फॉर्चुनेटली अब खबर आई है
1: ओनली फॉर अपग्रेड करना पड़ेगा
0: जी हाँ, तभी अब खुशखबरी यह है कि अब सरकार की तरफ से खबर आई है कि सरकार अब एक नई डेडिकेटेड लॉ पर काम कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। तो मुझे लगता है ये चूहे बिल्ली का खेल तो चलता रहेगा। साइबर क्रिमिनल्स आज की तारीख में पुलिस से लगभग 50 कदम आगे चल रहे हैं और एआई आने के साथ साथ 50 कदम तो छोड़िए वो 500 कदम आगे होने वाले हैं।
1: और सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप उस व्यक्ति की सहमति भी नहीं ले रहे हैं। आप बहुत सारे एक्टर्स के वीडियो देख सकते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है या उनकी वॉइसेस कहां कहां पर चल रही है और फैंस को भी लगता है कि हाँ चलो उन्हीं की आवाज है।
0: यही तो प्रॉब्लम है। तो अगर आप तो बहुत बड़े अभिनेता हैं, एक्टर हैं, तो आप अदालत जाएंगे और अपने पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट कराएंगे,
1: राइट।
0: लेकिन आम जनता
1: अपने हम जैसे लोग क्या करेंगे?
0: कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि नॉर्वे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। इस नॉर्वेजियन कंट्री ने एक नया लॉ बनाया है कि साहब आप हम अपने कॉपीराइट लॉ में संशोधन करते हैं, हर व्यक्ति को अधिकार है अपने पर्सनैलिटी राइट्स का, यानी कि आपको अदालत का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी है, मैं ऐसे बोलता हूँ,
1: मेरी
0: आवाज ऐसी है, मेरी शक्ल है, ये मेरा अंदाज है, ये इस पे मेरे ऑटोमेटिक राइट्स होने चाहिए,
1: कॉपीराइट
0: होने चाहिए ऑब्वियसली, और मुझे ये ताकि कोई उसका हनन करता है तो मैं उसके बरखिलाफ जा सकूं। मुझे लगता है इस तरह के प्रावधान अगर भारत में आ जाए तो भारतवासी के हाथों को हम ज्यादा सशक्त कर पाएंगे। दूसरा मुझे लगता है कि डीप फेक को लेकर डेडिकेटेड लीगल प्रोविजन आने जरूरी है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एआई का इतना महत्वपूर्ण दुरुपयोग हो रहा है तो एआई की जवाबदारी भी तो होनी चाहिए, एआई को अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि साहब ऐसा है एआई का दुरुपयोग अगर है तो कौन जिम्मेवार है। कंपनियां तो कहती है कि साहब ये ले लीजिए, आपको मैं एआई ब्लैक बॉक्स के तौर पर दे रही हूं, इस्तेमाल करना या ना करिए। अब तो बल्कि फॉरेन कंपनियों ने बहुत बड़ा एक नया तंत्र शुरू किया है
1: जी, क्या है
0: वो? ये है कि वो 399 का तंत्र, वो क्या करते हैं कि आपको अपने पूरे वर्ल्ड क्लास सर्विसेज एक महीने के लिए 399 रुपए के पैक में दे देते हैं,
1: सिर्फ।
0: अब 399 रुपए में तो आपको दो पिज्जा भी अच्छे नहीं मिलते,
1: नहीं
0: तो
1: मिलते हैं सर।
0: और 399 रुपए में वो आपको पूरे महीने भर के आपको वर्ल्ड क्लास सेवाएं दे रहे हैं, आपका डेटा ले रहे हैं, आप डेटा का इस्तेमाल करके अपने सिस्टम्स को, अपने एल्गोरिदम्स को और ज्यादा इंप्रूव करते जा रहे हैं और फिर वही इंप्रूव्ड वर्जन्स आपको दोबारा बेचेंगे। तो मुझे लगता है कि एआई को अकाउंटेबल बनाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में मैंने ऑलरेडी एक एआई अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क प्रकाशित किया है जो विभिन्न प्रकार के कानूनी सिद्धांतों पर आधारित है कि साहब इन बेसिस पर आप एआई को जिम्मेवार या अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। लेकिन बात यहीं पर ही थम नहीं रही है, अब एजेंटी के एआई आ गया है, यानी कि लोग अब एआई एजेंट्स इस्तेमाल करने लग गए हैं। आप सिर्फ उन्हें एक कमांड दे दीजिए, उसके बाद वो कमांड को पूरी तरीके से खुद डिवाइड करेंगे, सब टास्क को लेंगे और फिर वो उसके ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर देंगे विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। उनको जिम्मेवार कैसे ठहराया जाए, इसके लिए भी अभी हमने एक ग्लोबल एजेंटिक एआई लायबिलिटी फ्रेमवर्क बनाया है। तो काफी सारा काम करने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है कि साहब हम लोग कॉन्स्टेंटली एक जो दौड़ता हुआ शेर है उसकी सवारी कर रहे हैं, हम इस शेर से नीचे तो नहीं आ सकते, तो कॉन्स्टेंटली इस शेर की सवारी करते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और अपने आप को कॉन्स्टेंटली ढालना पड़ेगा नए नए समय, नए नए टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स के साथ साथ, ताकि हम और हमारा डेटा उनका संरक्षण हो सके।
1: बिल्कुल, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से और किसी व्हाट्सएप ग्रुप में रौनक आ जाती है बड़े बुजुर्गों के आ जाने से। अक्सर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले वो आपने काफी सारे मैसेजेस देखे होंगे और उनके साथ जब डीप फेक कुछ होता है ना तो वो सबसे पहले घबराते हैं। ऐसे में आपको घबराना नहीं है, लेकिन सर बहुत ही तेज तर्रार तरीके से आपने सारे जवाब दिए हैं। चलिए रैपिड फायर की तरफ लेकर चलता हूं आपको, ठीक है
0: जी।
1: और सबसे पहला सवाल मेरा ये है रैपिड फायर राउंड में, पासवर्ड और पास फ्रेज, विच वन इज सिक्योर्ड?
0: पास फ्रेज, क्योंकि पास फ्रेज ज्यादा बड़ा होता है,

0: पासवर्ड छूटा होता है, और मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप पासफ्रेज भी बनाना है तो अपनी लोकल भाषा में पासफ्रेज बनाइए
1: ताकि कोई उसे डिकोड
0: ना कर सके। हमारे पास एक क्लाइंट आया, उसने पासफ्रेज का एक नया अध्याय हमें सिखाया। उसने कहा सर मैं पासफ्रेज इस्तेमाल करता हूँ, और मैंने कहा आप बताइए आपका करंट पासफ्रेज क्या है। उसके वो उसका जवाब था मेरा करंट पासफ्रेज है मैं चलता जा रहा हूँ #@
1: क्या बात है?
0: सब अंग्रेजी में मैं मीन्स MAIN चलता CHLT है। इतना लंबा आप पासफ्रेज करेंगे ताकि सिस्टम या हैकर जो है आपके पास
1: सोच ही ना सके
0: उसे ब्रेक ही ना कर सके।
1: बिल्कुल, कहां जा रहा है पासवर्ड, लेकिन पासवर्ड कहीं भी जाए, पासफ्रेज कहीं भी जाए, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और VPN यस और नो, सेफ है VPN?
0: बिल्कुल सेफ है। VPN का इस्तेमाल करना जरूरी होता है ताकि आप अपनी लोकेशन की अपने डेटा का संरक्षण कर सके।
1: क्या बात है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरा, फेस आईडी और फिंगरप्रिंट दोनों ही काफी इम्पोर्टेंट है।
0: दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन फेस में फिर भी गड़बड़ की जा सकती है। ये फिंगरप्रिंट दुनिया भर में एकमात्र ऐसा प्रिंट है।
1: ये तो हो सकता है ना बियर्ड आपकी बढ़ जाए, कहीं
0: आपकी बियर्ड बढ़ जाए आपकी शेयर। अब तो क्या ना अडोब से फोटोशॉप से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहां से फोटोशॉप करना मुश्किल होता है। तो फिंगरप्रिंट कंटिन्यूज टू बी नंबर वन
1: सेफेस्ट है। वन साइबर सिक्योरिटी हैबिट जो हर किसी को अपनी लाइफ में लेकर आनी चाहिए, एक ऐसी हैबिट जो साथ हो आपके।
0: मैं आपको एक नहीं दो हैबिट्स बताता हूं।
1: ओके
0: okay. एक कंजूस हो जाइए, दूसरा शकी हो जाइए। कंजूसी अपने डेटा को लेकर, अपने डेटा को केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करिए, किसी और के साथ नहीं। और शकी हर जानकारी को शक के दृष्टिकोण से देखें, जब तक कि स्वयं उसकी पुष्टि आपने ना कर रखी हो। तो शकी हो जाइए और कंजूस हो जाइए, काफी हद तक आप साइबर क्राइम से बच
1: जाएंगे। मतलब थोड़ा सा डेली सोप वाले एक्टर की तरह आपको काम करना पड़ेगा। वेल सर, मैं आपको शुरुआती दौर में कहना भूल गया, यू आर सो लाइक हैंडसम, एंड यही कहना चाहूंगा, बहुत स्मार्टनेस के साथ सारे जवाब दिए। आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक गलती जो हम हर रोज कर रहे हैं, हर रोज दोहरा रहे हैं, उसे बचना चाहिए।
0: एक गलती जो हम हर रोज कर रहे हैं वो अपने स्मार्टफोन को रिलाई करते हुए कर रहे हैं। हमारा स्मार्टफोन हमारा अपने जब आप फोन स्मार्टफोन के कैमरे से फोटो ऑनलाइन खींचते हैं और अपलोड करते हैं तो रिमेम्बर करिए वो नॉर्मल फोटो नहीं है, वो स्मार्ट फोटो है। उसमें आपका लैटिट्यूड है, आपका लॉन्गिट्यूड है, आपका मेटा डेटा है, आपका डिवाइस इन्फॉर्मेशन है। वो तमाम सारी चीजें जब आप ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं तो पूरी दुनिया भर के चोरों को आमंत्रित कर रहे हैं कि साहब मैं यहां लोकेशन हूं, मेरी यहां लोकेशन है, आपने आके मुझे अटैक करना कर लीजिए। तो कृपया अपने स्मार्टफोन के द्वारा खींची हुई फोटो तब तक इंटरनेट पर मत डालिए जब तक आप उसे सैनिटाइज ना कर सकें और उसका मेटा डेटा पूरी तरीके से।
1: सैनिटाइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
0: सैनिटाइज करने के बहुत से टूल आ जाते हैं जो आपका जो मेटा डेटा होता है उसमें से निकाल देते हैं, आपकी लोकेशन निकाल देते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड।
1: अगर मैं लोकेशन डाल नहीं रहा हूं तो भी लोगों को लोकेशन पता लग जाएगा
0: ऑटोमेटिकली। मैं आपके यहां बैठा हूं, आज आपने मेरे फोन से तस्वीर खींच ली, मैंने अपलोड करी, मेरे स्मार्टफोन वाली तस्वीर में आपका लैटिट्यूड आ गया, लॉन्गिट्यूड आ गया, मेटा डेटा आ गया, मेरे मोबाइल फोन का क्या डिवाइस है, कौन सा मॉडल है, किस प्रकार के फंक्शन है, वो तमाम सारी चीजें आ गई
1: तुम्हें जाकर,
0: बहुत सब आ गई और आपने बिना सोचे समझे उसको ऑनलाइन कर दिया। ये तो वही हालत हुई ना कि हमारे एक क्लाइंट थे ये डेल्टा वेव के बाद बहुत तंग आ गए थे, तो उन्होंने कहा चलो भैया हम वेकेशन करने चलते हैं। तो कहां चले? मनाली चलते हैं। लेकिन मनाली तो कभी गए नहीं थे, तो लोगों से पूछा भाई क्या करें, तो लोगों ने अलग अलग सजेशन दिया ऑनलाइन। तो उन्होंने एक लाइफ चेंजिंग निर्णय लिया कि हम हर घंटे जहां पे भी होंगे हम एक वीडियो ब्लॉग डालेंगे। तो वो यहां से मूर्थल गए, वहां से वीडियो ब्लॉग डाला, ऊपर रोहतांग पास गए, वहां ब्लॉग डाला। 8 दिन बाद जब वो घर वापस आते हैं गुड़गांव में तो पाते हैं उनका सारा घर सफा चट्ट हो चुका है, एक भी चीज घर में नहीं थी, क्योंकि चोरों को उन्होंने
1: पता लग गया, आमंत्रित किया।
0: उन्होंने बताया कि साहब ये तो वहां पर अभी रोहतांग पास पर है, ये इनके लैटिट्यूड, इनका लॉन्गिट्यूड, अभी तो आ नहीं सकते।
1: मतलब चोर भी बैठे होंगे, कह रहे होंगे रुक जाओ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, अभी दूर है,
0: अभी 8 दिन है हमारे पास, आराम से चोरी करते हैं, घर से सारी चीज निकाल लेते हैं। तो कोशिश करें ये तमाम सारी चीजें अपनी गर्दन अपने हाथ काट करके साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में ना दे दीजिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग आप ही के बरखिलाफ होने वाला है।
1: क्या बात है, इनकॉग्निटो मोड ये कितना सेफ है?
0: बिल्कुल सेफ नहीं है। इनकॉग्निटो मोड सिर्फ आपको एक
1: झांसा दे रहा
0: है, झांसा अपना अपने मन को बहलाने का एक और तरीका है। रियलिटी इनकॉग्निटो मोड कुछ नहीं होता। आज की साइबर सारे, चाहे आपके ब्राउजर्स हो, चाहे आपके सर्विसेज हो, इनकॉग्निटो मॉड्यूम के मोड के माध्यम से आपकी तमाम सारी जानकारी फिर भी ले रहे हैं। तो इस दुनिया में जो चीज मौजूद नहीं है उसकी आप उम्मीद ना करें, और इनकॉग्निटो मोड के बेसिस पर वो कुछ गलत काम ना कर दें जो आने वाले समय में आपको भारी पड़ सकते हैं।
1: क्या बात है, ये सबसे बड़ा मिथ है कि कहीं ना कहीं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो आपको सुरक्षित रखते हैं।
0: बिल्कुल भी नहीं।

0: सबसे बड़ा मिथ है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नाम की चीज पूरी सुरक्षा देते नहीं है. वो तो एक छोटी सी बात बताते हैं कि साहब ये हमारे सॉफ्टवेयर हमारे डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस का एंटीवायरस या वायरस आपके सिस्टम में नहीं है. मुझे लगता है आपको ब्रॉड चीज देखनी है. देखिए अगर मैं सिर्फ पूरे अपने घर में जिसमें 5 दरवाजे हैं एक ही दरवाजे पर ताला लगाऊंगा बाकी 4 खुले रखूंगा तो गलती मेरी है क्योंकि चोर उन 4 दरवाजों से मेरे घर के अंदर आएंगे. तो कोशिश करें एंटीवायरस के साथ साथ और स्ट्रेटजीज भी अडॉप्ट करें. अच्छा फायरवॉल रखें, साथ ही साथ अपनी सेल्फ कंट्रोल करें, अपनी जानकारी शेयर ना करें. हमारे पास एक केस आया जहां पर एक बंदे ने अपने ना सेंसिटिव पर्सनल मोमेंट्स को कैप्चर किया
1: और वो बंदा बहुत ज्यादा क्रेज नहीं हो गया है.
0: तो वो बंदे की मुझे पता ही नहीं हालत क्या थी भाई. जनवरी में शादी हुई और शादी के लिए हनीमून गए आप गोवा और हस्बैंड वाइफ ने एक पैक्ट किया.
1: आई लव माय हस्बैंड या आई लव माय वाइफ.
0: उन्होंने पैक्ट किया, पैक्ट ये किया कि साहब हम दोनों अपनी फर्स्ट नाइट के मोमेंट्स अपने फोन पर रिकॉर्ड करेंगे. क्यों? क्योंकि भाई आजीवन फिर देखेंगे और आनंद लेंगे. और उसके 15 दिन बाद लड़ाइयां शुरू हो गई और दोनों के बरखिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंटें शुरू हो गई कि इन्होंने हमारे प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें जो है उसकी खींच करके
1: दोनों ने एक दूसरे के ऊपर डाला
0: और फिर अल्टीमेटली तलाक शुरू हो गया. तो बॉटम लाइन है भाई वो चीज क्यों करनी है जिसका लेके कल को प्रॉब्लम होने वाली है.
1: और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी होती है सर कि अगर आपने अपने प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर कर लिया सबसे पहली बात तो नहीं करना चाहिए.
0: बिल्कुल नहीं.
1: लेकिन उसके बाद भी अगर आपका फोन चोरी हो गया तो सारा डेटा रिवील्ड हो सकता है.
0: बिल्कुल
1: सच्चाई है,
0: बुरी सच्चाई है. और दूसरी बात अगर आप सोचते हैं कि सुरक्षित तौर पर मैं इसको बैकअप ले लेता हूं तो मेरा बैकअप ऑनलाइन चला गया तो मेरे सर्विस प्रोवाइडर के पास चला गया. एक तो सर्विस प्रोवाइडर मेरी शिकायत करेगा, दूसरा कल मेरी कहीं ना कहीं रिपोर्ट हो सकती है, तीसरा कल को मैं अपनी जॉब बदलता हूं दूसरी अपॉर्चुनिटीज में जाता हूं ये चीज मेरे को आड़े आएगी, और चौथा मेरी प्राइवेसी तो पूरी तरीके से लुप्त हो जाने वाली है. तो ऐसा काम करें क्यों? मुझे लगता है कि वो चीज ना करें जिसका एक इम्पैक्ट आप पर आपके फ्यूचर पर आ सकता है. और मुझे लगता है अपने पर्सनल मोमेंट्स को तो कभी भी डिवाइस के साथ कभी कैप्चर करना ही नहीं चाहिए चाहे कितनी भी अच्छी इंटेंशन क्यों ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका दुरुपयोग होगा. अगर आपकी गर्दन है तो कोई ना कोई तो उसको दबाएगा, तो अपनी गर्दन किसी के हाथ में दे क्यों, बुनियादी सवाल ही खड़ा उठता है.
1: और सही बात यह है कि देखिए सबसे साफ बात यह है कि पूरी लाइफ फिर लोगों की स्पॉइल हो जाती है.
0: पूरी लाइफ लोगों की पूरी लाइफ, उनकी मेंटल मेकअप, उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी साइकोलॉजी इंपैक्ट हो जाती है. क्योंकि साहब आपने तो कुछ चीज फन में करी और उसका इंपैक्ट आ गया जो आजीवन के तौर पर आ गया. और इमेजिन वो कंटेंट आपके बच्चे देखेंगे, वो कंटेंट आपके परिवार के मित्रगण देखेंगे, तो वो तो आपको एक आजीवन के तौर पर
1: और वो लाइफ लॉन्ग रहने भी वाला है.
0: बिल्कुल.
1: ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, शायद वो सर्वर से डिलीट कराने के लिए आपको फिर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता.
0: और कभी भी कुछ चीज डिलीट नहीं होती, इस मिथ्या से बाहर निकल जाइए.
1: अच्छा,
0: इंटरनेट एक ऐसा प्रकरण है जो ना तो कभी सोता है और ना ही कुछ चीज भूलता है. एक बार आपने इंटरनेट पर कुछ चीज डाल दी तो वो सदैव के लिए वहां रहने वाली है. और कोई ना कोई आदमी जो उस फिराक में है, उस ढूंढ में है, तो कहीं ना कहीं ढूंढ करके आपको आप क्या पहुंची जाएगा और इन्फॉर्मेशन ले ही लेगा. तो कोशिश करनी चाहिए कि इंटरनेट को आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट ना करें. खासतौर पर ये जानकारी तो बिल्कुल ना शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी किसी के भी हाथ में आएगी, चाहे वो साइबर क्रिमिनल हो या हैकर हो, वो सबसे पहले इस जानकारी को अश्लील पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर बेच देगा. और फिर एक बार आपका कॉन्टेंट अश्लील पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर आ गया तो उसमें से बाहर निकालना लगभग असंभव हो जाता है.
1: बिल्कुल, लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो सकता है. वेल, जाने से पहले सर दो टिप जो आप लोगों को देना चाहे.
0: जाने से पहले केवल दो टिप मैं जो आपको देना चाहूंगा. एक ये, दुनिया बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है. इस दौर में जितना आप अपने डेटा को समेट के रख सकेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा. अंधाधुंध लोगों को डेटा बांटने की आवश्यकता नहीं है. और दूसरा महत्वपूर्ण बात, रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को, साइबर रेजिलियंस को हिस्सा बनाइए. मान के चलिए मुझ पर आक्रमण तो होगा ही, तो इसलिए जब आक्रमण हो तो पैनिक नहीं करना,
1: तो शील्ड हो.
0: इंपॉर्टेंट चीज है कितनी जल्दी आप आक्रमण के बाद पुनः नॉर्मलसी पर आ सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए. अच्छे बैकअप्स रखिए, सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स रखिए, अपनी अनावश्यक जानकारी इंटरनेट पर डिवाइसेस पर शेयर ना करिए. और अल्टीमेटली आपकी ड्यू डिलिजेंस, आपकी सावधानी ही एकमात्र आपका मूल मंत्र है जो आपको बचाने वाला है. समझ लीजिए कि हम सब लोग आज डिजिटल कुरुक्षेत्र के वॉर फील्ड के केंद्र बिंदु पर आ चुके हैं. हमें चारों ओर से अटैक होने वाला है. मैं आपको क्या कह रहा हूं, एक अच्छा सुरक्षा कवच पहन लीजिए. और वो सुरक्षा कवच है आपकी सावधानी, आपकी सूझबूझ, क्योंकि ये सुरक्षा कवच आपको विभिन्न प्रकार के अटैक्स को रिपेल करने में मदद करेगा.
1: बिल्कुल, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर और शेयरिंग इज केयरिंग. ये सिर्फ इस पॉडकास्ट के लिए अप्लाई होती है बिकॉज आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि आपके जो सगे संबंधी हैं वो इस चक्रव्यूह में ना फंसे. वेल, मुझे पता है आप जाने का समय हो गया है और जब भी मैं जाता हूं आप कहते हैं तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ ना, लेकिन जाएंगे तभी तो फिर से लौट कर आएंगे. एंड

0: आकाशवाणी पॉडकास्ट आपका होस्ट आपका दोस्त साइन आउट कर रहा है अलोंग विद डॉक्टर पवन दुग्गल. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आगे फिर से आपसे मुलाकात होगी.
1: थैंक यू.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। इस कार्यक्रम का विजुअल वर्जन आप देख सकते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

वाणी आकाशवाणी। आकाशवाणी दिल्लीर रिलेकर प्रचारकलो द आकाशवाणी पॉडकास्ट ट्यून करछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।

0: ଏଠି ଶେଷ କରିବା ଆଜିର ରେନ୍ବୋ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦିନ କ୍ଷମା କରିବେ ରାତି 11 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲି କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2026

0: 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण नौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल है। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानमम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हरारे में भारत ने 193 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: कार्यक्रम आकाशवाणी कटक केन्द्र
2: राति 11:05 मुख्य संवाद सह मु महेन्द्र कुमार माझी। श्रीमंदिर सम्मुखे चली रथारूढ़ श्रीजीव अधर्पणा नीति नवदिनात्मक यात्रार शेष पर्यायर आसंता नीलाद्री विजय करे चतुर्धामूर्ति। विगत 10 वर्ष प्रतिरक्षा क्षेत्र में देश नूतन शिखर छुई मन की बात कहले प्रधानमंत्री। देशर सांस्कृतिक परंपरें सामूहिक भागीदारी सर्वदा प्रमुख शक्ति रही कहले प्रधानमंत्री। विकसित भाइब्रांट भिलेज कार्यक्रम युववर्ग को दे आहवान। 27वां कारगिल विजय दिवस भारतीय जवानों असाधारण साहस और वीरत् स्मरण कले प्रधानमंत्री। आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र में भारत सफलता को कले प्रशंसा। क्याच द रेन अभियान जल उत्सर संरक्षण में भुवनेश्वर सफलता को कले प्रशंसा। लोकसभा आसंता आगत हेब साधारण परीक्षा संशोधन विधेयक। परीक्षा संस्कार निमन्ते इन्फोसिस सहप्रतिष्ठाता तथा प्रख्यात वैषयिक विशेषज्ञ नंदन निलेकानी नेतृत्व में गठित हला उच्च क्षमता संपन्न टास्कफोर्स घोषणा कले प्रधानमंत्री। हरारे चली पुरुष अंतिम T20 क्रिकेट मैच भारत जिम्बाब्वे 35 रन ले विजयी। भारत निर्धारित 20 ओवर 5 विकेट हर 192 रन संग्रह करे जिम्बाब्वे 20 ओवर 7 विकेट हर 157 रन संग्रह करने को सक्षम होता। भारत 3-0 ले सीरीज विजयी। बंगोपसगर सृष्ट लघुचाप प्रभाव में सारा राज्य में वर्षा जारी। ରାଜ୍ୟର 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା।

आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दल से दिल दाखरे समय वर्तमान भावभक्ति भरा कार्यक्रम अर्घ्य थाली को आपण को पाखरे परसि देवार हां ए समय

सुनछन्ते भवभक्ति भरा कार्यक्रम अर्घ्य थाले देव मित्र सहित 100.4 आकाशवाणी एवं रेनबो कटक दिल से दिल तक रे हां अनवसर पा अनसर नीति आषाढ़ शुक्ल प्रतिपद ठू आरंभ हो आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी रे शेष होता है 108 गरा जल रे स्नान करबा परे लगातार 21 दिन धरी नरेन्द्र पोखरी रे चाप खेलबा परे श्रीजुई माने 108 गरा जल रे स्नान करिबारु तांको ज्वर होईछि बोली समस्तंक जाना जाए ज्वर हेबा परे श्रीजुई माननकु उपचार करिबा निमन्ते दैतापति सेवक ओ अन्य सेवक माने ठाकुर माननकु अणसर घरकु नै जांति जहा जगन्नाथ मन्दिरर जगमोहन रे चन्दन अर्कळी निकटरे थिबा एक स्थान सेठि कि नै जांति आ ए समय रे महाप्रभुंक देहरे चुआ कर्पूर कस्तूरी और चंदन लेपन करा सह पारंपरिक उपचार मध्य करा जाए आ अनसर घरे केवल दैता सेवक माने अर्थात विश्वबसुं वंशधर माने सेवा कार्य करते वर्षक 12 मास मध्यरु पति महापात्र बा ब्राह्मण मानंक सेवा 11 मास एवं दैता मानंक सेवा गोटिए मास यह आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा ठारु नीलात्रि बीजे जाए 14 दिन धरी करा जाए हाँ अणसर समय रे अणसर गृह रे दारुमूर्ति मानंक बदल रे पटी दियंक पूजा करा जाए थाए बलभद्रंकर पटी दिय वासुदेव देवी सुभद्रांकर पटी दिय जाक्यसिनी बा भुवनेश्वरी और जगन्नाथंकर पटी दिय भावरे नारायण पूजा पाते तेबे दारु देवता माने रत्न सिंहासन रे जो रूप रे पूजा पांते पटचित्र गुड़िक सही आकृति रे नुहंते काठ निर्मित सदृश आसरे बसिथिबा परि अंकित हेथिबा चित्र रे समस्त दिय चतुर्हस्त एवं दुई पाद विशिष्ट होइ पद्मासन रे बसिथांते बलभद्रंकर कळेबर श्वेत वर्ण रे एहा चित्रित हेथाय चतुर्हस्त रे से धरिथांती शंख

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

परमानेंट ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक कौन दिल से दिल तक क्रिश सुबह सकाल को नीकि देबो मित्र हाजिर हे जे छ अपन मानंग पाखरे ये सा वर्ष भी जे सकाल रे ढीर सारा अभिनंदन आपन को जुलाई आ से जाय छ आ जुलाई रे तो वर्षा केमि दिन हब कहले आज कथा ब ए जुलाई मास को नै जे केवल कैलेंडर रे गुटी पृष्ठ न हो बरं जी आने थाए भिजा माटी रो सुगंध सबुज धान खेत आ नुआ आशार ना हेउची जुलाई यस जुलाई आसिले प्रकृति जमिति नुआ साड़ी पिंधिनी है गछपत्र रे नुआ सबुज रंग आ आकाश रे कला मेघ आ मन रे अचणा खुशी वर्षा रो प्रथम टोप जेतबले माटी की छुए से सुगंध नाकरे नुह सीधा हृदय रे पहुंच जाए आ हृदय रो को कोणे रे ना घर करे जाए हां ए मास हमक सिखाए जे झड़ परे भी जीवन पुनी सबुज होई उठे हां ए जमिते सकाळ सकाळ वर्षा टपा गुडा का हृदय छुई चली गलाणी आपनको हृदय को विजय छ ना नाही आपनको हृदय छुई छ ना नाही निहाते भाबर आपन जानि परबे ए गीत परे परे मो ए गीत परे परे पुनी फेरिबे आ आपनको हृदय को विजय बारे आपनको आउ टिके सहायता करबे

सुनिश्चय प्रमाणित देव मित्र को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक क्रियान्सो चालिचे सुबह सकाल रो आमे कथा होचे जुलाई मास को नीके यस गुल जुलाई मास रे प्रकृति नुआ रंग रे रंगे हब आरंभ कर दे थाए प्रत्येक शेष पर गोटे नुआ आरंभ आसी थाए बोली ए जुलाई आम कान पाखरे चमिते मंत्र दे गला भली कहि दे जाय थाए हां बर्षार प्रत्येक बुंद आमको कही चाहे जे जीवन पुणी थरे बंची जांतु पुणी थरे जीवन रे हसी खेली फुटिबार समय आसुछे हाँ किंतु एई बर्षारे छता वाला लाभ होला बेले आइसक्रीम वाला भी बहुत क्षति होता है तेणु बहुत बर्षा जेतेबेले आसी थाए सेतेबेले बन्या वातार आशंका मध्य रहिथाए किंतु सबु परे भी गोटे सुंदर स्पर्श थाए ता हेउछि प्रकृतिर स्पर्श माटीर सुगंध ए सबु किछि जुलाई आनी दे थाए जुलाई भरी दे थाए प्रकृतिर नुआ जीवन तेबे जुलाई मास सहित आपणकर भी अनेक जड़ित स्मृति थिबो सेई स्मृति को साउंड थांते एवं देवमित्र आपणको सुनोछि गोटे ब्यूटीफुल सेट ट्रैक उदित नारायण एवं लता मंगेशकर का कंठरे केवल 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टे ट्यून्ड।

सुनिश्चित है अपने देव मित्र को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दल से दल तक रे दल से दल तक रे शो स्टार्ट ही जाए मॉर्निंग मेलोडी रा ये सा बाहर छिपे छिपे वर्षा रो एबे प्रबल वर्षा हो छि महानदी रा पवन आसी आपण का देह भी छुई दा जाउ थिबो आ चा कप रे उठु थिबा से धुआं सहित मेसी जाउ छि आज किछि पुरुणा स्मृति कटक रा वर्षा केवल आपणको भिजाएनी भरंग अनेक गुडिया अनुभव भरी दिए आपणको हृदय रे हां बादामबाड़ी रा से व्यस्त रास्ता आ बक्सी बाजार रा से चा दुकान आ कॉलेज जीवा पाई छात्र छात्रिंकर से भिजा हस सळवळा छकरे वर्षा रे सुंदरी छो मानंकर वर्षा छता धरी निजको भिजेबा भय रे दौड़ी की जाउथिबार रास्ता सब किछि वर्षा सह टिके जीवंत हे जाए आ ए समय रे गुटी साथी सब बेले आपन को पाखरे थाए से होची रेडियो आमो रेडियो जेते बेले बिजुली चमके आ आकाश गर्जन करे सेते बेले रेडियो रो मृदु स्वर कहि उठे चिंता करंत नै मो अछि हां केते घरे आज भी सकाळ आरंभ हुए रेडियो रो भजन रे दिन कटे गीत रे आ संध्या रो हस कथा आ स्मृति रे आउपणी वर्षा रे कुमार सनुंका आवाज रे एरियम जेम गीतारे

सुनिश्चित अपन हमारे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक और दिल से दिल तक एवं आरंभ हो जाए छे अपन मानन करो फेवरेट शो डायल इन लाइव शो

0: हाँ, पाखे आसुचि रथ यात्रा एवं अनसर घर रे अछंती आमर महाप्रभु महाप्रभुंकर आरोग्य कामना निमन्ते आमे समस्ते प्रार्थना करोचे। हे महाप्रभु, शीघ्र सुस्थ हे फेरी आसत एवं अपलक नयन रे पुणी चाहि रुहंतो आपणंकर भक्त वृंद। सतरे ओडिया जाते सबबले गर्व करे तार कलादियंक पाई, तार महाप्रभु जगतर नाथ कोटि ओडियांकर मौढ़मणि श्री जगन्नाथंक पाई। तबे आज आपण माने मते कॉल करंतु ऑन द नंबर 0671230315 रे एवं शेयर करंतु महाप्रभुंक प्रति आपणंक भक्तिर गोटे छोट कहानी सुणांतु। निहाते भाबरे जणांतु आउथरे नंबर टी कहि रखुचि 0671230315 रे कॉल करंतु एवं शेयर करंतु महाप्रभुंक प्रति आपणंक भक्तिर गोटे छोट कहानी। आसंत देखिबा आजर अमर प्रथम कॉलर किए अछंदि आ सी कण कहुचंदि। हेलो,
1: ओके, नमस्कार, जय जगन्नाथ।
0: नमस्कार, जय जगन्नाथ, के कहू छंदे, कोट कहू छंदे?
1: आबास कोती टाटा स्टील प्लांट।
0: अच्छा, महाप्रभु को प्रति आपण को भक्ति रे गोटी छोटा कहानी हम को सुनान तो।
1: आगे आपा आ बहुत किसी वो अच्छी जगन्नाथ पुराण रे जेतु गोटी छोटा स्टोरी दो छी।
0: हां,
1: इतले महारानी लक्ष्मी गले सिया चंदन साई की घर घरे चक्र 12 रे गुरुवार जो पति गुरुवार सर्दार जाती बुली बुलिया से जगन्नाथ पूरा बारण करते जाति सियाचंद्री आम जीव कि कथा मु पति गुरुवार दिन मोर गाँ साई मु बुलीबी
0: नहीं मो कह आप मो कथ बुझी पार ना मो कह कथा कि आपण सहित जड़ित मान आपण जीवन में जब किसी कहानी अच्छी महाप्रभु को लेकिन किसी श्रद्धा किसी भक्तिर कहानी के सहित हो तो विषय जन।

0: କଲୁ ସେଠୁ ଆସିଲୁ ଆମେ କହିଲୁ ଏତେ ହଟିଆ ଠାକୁର ଏତେ ହଇରାଣ କଲୁ ସେଠୁକୁ ଆମକୁ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲୁ ତ ଆଳତି ବି ଦର୍ଶନ କରେଇ ଦେଲୁ।
1: अच्छा टिके हैरान हेले किंतु बहुत भल भाव आरती दर्शन कले भगवान को दर्शन कले
0: मैडम आम पलि आसलु अभिमान कर पलि आसलु ठाकुर को
1: अच्छा
0: कहल आमको दर्शन दल अभड़ा भी खोई दल हाउ तो पतित पावन आम दर्शन कर तो बड़ दाटे ठिया
1: अच्छा
0: अभिमान कर देख ला बेलू सार जनक आसिक ने जलखया हरिका देने घरे बसैले घर से जगत सिंहपुर चाकरी करते घर अच्छे घर अच्छे
1: अच्छा
0: देखा पड़ी गले बसैल कहला चलो आरती देखिया संध्या आई गलानी संध्या आरती दर्शन करें से कह हटिया ठाकुर प्रकृत रे ये हटिया ठाकुर हट न कले कि पूरा मनटा पूरा दुख हो जाता पूरा कांद कान छल छल एत बाटर आम जा दर्शन कल अबड़ा खाइल
1: किंतु आपण

0: तथा स्वामी को नहीं आपणकर अनेक अनुभूति आपण माने मो सहित शेयर करुछन्ते चलन तो देखिबा हमर नेक्स्ट कलर के अछन्ते ओ सी कोन कहुछन्ते आजर टॉपिक को नहीं। हेलो
1: मैडम आज्ञा
0: नमस्कार के कहुछन्ते कोट कहुछन्ते
1: नमस्कार आज्ञा मु राजेंद्र नाना कहुछन्ते प्रभु जगन्नाथ विषय पचारतन्ते त मु सुनिली मु कहली पूर्ण चंद्र पूर्ण ब्रह्म पूर्णेन्दु मानंद वैराग्या बुज भास्करम भास्करम ध्यानतापहम तापहम जगन्नाथ एक प्रकार क्षमता द्वारा जीव को प्रदान करते देखिले रथे तम बामन दुष्टा पुनर्जन्म न विद्यते ओम नमो भगवते जगन्नाथाय बामन नारायणाय नमः केतु कहजीव ना कहजीव रथे जिते जीवे बड़ दाण्डे बर्तमान नारायण बेचक पचार से भाव पूजा पाँच रूप को देखले मनीषर शक्ति साहस वृद्धि प्राप्ति
0: अच्छा आपणकर जगतनाथ जगन्नाथ को लेकिन कौन अनुभूति अच्छे कहतु
1: प्रभु कहली बा पूर्णचंद्र पूर्ण ब्रह्म मनीष सब प्रकार अपराध से क्षमा
0: आई
1: जा दंड विधान करते क्षमा करदे कि क्षमा केमी करे ना तमें मानव है अपराध कर तमें जीव हब केवे जीवर मुक्ति पाइबन कि साप हो पार बेंग हो पार कृषि आई पार हम तम अपराध नहीं तम बेक कटा हम
0: अच्छा
1: एत कृपा सागर ना
0: हाँ
1: से
0: तो कृपा सिंधु कृपा सागर
1: प्रभु जगन्नाथ कहते जीव तम ए संसार तम कर्म फल को हाथी धरी विचरण कर मोर कर्तव्य को तुम पाखे सब प्रसारित करगत
0: पिता से अवहेला करती समस्ते संतान
1: भूल तमें आशावादी भूल कहीं तमें आज सपरे शो कल कह गोटे खटे पलंग खटे शोबि कि पैसा दब कहक मिछ कस कर खटे शो पड़ो भूल
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपनो बहुत सुंदर कथा शेयर कले आम सहित
1: आम देखा जाऊे सब बड़ कथा ना आम प्रभु उत्तिष्ट केमी सेवा सेवन करवा मुख्य कथा ते मृत्यु निश्चय मृत्यु पर जिते सूक्ष्म शरीर ये जीव हाकू पचारे तब तमें मानव जन्म ग्रहण करमें प्रभु उत्तिष्ट सेवन करते कह ना उत्तिष्ट सेवन कले कौन हुए ना जने जीवर अंतकरण पवित्र हो जाए साबुन सफा कले स्किन पवित्र हो जाए ऊपर टा सफा हो उत्तिष्ट को सेवन कले तंटी तल को जिते अंतकरण अच्छी सब सफा हो
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपण बहुत सुंदर कथा आम सहित शेयर कले महाप्रभु को नहीं
1: प्रभु जगन्नाथ कथा बजा दे कल लगे लगला मुझे ना मैडम को विषय कहला तेनालीराम नागार्जुन विषय दर्शन करने कथा कहते
0: अच्छा जय जगन्नाथ कॉल कर बहुत भल लगे बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आपण भी कॉल कर पारे अन द नंबर 0671230353 एवं शेयर कर पारे जगतनाथ जगन्नाथ को नहीं आपणकर स्मृति एवं अनुभूति निहाती शेयर करंतु चलते देखिबा हमर परवर्ती कॉलर के अछंते ओ सी कोन कहउछंते हेलो
2: कलियारे कलियारे कलिया छतीरे लिखी तोरी ना तुम सुख तुम दुख तुम नुआ दुनिया
0: हेलो हेलो किसी कथा नहीं कल टी कटि जाए कि आपने कल करेंगे अन द नंबर 0671230353 के सुंदर भाव भाई गोटे सुंदर भजन कालिया सांत को नहीं गाते कि कल कटि जाए कि किसी कथा नहीं आपल करूँ आपण हृदय कथ शुणापी देवमित्र अच्छे आपण सहित चलते देखा नेक्स्ट कलर किए अच्छा और सी कौन कहते आज टपिक को नहीं हेलो फोन किसी प्रॉब्लम रोचे मु कनेक्ट हो पारे आपण सहित कि पुणी थे आपण सहित कनेक्ट हेबी कि भावभक्ति भरा भजन पर सोनू निगम कंठ से यह सुंदर भावभक्ति भरा भजन टी आप समस्त पाई

94 आकाशवाणी एफएम डेनबर कडक दिल से दिल तक रे मीठा कथा मध्ये हवा हां साथी आपनकर मीठा मीठा मत मध्ये मागिबी स्थान रहिची चलचित्रर दृश्यकु निज कंठस्वर माध्यमरे भावना अनुभूति ओ जीवनदाता हेउची प्लेबैक गायक एवं गायिकांक ठारो सबुठारो बड़ कला

वेलकम बैक वन्स अगेन ट्यून क्वेश्चन थी 100.4 आकाशवाणी एफएम टेनवर कटक दिल से दिल तक सचलेची कलाकार हां साथी महालक्ष्मी आयर का गायन शैली शास्त्रीय संगीतर श्रृंखला आधुनिक संगीतर सहजता और भावप्रवणतार सुंदर समन्वय देखिबा को मिले तांका कंठरे थिबा स्वाभाविक माधुर्य एवं गीतर भावक ठीक भाबरे प्रकाश करिबा क्षमता तांका अन्यमानक थारु अलग करिथाय से हिंदी समस्त विभिन्न भारतीय भाषार संगीतरे निजर कंठदान मध्य करिछन्ती

प्रिय टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानते कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतारु मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छत ऊपर सोलर पैनल बसंतु एवं वर्ष को 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 1800345678 किबा 1912 रे जोगाजोग करंतु।

पवित्र रथयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार आपणंकु जणाउछि असुमारी शुभेच्छा। एही शुभ अवसर रे सुभद्रा शक्ति बजार रे एसएचजी मां मानंकु हात तयारी हस्ततंत ओ हस्तकला सामग्री सहित मिलिट्री प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्री रो अपूर्व संभार। पवित्र घोषयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार रे विभिन्न क्रय उपरे स्वतंत्र रिहाती। आसंतु आपणंकु अपेक्षा रे सुभद्रा शक्ति बजार एसआईआरडी कैंपस यूनिट 8 भुवनेश्वर।

फ्रेंड्स ट्यून करछन्ति 100.4 आकाशवाणी एफएम डेनबर्ग टेक दिल से दिल तक देखंथो ना कथा ही हो समय के तळे दिन 12टा बाजि सलेनि हां साथी समय भी कहा हिसाब रे चले सीता निज हिसाब रे चले केवल आमे ता सहित ताळ दे आग को जिवार अछि समय ता बाटे रे चलु ना किंतु वर्तमान समय ही जाइछि आपनकर फेवरेट शो किछि कथा किछि गीतर सुजाता अच्छी आपण मानक सहित किछि मीठा मीठा कथा हवा मीठा मीठा गीत मध्ये सुनेबी सेहिपय ट्यून करि रहितां तो 100.4 आकाशवाणी एफएम डन बकटक दिल से दिल तक साथी श्रावण आसिले प्रकृतिर रूप बदली जाय आकाशर नीलिमा उपरे कळा कळा मेघर चादर ढांकी जाय को दूर दिगंत रु भासी आसे मेघर गर्जन माटी को छुई जाए बर्षार शीतल धारा आउ सुखिला धरणीर छाती रे प्रथम वर्षा बिंदु पड़ा मात्रे माटी उठुरु माटी रु उठे एक अद्भुत सुगंध लागे जिमिति धरणीमा दीर्घ अपेक्षा परे तार प्रिय संतान को पाई हसी उठुछी

0: हे प्रभु, ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी?
1: अरे राजू भाई, पीएम सूर्य घर योजना रो यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोर एते चिंता काहे कि जे? मु तो मो घरे सोलार लगाई देलिनी, बिजली बिल टेंशन रो मु पूरा मुक्ति।
0: सतरे भाई?
1: हां भाई, मात्र 1875 टंका रे पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो, ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नहीं।
2: आज्ञा हां, आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800 34 5 718 रे जोगाजोग करंतु।

वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून करछन दी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली छी किछ कथा किछ गीत हां साथी श्रावण रो मेघ केबे मन रे आशा तो केबे मन रे विषाद आकाश रे जितबले मेघ ढांकी जाय मन रे गटे अजणा नीरवता आसी थाए एही नीरवता अनेक अकुहा कथा सुना जाए जेउं कथा कि मनीष कहा को कहि पारेनि से कथा को केवल से वर्षा को कहि दिए जे लुह को लुचाइबा को चाहे सेही लुह को वर्षा बिंदु सहित मिसै दिए सतरे वर्षा आम को सिखाए जे जीवन रे जेते दुख आसना काहेकि तापर दिने ना दिने सुख आसीबो जेते निदाग आसना काहेकि जेते ताप आसना काहेकि दिने ना दिने मेघ आसीबो जेते दुख थाउ तापर पूर्णी सुख आसीबो जेते सुखिला होइ जा मन गोटे दिन भल पाइबार वर्षा पूर्णी ताको भिजेई दबो श्रावणर मेघ तेणु आशार प्रतीक होउछि श्रावणर मेघ।

सदिट्यून करछन्दी 100.4 आकाशवाणी एफएम डेनमार्कट दल से दिल तक सचली छे किछि कथा किछि गीता हां साथी सेई श्रावण रे छोट पिलांकर खुशी रो कथा माने आमा पिला बेलर कथा मन पकेई दिए बहुत स्मृति मध्य मन पकेई दिए सेई कागज डंगा सहित वर्षा पानी सांग मानक सहित गां दंड रे वर्षा रे भिजिबा मन पकेई दिए सेई पिला दिनर स्मृति श्रावण

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओ, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलो दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने।
2: लिखते हैं, वचन बोलने और कर्म करने की शक्ति ईश्वर ने सबको दी है, लेकिन ध्यान रखें कि मन वचन कर्म से किसी का अहित न हो।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, इसके लिए हमारा आभार। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और शिव कुमारी रामदुलारी जी ने लिखा है।
0: अजीत जी, विमलेश जी, जय जोहार। मैं उमंग कार्यक्रम को लगातार सुन रहा हूँ
2: जी,
0: और मेरा प्रयास है और अधिक श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का।
2: धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी का। वो लिखते हैं,
0: सर्वप्रिय विमलेश जी और अजीत जी, सप्रेम अभिवादन। आप दोनों की प्रस्तुति में एनसीईआरटी का प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक हो जाता है। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि आपका प्रोग्राम बहुत से स्टेशनों से ऑन एयर आता है, तो हर सुनने वाले को किसी भी स्टेशन पर मिलता ही है। आपका पुनश्च आभार एवं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आप दोनों और आपकी टीम को असीम दुआएं
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और ईमेल भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल और गांव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा भारत के कुछ अनूठे मेलों और उत्सवों पर हो रही है।
2: इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और उत्सव की। आइए आज चलते हैं झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में। वहाँ का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है बाहा। अजीत जी, श्रोताओं को पहले ये तो बता दें कि बाहा का अर्थ क्या होता है।
0: विमलेश जी, बाहा या बाहा शब्द संथाली और मुंडारी जनजातीय भाषा का शब्द है
2: जी।
0: तो इसी तरह का एक उत्सव है बाहा
2: जी।
0: ये उत्सव साल और महुआ के पेड़ों में फूलों के खिलने के समय मनाया जाता है
2: जी।
0: ये समय वसंत ऋतु का है और वहाँ की जनजातीय परंपरा में इसे नववर्ष माना जाता है।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि ये उत्सव मार्च और अप्रैल के बीच पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि इस समय साल और महुआ के पेड़ फूलों से लद जाते हैं। ये उत्सव पूरे धूमधाम से 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। अजीत जी, अप्रैल

0: प्रश्न ये है कि उत्सव कैसे मनाया जाता है।
1: विमलेश जी, इस अवसर पर गांव के युवा पुजारी या पहान या नायके के साथ जंगल जाते हैं
0: जी,
1: और वहाँ से साल और महुआ के फूल लेकर आते हैं, फिर उसे एक विशेष स्थान पर चढ़ाते हैं जिसे जाहिर स्थान कहा जाता है।
0: जाहिर स्थान का अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये जगह कोई मंदिर या विशिष्ट इमारत नहीं होती है, बल्कि एक प्राकृतिक उपवन होता है। ये गांव के बाहर जंगल या खेतों के किनारे किसी शांत जगह पर होते हैं और उस दिन मरांगबुरु यानी ईश्वर या जाहिर आयु की पूजा की जाती है। इसके बाद होता है शानदार सामूहिक कार्यक्रम जिसमें स्त्री पुरुष फूलों से सजकर मांदल, ढोल, नगाड़े और बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं।
1: इस दिन एक और बड़ी रोचक बात होती है, लोग रंगों से नहीं लेकिन सादे पानी से होली खेलते हैं
0: जी।
1: इसलिए इस उत्सव को फूलोत्सव के साथ साथ संथालों की होली भी कहा जाता है
0: जी।
1: सादे पानी में कभी कभी फूलों के रंगों का भी इस्तेमाल होता है।
0: इस समय लोग अपने घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा करते हैं और दीवारों पर फूलों की रंगोलियां बनाते हैं। श्रोताओ, जनजातीय समाज में पर्यावरण संबंधी चेतना बहुत अधिक है और वे आम लोगों से कहीं अधिक प्रकृति के प्रति जागरूक हैं। बाहा उत्सव प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस उस समय लोग एक दूसरे को फूल देते हैं और अच्छी फसल, समृद्धि, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी झारखंड के संथाली समुदाय के विशेष उत्सव बाहा की
0: जी।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं?
1: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय की कुर्सी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसके द्वारा राजा विक्रमादित्य का प्रशासन और मुख्य रूप से उनकी न्यायप्रियता का उल्लेख किया गया है और ये भी चर्चा की गई है कि राजा की न्यायप्रियता का बाद की पीढ़ियों पर क्या असर पड़ा।
2: नमस्कार साथियों, बात उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी की है। इस नगरी को अवंती या अवंतिका भी कहते थे। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वे बड़े उत्साहित हैं। भाग दौड़ हो रही है।
3: भाग माधव भाग, अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे पकड़ के दिखाओ।
2: और ये पकड़ लिया। इसी भाग दौड़ में एक लड़का मैदान के बाहर खड़े एक टीले पर चढ़ने लगा। टीले के ऊपर पत्थर की एक बड़ी सी शिला थी। लड़का टीले पर चढ़ते हुए फिसल कर गिर गया।
3: चढ़ गया। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब भी चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा।
2: लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे पत्थर की शिला पर चढ़ गया और उस पर बैठ गया। तब तक उसके दूसरे मित्र भी वहाँ पहुँच गए। शिला पर बैठते ही उस लड़के के मन में एक नया और मजेदार विचार आया। वो शिला पर एक राजा की तरह बैठ गया और शान से बोला,
3: मेरा सिंहासन है और तुम सब हो मेरे दरबारी।
4: जी महाराज, जी महाराज।
3: तुम अपनी अपनी याचना लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूँगा।
5: यह खेल तो बहुत मजेदार है।
2: बच्चों को ये बात पसंद आ गई। अब वे रोज उस शिला के पास जमा हो जाते। धीरे धीरे ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रायः पूरा गांव वहाँ जमा हो जाता था, बच्चों के खेल का आनंद लेता। एक बार तो ऐसा हुआ कि दूसरे गांव के दो किसानों के बीच झगड़ा हो गया। मामला गंभीर था, पंचायत में भी फैसला नहीं हो पा रहा था। गांव वालों ने सोचा क्यों ना वहीं चला जाए। टीले के पास दरबार लगा हुआ था।
3: कहो, तुम्हारा प्रसंग क्या है?